मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। तदनुसार शक संवत 1948 के बैसाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत देश वंदना से। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को समर्पित प्रस्तुत है ये देश वंदना।

इस देश वंदना के बाद आइए चलते हैं भजन की ओर। सुनते हैं शीला वर्मा के स्वर में तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना, भजमन राम चरण सुखदाई, कटे कोट व्याधि, भजमन राम चरण सुखदाई।

दर्शनों की प्यासी ये अखियां, दर्शनों की प्यासी ये अखियां, आजा मोरे श्याम मुरारी। आइए अब सुनते हैं मीरा जी की ये रचना पुष्पा बागधारे के स्वर में।

0: मीरा जी की इस रचना के साथ ही आज की वंदना हम यहीं संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख और स्वर तपन बैनर्जी का है। प्रस्तुत है चिंतन।
1: संसार में सुख क्या है और दुख क्या है, इसकी परिभाषा कर सकना कठिन है। वस्तुतः यहां न तो कुछ दुख है और न कुछ सुख। घटनाएं अपने ढंग से घटित होती रहती हैं और वस्तुएं अपने तरीके से बदलती रहती हैं। आने और जाने का, हानि और लाभ का परिवर्तन यहां अनवरत रूप से चल रहा है। जो वस्तु अभी जिस रूप में है, अगले ही क्षणों पर वह वैसी नहीं रह जाएगी। तब जिस प्रकार उस क्षण उसे सुखद माना जा रहा था, वैसा कुछ क्षण बाद न माना जा सकेगा। तब यह कैसे कहा जाए कि वह वस्तु या स्थिति सुख रूप है या दुख रूप? प्रातःकाल का सूर्य सुहाना लगता है और उसकी धूप तापने को जी चाहता है, किंतु कुछ समय बाद दोपहर की कड़ी धूप और कड़ी चमक कष्टकारक लगती है और उससे बचने के लिए छाया तलाश करनी पड़ती है। तब कैसे कहा जाए कि सूर्य की धूप सुखद है या दुखद? यह परिस्थितियों पर निर्भर है, सापेक्ष है। ठंड की स्थिति में सूर्य प्रिय है और गर्मी में अप्रिय। भूख में भोजन की उत्कट लालसा रहती है, रूखा सूखा भी स्वादिष्ट लगता है। पेट भरा होने अथवा रुग्ण रहने की दशा में स्वादिष्ट भोजन भी अरुचिकर लगता है और उसकी ओर देखने को भी जी नहीं करता। भोजन अपने आप में न स्वादिष्ट है और न अस्वादिष्ट, वह एक पदार्थ मात्र है। भूख के अनुरूप वह कभी प्रिय लगता है, कभी अप्रिय। यदि भोजन की अपनी कुछ विशेषता होती तो वह सदा एक जैसी बनी रहती। हम धनी हैं या निर्धन, इसका कोई पैमाना नहीं है। कितना धन होने पर किसी को धनी कहा जाए और कितनी मात्रा को निर्धनता की परिधि में लाया जाए, इसका कोई मापदंड नहीं बन सकता। जब हम अपनी तुलना किसी साधन संपन्न धनी से करते हैं तो पाते हैं कि अपनी स्थिति निर्धनों जैसी दयनीय है, किंतु यदि निर्धनों और अभावग्रस्तों के साथ अपनी तुलना करने लगें तो प्रतीत होगा कि हम कितने अधिक साधन संपन्न, धनवान और भाग्यवान हैं। इस तुलना क्रम में हेर फेर होते हैं। एक क्षण में धनी अपने को निर्धन और निर्धन अपने को धनवान मानने लगता है। बलवान पहलवान की तुलना में अपनी दुर्बल काया दुर्भाग्यपूर्ण है, सुंदरों की तुलना में अपनी कुरूपता अभिशाप है, किंतु यदि अपंग एवं असाध्य रोग ग्रस्तों की ओर अपनी स्थिति का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जो कुछ मिला हुआ है वह भी सुख मानने और गर्व करने के लिए पर्याप्त है। दुखों से निवृत्ति पाने और सदा सुखी रहने के लिए अमुक प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त होना आवश्यक है, यह नहीं सोचा जाना चाहिए। वरन अपनी तुलनात्मक चिंतन करने की शैली को बदलना चाहिए। अपने से छोटे और पिछड़े हुए लोग यदि दृष्टि में

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत निर्देशन दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामाई की पीड़ा खड़ा चुकोट।
1: दीदी मन, अपन मन तो कई प्रकार चो फर मन चो कमानी कर सास, और ए समय ने कई ठान फर बुटा मन मंडला साहस बे और मंडा तो तैयारी कर सास बले। तो असने आजियामी अपन मन के संगु से लिंबो बूटा मंडा तो उवाट के। तो काश्तकार दादा दीदी मन, ए समय ने तो लिंबो बूटा मन नानी नानी तैयार आसत, तो अपन मने के सितंबर महीना तक मंडोक लाए सकास। तुम्ही तो जान सास लिंबो रस के पेरून बले खाऊ से और एचोले संदान बले बनाऊ से, इतलाय काय एचो दवाई ओखत ने बले काम पड़े से। बूटा मंडा तो काजे 50 सेंटीमीटर लाम और 50 सेंटीमीटर ओसार खोदरा होतो रहे। धाड़ी ले धाड़ी और बूटा ले बूटा चो दूरी 6 मीटर होतो रहे। गोटक खोदरा ने 40 किलो गोबर खत, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 ग्राम कार्बोरिल गुंड बूटा मंडा तो 10 दिन पहल माटी ने मिसाउन खोदरा के भरून देतो रहे। बूटा मंडालो पाछे लिमूचो गोटक बूटा ने 10 किलो गोबर खत, 100 ग्राम नत्रजन, 50 ग्राम स्फुर और 50 ग्राम पोटास लागे से। बूटा नानी नानी रलो दाए बखर चलाउन जोताई करतो रहे। पानी के डांडिल ने छिंक देतर नुहा। कोनी बले फसल ने रोग राय तो हो से ची, तो असने लिंबो ने बले काय काय कीड़ी और रोग मन हो से और एचो रोकथाम कसन करतो रहे। एक आमी सांगू से लिंबो जो कीड़ियाए शलभ, साइट्रस सिला, डांडी काना करतो बीती कीड़ी, पील पीली, लीफ माइनर, ओरमा और पंडरा मच्छी। ये कीड़ी मन के मरला तो काजे ओखत बले लागे से। फर चूहक तो कीड़ी काजे 0.02% कार्बोरिल के 3 ले 10 लीटर पानी ने घोरून गोटक बूटा ने छिस्तो रहे। पिलपिली के मरला तो काजे 0.25% क्यूनाल फास्चो घोर बूटा के दखून 3 ले 10 लीटर पानी ने घोरून भाती गोटक बूटा चो हिसाब ने छिस्तो रहे। डांडी काना करतो बीती कीड़ी काजे काना करलो ठान ने रुई के पेट्रोल नहाले माटी तेल ने भिजाउन काना के चुटून देतो रहे। ओरमा के मरला तो काजे 0.5 किलो नीम चो खली नहाले फूल चो गूंड के जड़ लगे देतो रहे। असने बीमारी मन बले हो से तो काय का बीमारी हो से एक बले आमी सांगू से। बीमारी मन आए केकर, गमोसिस और डायबेक रोग जुगे हो से। केकर रोग ले बचातो काजे रोग होलो भाग के कार्टून भाती पकाउन देतो रहे। और गमोसिस के मरला तो काजे नगद बीज के रोपतो रहे, नहाले रोग होलो भाग के धार विती कडरी ने छाली निकरान भाती हुता बोर्डो मिश्रण के लगातो रहे। डायबेक रोग ले डांडी मन सुखलो ने रोग होलो भाग के कार्टून बोर्डो पेस्ट लगलाय सकास। केबे केबे बीमारी ले फरबले घसरे से एके बचातो काजे 2,4-D नाव छो दवाई के 10 मिलीग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिस्तो रहे। एके फेरे खार सांगू दे से फर घसर तो बीमारी ले बचातो काजे 2,4-D नाव छो दवाई के 10 मिलीग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिस्तो रहे। तो काश्तकार दादा दीदी मन, असन हिसाब ने लिमो बूटा चो दखा रखा कर लो ने तुम्ही अगर फर पहा से तेबे खातो काजे बले मिरुक सके लिमो और संदान काजे बले मिरुक सके लिमो।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की पेड़ा खड़ा चुगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हुलहुली। आज इस कार्यक्रम में सुनिए भीमा देवपाल, कलाकार हैं भारत और साथी।

हुलहुली। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भीमा देव पाड़, कलाकार थे भारत और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 8:30 पर कार्यक्रम होगा डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं साहित्य भारती का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7:05 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है नमस्कार जगदलपुर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं काव्य सरिता में हरेंद्र यादव सी काव्य रचनाएं और साथ ही होगी फिल्म गीतों की मधुरिमा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:15 पर। एक ही फिल्म से पेश किया जाएगा 9:30 पर। आज की फिल्म होगी फिल्म बागबान। सुबह 10 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आजिचो सगा। इस कार्यक्रम में सुनेगा हल्बी बोली में समाज सेवक पंडिराम मंडावे से बलबीर सिंह।

अचकी ली गई भेंटवार्ता। सुबह 10:30 पर आप सुन सकते हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम्बे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। 11 बजे हमारा कार्यक्रम होता है एक ही कलाकार। आज ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार समीर पर। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपको सुनवाएंगे 11:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लोकरस का प्रसारण किया जाएगा दिन के 12 बजे। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की और इस कार्यक्रम की संयोजिका होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम लेकर आते हैं 1:10 पर। इसमें सुनेगा आपकी पसंद की फरमाइशी नगमे। कला और कलाकार ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 2:30 पर। हमारी सांधिकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम विवरण के साथ। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:10 पर। बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे और आज शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी। जोनी उजर इस कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनेगा भत्री नाटकीत। कलाकार होंगे नीलू राम और साथी। बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा पिलामन काजे कोट 8:30 पर। आज रात 8:30 पर इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हल्बी बोली में महाराणा प्रताप सिंह पर रुद्र प्रसाद सिंह की प्रस्तुति। आमजो रान आमजो जीवना आज रात 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें सुनेंगे रूपचंद नाग से बलबीर सिंह कच्छ की भेंटवार्ता और रात 10 बजे आदिवासी लोकवाद्य धुन पर केंद्रित पाठ सुना जा सकता है। कलाकार होंगे कालिदास और साथी। श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशै सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्डदेशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिकरूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रतिलीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रतिलीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इजराइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने एमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

याद दिलाती है। सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर दिन नई शुरुआत लाती है। हंसकर देखो इस खूबसूरत दिन को, ये हंसी तो चेहरों पर निखार लाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर सुबह की धूप के साथ। हम भी सुबह की रोशनी और सूरज के प्रकाश में ही श्रोताओं ये दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है। पल भर को भी अगर बिजली गुल हो जाए और सब तरफ अंधेरा हो जाए तब सब कुछ रुक सा जाता है, पूरा काम ढप और हमारा दिमाग शून्य। जी हाँ श्रोताओं, हमारी आंखें अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकती। जीवन में प्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान है और जब हम आज AI के जमाने में हैं, फिर भी कुछ आधारभूत जानकारियां हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे हम स्कूली जीवन में सीखते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है और सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के विभिन्न गुण हैं जिसमें आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, ये सभी हम जानते हैं। और भी बहुत कुछ है जो हमने पढ़ा है या बड़ों से जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और यही बात हम भी कर रहे हैं आपसे, तो है ना कुछ नया। श्रोताओं, 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में ये दिवस मनाया जाता है, जो प्रकाश के महत्व के बारे में हम सबको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन, मतलब उत्तेजित विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। लेजर एक कृत्रिम प्रकाश है श्रोताओं, जो बहुत सारी ऊर्जा के साथ प्रकाश को केंद्रित कर सकती है। खास बात यह है कि ये किरणें बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। तो कहीं आप भी अपने घर में ढूंढने तो नहीं लगे ना उस छोटी टॉर्च को जो हम दिवाली के मौकों पर या प्रैक्टिकल के दौरान उपयोग करते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना। इस टॉर्च का उपयोग हम दूर तक लाल, हरी या नीली प्रकाश को करने के लिए यूज करते हैं। श्रोताओं, इसका उपयोग नाजुक चिकित्सा सर्जरी में हीरे या मोटी धातुओं को काटने के लिए भी किया जाता है। साथ ही हमारे घरों में TV, इंटरनेट के सिग्नल के लिए और बारकोड स्कैनर और DVD प्लेयर में भी हम इसका उपयोग करते हैं और ये सभी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हैं। इसके अलावा भी लेजर किरणों का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे आसपास की जानने की सीखने की बात लेजर के साथ। तो चलिए हम भी इस प्रकाश में, इस धूप में, इस भोर में कुछ आनंद लें इस गीत का।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, और आज के सफर में मैं हूं लक्ष्मण कुड़िकल आपके साथ। तो चलिए कुछ और थोड़ी सी अपनी चर्चा। श्रोताओं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और आप भी अगर योजना बना रहे हैं परिवार के साथ घूमने के लिए, तो चलिए आपको हम ले चलते हैं आज सिक्किम की ओर, जहां विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, जहां सूरज की पहली किरण पड़ते ही सोने की तरह यह जगमगा उठती है। नेपाली, भूटिया, लेपचा और लिम्पू बोलचाल की ये भाषाएं वहां पे हैं। राजधानी गैंगटोक है और सिक्किम यहां पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पर्वतीय राज्य है। श्रोताओं, हिमालय की गोद में बसा यह राज्य समृद्ध जैव विविधता, बर्फीली चोटियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है और एकमात्र 100% जैविक राज्य है। आज ही के दिन यानी 16 मई सन 1975 को यह भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, यानी सिक्किम आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। अंगूठे के आकार का यह राज्य नेपाल, तिब्बत और भूटान से लगा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यह बेहद साफ सुथरा भी है। सिक्किम की खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और समृद्ध संस्कृति को हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में फिल्माया भी गया है। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं गैंगटोक पर फिल्माया गया यह गीत सुनवाने के लिए, जिसमें अभिनय किया था देवानंद और वैजयंती माला ने। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: इन संदेशों के बाद आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार जगदलपुर में। श्रोताओं, रचनाएं विचारों की शब्दों में पिरोई गई खूबसूरत श्रृंखलाएं होती हैं। जी हाँ, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ काव्य रचनाएं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हरेंद्र यादव। आइए सुनते हैं काव्य सरिता में हरेंद्र यादव की कुछ रचनाएं।
4: कविता का शीर्षक है मजदूर। छेनी और हथौड़ा से है करता प्रहार, लगातार कड़ी धूप तोड़ता चट्टान को, अपने पसीना से है धोता, नहलाता उसे, खंड खंड करता तरास तपाषाण को, ढोता कोसों दूर से है लाता लाद लाद, करता चिनाई और दीवारों पर सजाता है अपना गुजारा, कुटियों में झोपड़ों में कर औरों के ही वास्ते वो महल बनाता है। सींच सींच खून और पसीना लगातार, मुश्किल भरा काम आसान कर जाता है, बन के खड़ा होता है महल अटारी जब, उनकी जगह और शोहरत कोई पाता है। नाम कभी होता नहीं किसने बनाया उसे, कौन बनवाया है ये सब पूछ जाते हैं, और चोट खाते खाते जिन हाथों ने सजाया उसे, शोहरत पाने को वही हाथ को कटवाते हैं। तिल तिल मरता मेहनत कस मजदूर जब घर को बनाता और उसको सजाता है, लोग तभी भोगते हैं पाते हैं सुकून चैन, वो बेचारा भूखा बिना छत ही सो जाता है। कैसी है विडम्बना सोचो और विचारो जरा, छत यहां सबको मुहैया जो करवाता है, उसके नसीब घास फूस का छप्पर लिखा, जिससे टपकता टप टप पानी पाता है, फिर भी न गिला न शिकवा किसी से वो भी, मजे से यहां वो अपनी जिंदगी बिताता है, तून तून चिथड़े को ढक के बदन अध, नंगा यहां रह परिवार को चलाता है। धन्य मेरे देश के कर्मठ मजदूर, तेरी हिम्मत और त्याग का हम दाद दिए जाते हैं, कोटि कोटि करते हैं तुमको प्रणाम, यहां तेरे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है फौजी और किसान। एक फौजी एक किसान, एक बहाता पसीना अपना दूजा बहाता खून, एक देता अनाज देश को दूजा चैन सुकून, भूखा प्यासा रह धरती पर एक है फसल उगाता, दूजा सीमा पर प्रहरी बन अपनी जान गंवाता, अटल इरादा है दोनों का दोनों माँ के सपूत, एक शांति का है अनुयायी दूजा क्रांति का दूत, अपनी अपनी जगह है दोनों देश सेवा में लीन, अब काहे का डर दुश्मन से हो पाक या चीन, इनके चलते चैन से रहते हर एक भारतवासी, चाहे देश का हो अमीर या गरीब मजदूर सन्यासी। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है मेघ। क्यों रूठ जाते हो तुम आजकल अक्सर, क्या तुम्हारी सहेली बरखा से कोई अनबन हो गई है, पहले तो जब आते थे बरखा को भी साथ ले आते थे, अब तुम्हारा यूं अकेले आना मन को बिल्कुल नहीं भाता। सारे लोग व्याकुल टकटकी लगाए निहारते रहते हैं तुम्हारी ओर, इस उम्मीद में शायद सुलह हो गई होगी तुम्हारे उनके बीच। हर मेहनत कस हर जीव जंतु निर्भर रहते हैं तुम्हारे दोस्ती पर। तुम्हारे आने से मन में उमंग भरा आता है, मुरझाया चेहरा पुनः खिल जाता है, पर तुम्हें अकेले पाकर सब निराश हो जाते हैं। अब कि आना तो उसे भी साथ लाना, रोटी हो तो मना लाना, झूम झूम बरसाना। बहुत प्यासी है ये धरती, छक्कर उसकी प्यास बुझाना, ओ मेघ तुम बरखा रानी को जरूर साथ लाना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पर्यावरण। प्रकृति की धरोहर को यदि तुम कहीं मिटाओगे, तुम बताओ हे मानव चैन कहाँ से पाओगे, उसकी ही

0: देखना कैसे तुम पर श्रद्धा सुमन बरसाएगी। अगली कवि तक का शीर्षक है माँ। माँ से मिलने अपने घर गया, देख मंजर ठगा सा रह गया, चारपाई पर बेबस पड़ी थी, घर सुना सुना सा लग रहा। घर कमरों में ताला जड़ा था, पड़ोसी चाचा बाहर खड़ा था, पूछा घर के लोग सारे कहाँ हैं, कहा सास को देखने गए हैं वहां, भाभी को देखने कह गए हैं, चाय पानी पूछने को कह गए हैं, इसलिए खड़ा निहारता हूं कब लौटोगे, उन्हें ताकता हूं। सुबह से शाम होने चली है, फिक्र यहां किसको पड़ी है, ठंड से वे सुकड़ी कांपती है, अपना या पराया भांपती है। बेटा को देख भाव विभल हुई, बेटा को देख भाव विभल हुई, बाहों में भरने थी आतुर बड़ी, दृश्य तब का न देखा जा रहा, पुत्र को बाहों में भर कर रो पड़ी। लाल मेरे देखने की आस थी, एक झलक पाने की प्यास थी, देख ली चैन से मर पाऊंगी, तेरे बापू को जब बतलाऊंगी, सुन के बेटा फफक कर रो पड़ा। सुनकर बेटा फफक कर रो पड़ा, देख माँ को बड़ा व्याकुल हुआ, मन में सोचा रहूंगा ना यहाँ, साथ रखूंगा रहूंगा मैं जहां। लौटते ही भाई ने निर्णय लिया, पंच बुलाकर घर का बंटवारा किया, था बड़ा कारोबार घर उसको मिला, मैं था छोटा माँ मेरे हिस्सा दिया। माँ को पाकर जमाना मिल गया, माँ को पाकर जमाना मिल गया, माँ चरण का नजराना मिल गया, उसकी आंचल छांव ही मिलती रहे, स्वर्ग का मुझको खजाना मिल गया, माँ के चरणों में खुशियों का खजाना मिल गया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मौत अटल है। जिंदगी का जंग कोई जीत सकता है नहीं, हारना है मौत से एक दिन अटल ये सत्य है, मौत की आंधी इसे ले जाएगी झकझोर कर, क्या दोबारा जिंदगी ला पाओगे तुम मोड़कर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे ऐसा कभी, जिंदगी से मौत का मिलन न रोक पाओगे, है अटल ये सत्य अच्छे से ये तुम भी जान लो, मौत आएगी ही निश्चित बात ये तुम मान लो, आए हो खाली यहां पर खाली ही जाना है जब, आए हो खाली यहां पर खाली ही जाना है जब, काहे फिर धन जोड़ते हो पाप करके तब, जोड़ लो धन यश का तुम वही तो काम आएगा, और बाकी धन मिथ्या है तेरा सब यही रह जाएगा, लाख कर लो तुम जतन बोगे जो वो काटोगे, अंत में सबके ही जैसे हाथ खाली जाओगे, बोगे नफरत के बीज फिर तो कांटे पाओगे, और प्यार बांटे हो कभी तो प्यार का फल पाओगे, फिर ये तेरा कमाई है भला किस काम का, अंत में ना आएगा कुछ काम धन हराम का, देर लग जाए भले लग जाए कोई गम नहीं, नेकी ही करना हमेशा वो ही संग जाएगा, ये अभी आगाज है अंजाम आगे देखना, जो कर्म किया है उस पे भी कुछ सोचना, क्या परोपकार भी तुमने किया है कुछ कभी, क्या परोपकार भी तुमने किया है कुछ कहीं, क्या किसी से जिंदगी में प्यार बांटा है कभी, ये नियति का है नियम रहते यहीं दिख जाएगा, अपनी करनी का तू फल इसी जमी पे पाएगा, स्वर्ग क्या है नर्क क्या है सब यहीं दिख जाएगा, स्वर्ग क्या है नर्क क्या है सब यहीं पर देखना, जो अगर नेकी किया तो नेक ही कहलाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य सरिता। इस कार्यक्रम में हरेंद्र यादव की कुछ कविताएं। उम्मीद है आपको ये रचनाएं जरूर पसंद आई होंगी। हम आपकी समीक्षाओं का इंतजार करेंगे। बहरहाल चलिए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो अब न...

0: नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: इन संदेशों के बाद अब वक्त है माधुरी माँ का। चलिए चलते हैं माधुरी माँ की मधुर गीतों की ओर। श्रोताओं, दिल, जी हाँ, इस दिल के हजार अफसाने, किसको सुने किसको माने, कभी कभी इस बचपन दिल की शरारतें भी होंठों पे मुस्कुराहट ला देती हैं, कुछ इस तरह।

इश्क या मिजाज दिल की या बच्चे दिल की बात कहें तो क्या कहने, लेकिन इस दिल के अफसाने भी बेहद खूबसूरत होते हैं। इसे क्या चाहिए ये कौन जाने, पूछे जरा अपने दिल से कि वो चाहता क्या है।

जिंदगी क्या है हर नज़र से पूछे, जिंदगी क्या है हर नज़र से पूछे, इश्क क्या है दीवानों से पूछे, इश्क क्या है दीवानों से

गुनगुनाते हुए खुशी का ये पैगाम, गुनगुनाते हुए खुशी का ये पैगाम, भोर में सुबह की किरणें, गर्मियों में या सर्दियों में पंछियों की गुफ्तगू, रूठना मनाना और मुस्कुराकर फिर चल पड़ना, यही तो है जिंदगी।

जिंदगी की चाल बदलती है, जिंदगी की चाल बदलती है जब मौसम बदलते हैं, जिंदगी गुनगुनाती है जब हम गीत गाते हैं। बहरहाल जो भी हो आपको चलना ही है।

कुछ बातों कुछ पलों के साथ, मधुरिमा के इन बेहतरीन गीतों के साथ साथ ही आपके शुभ दिन की कामना करते हुए अब मुझे यानी लक्ष्मी कुड़िकल को नमस्कार जगदलपुर से आज अनुमति दें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
6: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
7: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई।

0: दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े। के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वस्थ रहने पर ही हमारा समस्त जीवन अच्छे से हम बिता सकते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी दैनिक क्रियाकलापों पर संयम रखना चाहिए। खाने पीने, अपने सोने जागने जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए हमें सजग रहना चाहिए। श्रोताओं, बीमारी से बचने के भी कई तरीके होते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लाभ आम जनों को भी मिलते हैं। और श्रोताओं, इसी में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सुनील दास, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर सुनील दास जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है।
1: राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इसके माध्यम से जो है व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सके, यह कार्य राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ समन्वय कर संपूर्ण स्वास्थ्य जो है मनुष्य मात्र को उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। इसके कई सारे घटक हैं। इसके अंतर्गत जो है आयुष सेवाओं का विकास करना,

0: आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, आयुष की दवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और इन सब के प्रचार प्रसार का कार्य इस आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति आती है?
0: इसके अंतर्गत आयुष की पूरी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं। आयुष मतलब आयुर्वेद, वाई फॉर यूनानी,
1: जी
0: वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर सुवारिकबा और होम्योपैथी, ये चिकित्सा पद्धतियां इसके अंतर्गत आती हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना ये आयुष मिशन का कार्य है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ में इस मिशन से स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में क्या लाभ लोगों को मिल पा रहा है?
0: इसके माध्यम से लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आयुष मिशन के द्वारा कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स प्रारंभ किए गए हैं,
1: जी,
0: लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सुप्रजा।
1: जी,
0: सुप्रजा जैसे सर्वविदित है कि जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तब से ही उसके संस्कार प्रारंभ होते हैं, और हमारे महर्षियों के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया हुआ है कि माता के गर्भ में जब कोई भ्रूण पल रहा है उसको अच्छे वातावरण देना, अच्छे संस्कार देना और अच्छी शिक्षा देना, इसके माध्यम से जो है वह जब गर्भ परिपक्व होता है तो गर्भ में जो पल रहा होता है शिशु उसका भी उसी प्रकार से विकास गर्भ से ही प्रारंभ होता है। ये एक सुप्रजा का कार्यक्रम। आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस मस्कुलोस्केलेटल डिजीज ऐसा एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो है ऐसे मैं कहूंगा कि पूरी आबादी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे 70-80 से 90% जिनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई दर्द ना हुआ हो, कोई पीड़ा ना हुई हो
1: जी।
0: और खास करके हमारे भारतीय परंपरा में तो ये माना जाता है कि 60 के बाद शरीर में वात का जो है प्रकोप होना शुरू होता है, वात हो गया, वात रोग हो गया है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब जानते सुनते हैं
1: जी जी।
0: तो उसके रोकथाम के लिए, चिकित्सा के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक आयुर्विद्या का कार्यक्रम है, उस आयुर्विद्या के कार्यक्रम में 4 स्तर उसका बनाया गया है
1: जी।
0: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर
1: जी।
0: तो उस अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग विषय वस्तु तैयार किए गए हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनके मन में प्रकृति के प्रति लगाव, अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उनका परिचय, ताकि आगे चल करके वो बच्चे जो है अपने आगामी जीवन के लक्ष्य के रूप में आयुर्वेद को स्वीकारें, आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को वह जो है सहज रूप से अपनाएं और समाज में आकर के समाज को समग्र स्वास्थ्य देने के लिए कार्य करें, ऐसा एक आयुर्विद्या का यह कार्यक्रम संचालित होता है।
1: जी जी,
0: NPCDCS है जो जीवन पद्धति जन्य रोगों की रोकथाम और उसकी चिकित्सा
1: जी,
0: यह भी आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ के जीवन में व्यक्ति शुद्ध आहार से वंचित होता जा रहा है
1: जी।
0: भौतिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उत्पादकता बढ़ाने के पीछे जो है कृषक खेतों में अनावश्यक रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब औषधि का छिड़काव कर जब फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो उस फसल में भी वह कीटनाशक और उस प्रकार की वो जो सारी चीजें उस फसल में भी आ रही हैं, तो व्यक्ति जो है वह स्वाभाविक रूप से कई ऐसे असाध्य रोगों की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका रोकथाम का उपाय भी जो है यह NPCDCS कार्यक्रम के माध्यम से करने का, ये आयुष मिशन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब ये NPCDCS कार्यक्रम का जो पूर्ण रूप क्या है?
0: नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोग्राम, एंड सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज, एस फॉर स्ट्रोक, NPCDCS।
1: तो डॉक्टर साहब हम देखें कि हमारी अनियमित दिनचर्या और जो आजकल मिलावटी खान पान है इसका काफी असर पड़ता है स्वास्थ्य पर, और इस तरह की बीमारी जो NPCDCS में आपने बताया इससे वो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, तो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो इसके अंतर्गत इन बीमारियों के लिए क्या कार्य किए जाते हैं?
0: एक तो इन बीमारियों के लिए शास्त्र में जैसे निर्देश दिया गया है, महर्षि चरक कहते हैं कि तत्र मात्रा सी, व्यक्ति को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार अभी पुनरग्नि वाला पेक्षिणी, अर्थात आपको जैसा भूख हो उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। ऋतुचर्या के बारे में बताते हैं, अभी ग्रीष्म का ऋतु है, स्वाभाविक रूप से बाहर की गर्मी जो है बहुत तेज, बाहर का तापमान बहुत तेज बढ़ा हुआ है, तो आपके अंदर का तापमान स्वयं जो है शांत है, तो आप अगर अभी के समय में

0: गरिष्ठ भोजन लेंगे, गुरु आहार लेंगे, तो निश्चित ही जो है आपका आहार पचेगा नहीं, क्योंकि आपकी अग्नि उतनी प्रबल नहीं है और आपका आहार नहीं पचेगा तो आपका आहार जो है फिर आम दोष में परिवर्तित हो जाएगा। और आम दोष जो होता है वह सभी रोगों का उत्पत्ति का कारण, ऐसा हमारे आयुर्वेद के मनुष्यों ने और हमारे भारतीय परंपरा में भी लोक जीवन में भी यह बात जो है स्वीकार्य है, सर्वमान्य है कि इस भोजन जब नहीं पचता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये आम जनों में ये है। तो एक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारियां जो है मुख्य रूप से आहार और अविहार, निद्रा सही तरीके से नहीं होना, मन में अनावश्यक तनाव रखना, इन सब कारणों से ये बीमारियां होती हैं। और इसका उपचार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि इसका उपचार है ही नहीं, इसका सिर्फ जो है दवाई खा करके इसको मैनेज किया जा सकता है। किंतु अगर आयुर्वेदी आहार विहार लेकर के आयुर्वेद वैद्य के परामर्श को मानकर अगर कोई चलता है तो निश्चित रूप से जो है इस रोग से वह मुक्त हो सकता है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम है, एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे कि आपकी पसंद का हम एक गीत सुने।
0: चलो दिल धार चलो चांद के पार चलो।
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील दास जी, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का क्या महत्व होता है?
1: आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र जो है इसका बहुत महत्व है
0: जी।
1: आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमनम च, अर्थात एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की हम पूर्ण रक्षा करेंगे
0: जी,
1: उसके उपरांत अगर वह व्याधिग्रस्त होता है तो उसका उपचार करेंगे
0: जी जी।
1: तो यह जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र है जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष ऐसा हम कहते हैं, और हमारे प्रदेश में 400 केंद्र संचालित हैं
0: जी।
1: उन केंद्रों से हम प्रतिदिन योग की शिक्षा देते हैं, उसके बाद आयुर्वेद रस रसायन का प्रयोग कैसे करना है इसकी शिक्षा देते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या इसकी शिक्षा हमारे वैद्य जो वहाँ पर पदस्थ हैं वे देते हैं। और ये प्रयास यह है कि एक ग्रामीण जनता जहाँ पर हमारा औषधालय है वह पूर्ण आरोग्य को प्राप्त हो और वहाँ पर कोई भी रोगग्रस्त न हो
0: जी,
1: ऐसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष का जो है यह प्रयास है और यह उसका उद्देश्य भी है
0: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें कितने घटक हो सकते हैं?
1: आयुष मिशन के घटक, जैसे आयुष मिशन क्या है बताए उस समय ही मैंने बताया, आयुष मिशन में सर्विसेज है प्रमुख रूप से, सेवाएं
0: जी,
1: शिक्षा
0: जी,
1: आयुष सर्विसेज को जो है बढ़ावा देना, आयुष की शिक्षा को गुणवत्ता युक्त करना
0: जी,
1: और इसके और जो भी घटक छूट जाते हैं उसके लिए उसमें जो फ्लेक्सी पुल का भी है उसके अंतर्गत जो है और अन्य घटकों को समाहित करके हम भारत सरकार को प्रेषित करके भारत सरकार से इसके लिए हम सहायता प्राप्त करते हैं
0: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें आयुर्वेद एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद का क्या महत्व है, और जब हम देखते हैं बच्चों के संदर्भ में तो इसमें कुछ स्वर्ण प्राशन जैसी जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: स्वर्ण प्राशन ऐसा है, स्वर्ण को जो है मेधा बुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उस स्वर्ण का जब हम प्राशन करवाते हैं या उस स्वर्ण को घृत और मधु के साथ में जब हम पुष्य नक्षत्र के समय एक तत्काल जन्म लिए हुए बच्चे से 14 साल तक के बच्चे को जब उसका उपयोग कराते हैं तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसकी कांति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सब में पर्याप्त वृद्धि होती है और वह एक स्वस्थ बालक जो होता है, स्वस्थ शिशु जो होता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में परिणत होता है और वह उसके जीवन में रोगग्रस्तता जो है नहीं के बराबर होती है
0: जी।
1: और यह स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम जो है प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर में संचालित है, और जिसको जनता का जो है बहुत ही ज्यादा उनका विश्वास प्राप्त हो चुका है। हजारों लोग उस दिन जो है स्वर्ण प्राशन के लिए अपने बच्चों के साथ हमारे चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं
0: जी जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं और आयुष मिशन की बात करते हैं तो योग जो है काफी महत्वपूर्ण होता है, और हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो आयुष मिशन के अंतर्गत योग का क्या महत्व है?
1: जैसे कि आयुष मिशन के अंतर्गत हम सभी भारतीय पद्धतियों को शामिल करते हुए एक समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, और इसमें योग तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण अंग घटक है उसका योग जो है। और प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे यहाँ 400 संचालित हैं हमारे छत्तीसगढ़ में
0: जी,
1: उन 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने योग प्रशिक्षक रखा हुआ है, और एक योग प्रशिक्षक प्रत्येक योग प्रशिक्षक को हमने 32 घंटे के योग के सत्र लेने के लिए उनके लिए वह समय सारणी तय करके उन्हें दिया हुआ है। साथ ही योग वेलनेस सेंटर भी हमारे इस प्रदेश के अंदर में संचालित है, उस योग वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रत्येक दिन योग का अभ्यास तो करना ही है, साथ ही योग के षटक्रिया को भी लोगों के बीच में हम एक लाभकारी और लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे सामान्य सी समस्या बड़ी विकराल रूप न ले और जो समस्या प्रारंभ हुई है तत्काल हमारे आयुर्वेद और योग के माध्यम से उसका समाधान हो सके, इसलिए योग बहुत बड़ा इसमें उसकी योग की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: तो डॉक्टर साहब, जब हम रोगों की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है इससे बचने के लिए काफी महत्वपूर्ण एक पद्धति मानी जाती है, तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असाध्य होते हैं, जिनका इलाज किया गया है लेकिन जो है व्यक्ति काफी अंत समय में और गंभीर समय में डॉक्टर के पास पहुंचा है, उस समय रोगी के बचने की या जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में एक पैलिएटिव केयर का जो विकल्प दिया जाता है, तो इसका क्या महत्व होता है?
1: पैलिएटिव केयर देखिए, प्रशामक उपचार, ऐसे रोगी जो बिस्तर में बंद गए हैं, घर में बंद गए हैं और न उनकी रोग ठीक होने की संभावना है और न तत्काल उनके कहना चाहिए कि मृत्यु की संभावना है, तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए, उन्हें मानसिक शांति के लिए यह जो प्रशामक उपचार जिसे पैलिएटिव केयर कह रहे हैं, इसकी भी प्रावधान हमारे आयुष मिशन के अंतर्गत किया गया है
0: जी।
1: इसके तहत हमारे चिकित्सक जो है, अभी हमारे रायपुर और बिलासपुर आयुर्वेद महाविद्यालय जो है इसके नोडल हैं और उनके माध्यम से यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर चल रहा है
0: जी,
1: जिसमें हमारे चिकित्सक ऐसे रोगियों का चिन्हांकन करते हैं जो कि बिस्तर पर बंद गए हैं और घर में बंद गए हैं और ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित हो गए हैं जिसका रोग तो ठीक होना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे चिकित्सक उनके घर जा करके उस रोगी के साथ, परिवार के लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ समन्वय करते हैं और परिवार वालों को भी जो है उस रोगी के प्रति उनके मन में सदैव एक ऐसा प्रेम का भाव बना रहे और रोगी को भी यह आश्वस्त करते हैं कि भाई आपका रोग जो है वह ठीक होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, किंतु आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप कभी न कभी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसा उनके साथ संवाद करके रोगी को और परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको एक दूसरे के प्रति, जैसे रोगी के प्रति परिवार के सदस्य यदि नहीं करेंगे तो वो रोगी और परेशानी आएगा उसको, तो दोनों के बीच भी सामंजस्य, हमारे चिकित्सक उनके परिवार के साथ रोगी के साथ सामंजस्य रख करके इस कार्यक्रम को अच्छे से चला रहे हैं ताकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक सुखपूर्वक मृत्यु मिले
0: जी।
1: और वह शांत होकर के इस दुनिया से जाए, ऐसा इसका उद्देश्य है।
0: जी जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर सुनीता जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चाहेंगे आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है क्यों तेरी ओर चला, मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील दास जी से, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हम रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए।
1: रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए ही आयुर्वेद है
0: जी।
1: तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हर व्यक्ति से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, आयुष औषधालय में, और हमारे चिकित्सक से परामर्श लें, स्वस्थ रहने का परामर्श लें। रोगों का उपचार तो हम करते ही हैं, किंतु हमारा आयुर्वेद स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण बोला हुआ है, तो हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें
0: जी।
1: उसके लिए महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, महर्षि वाग्भट हैं, ये बृहत्त्रयी जो महर्षि हैं, इन्होंने कई सारे हमें निर्देश दिए हुए हैं। एक निर्देश तो जैसे मैंने बताया आहार को लेकर के, क्योंकि इस यह आहार ही हमारे शरीर के लिए औषधि है, यह आहार ही हमारे शरीर के लिए विष है। तो इस आहार का हम किस प्रकार भक्षण करें, कौन से ऋतु में कैसा आहार खाएं। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, इस ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बहुत भारी भोजन करेंगे जो पचने में बहुत विलंब हो, तो उससे निश्चित रूप से हमें व्याधि होगा ही होगा
0: जी, जी।
1: जैसे ये सर्वविदित है कि ग्रीष्म ऋतु जाता है, प्रावृत ऋतु जब आता है, हल्की सी बारिश होती है, तो आप देखिएगा कि लोग जो है बहुत से बीमार पड़ते हैं
0: जी।
1: तो क्या वह बीमार पड़ने की घटना एक दिन में होती है?
0: जी, जी।
1: नहीं
0: जी।
1: वह बीमार पड़ने की घटना जो है उसके पूर्व के 2-3 माह से प्रारंभ होती है
0: जी।
1: जब व्यक्ति अपने मुख के स्वाद के लिए अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण से जो उसे नहीं खाना चाहिए या उसके मात्रा से ज्यादा मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, मात्रा का उल्लंघन कर जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आप मद्यपान करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान तो निषेध ही है। ग्रीष्म ऋतु के समय में बहुत कहना चाहिए कि कड़ा व्यायाम यह भी निषेध है, और ग्रीष्म ऋतु के समय में हल्का तरल भोजन लेना, और कहीं पर भी हम ग्रीष्म में अपने कार्य के कारण से कहीं पर भी हम जब प्रस्थान करते हैं, कहीं जाते हैं, सिर पर गमछा होना चाहिए, और गर्मी से बचाव के सभी उपाय करके हमें जाना चाहिए, पर्याप्त जो है पानी पीते रहना चाहिए, शरीर में पसीना बहुत होता है तो उसे नमक की कमी ना हो, यह ध्यान में रखते हुए इसका भी उपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल जो है आयुर्वेद ने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही उपयोगी माना है
0: जी।
1: सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटा पूर्व जागरण, और साथ ही जागरण करने के उपरांत जो है आप एक अच्छे शौच के उपरांत आप अपने शरीर के लिए कुछ समय दें। योग है, प्राणायाम है, व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सबको अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने अपने सुविधाजनक हिसाब से, यह सभी प्रकार का कार्य व्यायाम इन्हें करना चाहिए। व्यायाम से जो है शरीर का दृढ़ीकरण कहा गया है आयुर्वेद के अंदर में, व्यायाम से जो है आपके रूप और आपके कांति में निखार आती है ये कहा गया है, और व्यायाम जो होता है वो अग्निवर्धक होता है
0: जी।
1: अर्थात हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और उसके बाद जब हम आहार करते हैं तो वह समग्र रूप से पचता है, और समग्र रूप से पचा हुआ आहार जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करता है, जिससे हमारे शरीर में न रक्त की कमी होती है, न हमारे शरीर का अस्थि क्षय होता है, न हमारे शरीर का मांस क्षय होता है, और हम एक बलिष्ठ और सुंदर रूपमान और एक शक्तिशाली और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इस जीवन का आनंद ले सकते हैं
0: जी। जी जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आज आपने राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में जो जानकारी दी वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण थी, और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता डॉक्टर साहब की कही गई बातों का पूरा ध्यान रखें और बीमार ना हो इसके लिए कार्यक्रम में आज जैसा बताया गया है इस प्रकार की खान पान और इस प्रकार की दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से रमाशंकर की बातचीत। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आइए सुनते हैं गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, प्रदेश में मौसम का मिजाज पिछले करीब एक हफ्ते में बदला है। हालांकि भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे मौसम में लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों को डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, चक्कर आना, सरदर्द, बुखार और लू जैसी गंभीर समस्याओं की चपेट में ला सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले लोग इस मौसम में अधिक जोखिम में रहते हैं। लू लगने के मामलों में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। आखिर लू लगने के प्रमुख लक्षण क्या है, किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, गर्मी के दिनों में खान पान कैसा हो, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं और धूप में निकलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के रायपुर जिलाधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय जी। श्रोताओं, हम डॉक्टर राय से गर्मी से बचाव, लू के लक्षण और स्वस्थ रहने के जरूरी उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है शरीर को कभी भी डिहाइड्रेट न होने देना, मतलब शरीर में पानी की कमी न होने देना। साथ ही सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ढीले सूती कपड़े पहनना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहने। घर के अंदर पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अचानक ठंड से गर्म में न जाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी पानी और नारियल पानी का हमेशा सेवन करते रहना है। और पुरानी बीमारियों के जितने भी मरीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और किडनी से संबंधित रोगों के जो मरीज हैं, समय समय पर दवा लेते रहें और अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क बनाए रखें।
1: डॉक्टर साहब, ये हीट वेव जिसे लू भी कहते हैं और सामान्य गर्मी में क्या फर्क होता है, किस तरीके से ये आमजन को प्रभावित करती है?
2: देखिए, सामान्य गर्मी में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है लेकिन इसे शरीर सहन कर लेता है। हीट वेव की कंडीशन तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो जाए या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो जाए। यह स्थिति कम से कम 2 या 3 दिन तक लगातार बनी रहे तो उस स्थिति को हम हीट वेव की स्थिति कहते हैं। हीट वेव में शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता बहुत तेजी से कम हो जाती है, खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इन मामलों में हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
1: हीट स्ट्रोक अगर लग जाए, लू जिसे कहते हैं, जो लू लग जाए, तो ये पहले बात तो ये कैसे पता चले कि अभी जो व्यक्ति है उसे लू लग चुकी है और उससे किस तरीके से बचाव किया जाए?
2: देखिए, लू लगने के शुरुआती जो संकेत होते हैं उसमें व्यक्ति को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगती है, उल्टी जैसा लगता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐठन होती है, पसीना आता है और साथ ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान लगती है। यह तो प्रारंभिक और मॉडरेट कंडीशन होती है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी हीट स्ट्रोक कहते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है और जो मरीज बेहोश होने लगता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, हो सकता है मरीज को दौरे पड़ जाएं और चिड़चिड़ापन बेहोशी तक की स्थिति आ सकती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमें इसमें विशेष एहतियात बरतना होता है और तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है।
3: क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो लोग बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होता है?
2: देखिए, जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं उन्हें लू से बचने के लिए तमाम सावधानियों का ध्यान रखना होगा। सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद उन्हें अपने कार्य को करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद हल्के रंग के टोपी गमछा का प्रयोग करना चाहिए, सिर को ढक कर रखना चाहिए और हर एक घंटे में लगभग 10 से 15 मिनट का उन्हें आराम करना चाहिए, छाया में रहना चाहिए, साथ ही पानी की बोतल और ORS साथ में रखना चाहिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि व्यक्ति को अकेले काम नहीं करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो तत्काल सहयोग मिल सके।
3: जी, मौसम चाहे कोई भी हो डॉक्टर साहब, बच्चों और बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी अलग बातों का ख्याल रखना होता है। किन किन बातों का खास ध्यान गर्मी के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों के लिए रखना हो?
2: जी हाँ, आपने सही कहा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को दिन में बाहर खेलने जाने से रोकना चाहिए, वो धूप में न खेलें। साथ ही उन्हें इंडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके कपड़े सूती कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले हवादार कपड़े पहनाने चाहिए, बार बार पानी पिलाना चाहिए, ऐसा न हो कि केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना है, बिना प्यास लगे भी उन्हें समय समय पर पानी देते रहना है, डिहाइड्रेशन के लक्षण देखते रहना है जैसे कम पेशाब का होना, होंठ सूख जाना, त्वचा का शुष्क होना, इन परिस्थितियों में विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं, बुजुर्गों को अकेले नहीं छोड़ना है, उन्हें समय पर दवाइयां देना है, कमरे को ठंडा रखना है, रोजाना शरीर का तापमान चेक करना है, यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना है।
3: जी, पानी के अलावा डिहाइड्रेशन कम करने के लिए और किस तरीके के आहार लेना चाहिए, क्या पेय पदार्थ लेना चाहिए?
2: देखिए, पानी के अतिरिक्त जो पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं और जिन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए उसमें नारियल का पानी लिया जा सकता है, छाछ या मठा सबसे अच्छा पेय माना जाता है, नींबू पानी लें, शहद नमक का सेवन किया जा सकता है, ORS दिया जा सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और चाय और कॉफी लेने से बचना चाहिए, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है।
3: जी, खान पान की बात चल रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया कि किन किन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके का खाना गर्मी के मौसम में ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को खाने के लिए?
2: जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, खाने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्मी के दिनों में सादा भोजन का सेवन करना चाहिए, सादी भोजन में दाल चावल दही और सलाद का सेवन करना स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सब्जियों में लौकी तोरई परवल पालक टमाटर का सेवन किया जा सकता है। फल में गर्मी में मिलने वाले फल तरबूज खरबूज ककड़ी संतरा आम का सेवन किया जा सकता है। खाना आपका हल्का होना चाहिए, कम मसालेदार होना चाहिए और रात का खाना हल्का रहना चाहिए। साथ ही तला भुना मसालेदार स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए।
3: क्योंकि खान पान की ही बात चल रही है डॉक्टर साहब, बीते दिनों हमने देखा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आई, लोग बीमार हुए, तो पहली बात तो यह कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है? दूसरा ये कि इस तरह के मामले अक्सर गर्मी के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं?
2: देखिए, फूड पॉइजनिंग में गर्मी के दिनों में फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, अस्पताल में इनके मरीज ज्यादा आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो भोजन दूषित हो या बासी भोजन का सेवन किया गया हो, इन परिस्थितियों में फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, यदि खाना बासी है बाहर रखा हुआ है तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। साथ ही दूध मांस मछली मिठाइयां ये सभी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब होते हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमेशा ताजा भोजन का ही सेवन किया जाए।
3: जी, कौन कौन सी बीमारियां जो हैं गर्मी के मौसम में तेजी से फैलती हैं?
2: गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां बहुत ही तेजी से फैलती हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे डायरिया, फूड पॉइजनिंग, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया, क्योंकि मच्छरों की भी संख्या बढ़ जाती है, साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियां, हीट रिलेटेड इलनेस, साथ में कई मरीजों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने लगता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है और पेशाब कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और स्किन इन्फेक्शन भी इन दिनों काफी बढ़ जाते हैं यदि मरीज फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट इस सीजन में ज्यादा आने लगते हैं।
3: जी, मौसम बहुत लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में बदला है, सुबह धूप और शाम को बारिश हो जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
2: देखिए, सुबह धूप और शाम को बारिश हो रही है, ये बदलता हुआ मौसम में हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन दिनों सुबह शाम जब पानी गिरने का समय बताया जा रहा है, इन समय हमें अपने साथ छाता रेनकोट हमेशा रखना चाहिए ताकि हम भीगने से बचें। और सपोज यदि भीग जाते हैं तो भीगे हुए कपड़े में हमें ज्यादा देर नहीं रहना है, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अचानक ठंडा गर्म होने से भी बचना चाहिए, शाम को मच्छर से बचाव जरूर करना चाहिए।
3: अब प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में बात करते हैं। प्रशासन किन किन बातों का निर्देश देता है और साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं आम लोगों के लिए, जो गर्मी से बचाव के लिए जो शासन की जिम्मेदारी है वो दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होती हैं?
2: शासन स्तर पर गर्मी से बचाव के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हमारे जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं सभी संस्थानों में लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और मरीजों को ORS काउंटर बनाकर उन्हें ORS प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही यदि मरीज कोई गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है, हीट स्ट्रोक का मरीज है, गंभीर है, तो उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजकर उसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।
3: आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे अगर वो बीमार पड़ रहे हैं या उनमें किसी तरीके के लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें त्वरित तौर पर सबसे पहले क्या करना होगा?
2: देखिए, त्वरित तौर पर यदि किसी भी लू लगने के लक्षण लग रहे हैं तो प्रारंभिक अवस्था में तो घर में ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उन्हें तत्काल किसी छांव में ठंडे स्थान पर लिटा दिया जाए, उनके बदन को गीले कपड़े से पोछा जाए और ORS का घोल पिलाया जाए। इन परिस्थितियों में सामान्य अवस्था तो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन यदि मरीज बेहोश होने लगे, उसकी स्थिति ज्यादा गंभीर होने लगे, तो तत्काल 108 नंबर पर फोन करके जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मरीज को हमें तत्काल पहुंचाना है ताकि उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
3: कहां कहां मिल सकती है स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य केंद्रों में किन किन स्वास्थ्य केंद्रों में किन किन जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं शासन की ओर से की जाती हैं?
2: हमारे प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमर क्लिनिक, सभी जगहों पर गर्मी और लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध हैं।
3: डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में क्या सिर्फ पानी पीना पर्याप्त है और डिहाइड्रेशन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है?
2: नहीं, केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाता है, क्योंकि प्यास लगना डिहाइड्रेशन का एक लेट साइन है, देर से आने वाला संकेत है। डिहाइड्रेशन के संकेत होते हैं गहरे पीले रंग का पेशाब होना, कम पेशाब का आना, सूखे होंठ, मुंह का सूखापन, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द होना, त्वचा का सूखना। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना कम से कम 3.5 से 4.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, काफी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली है, अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या जरूरी सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?

0: बताएंगे आप?
1: मैं सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि गर्मी से हमें लड़ना नहीं है, गर्मी के साथ जीना सीखिए, पानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, शरीर की बातें सुनिए, थकान, चक्कर, कम पेशाब, ये सारी चेतावनियां हैं, इन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही समाज में बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई लक्षण दिखे तो तत्काल 108 पर कॉल करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रायपुर जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। आज फिल्म संगीत में हम आपको पहला नगमा सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। फिल्म का नाम है हम तुम पे मरते हैं।

हर दिल जो प्यार करेगा। आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गीत। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल थे समीर के और संगीत अनु मलिक का था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए सोनू निगम और तुलसी कुमार के स्वर में ये गीत, जिसके शब्द हैं समीर के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है बागबान।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: बागबान कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं फिल्म बागबान के कुछ गीत। श्रोताओं, 2003 में आई ये फिल्म बेहद लोकप्रिय रही है और एक भावुक पारिवारिक फिल्म है जो हर परिवार में होने वाली संवेदनशीलता को दर्शाती है, जिसमें माता पिता के त्याग और आधुनिक पीढ़ी की सोच को प्रदर्शित किया गया है। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।
1: Valentine's Day.

बागबान एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है। एक परिवार जिसमें एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेंगे, लेकिन आखिर में ये होता है कि चारों ही बेटे माता पिता को अलग अलग कर देते हैं। इसी कहानी को बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया है फिल्म बागबान में। लीजिए सुनते हैं एक ऐसे ही दृश्य के ऊपर ये गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है, रूह

फिल्म बागबान की मुख्य भूमिकाओं में थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान, महिमा चौधरी, अमन वर्मा, समीर सोनी और दूसरे कलाकार। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए सभी गीतों की शब्द रचना है समीर की और संगीत आदि श्रीवास्तव और उत्तम सिंह ने दिया। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं फिल्म बागबान के कुछ गीत कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और बागबान अपने समय की व्यावसायिक रूप से सबसे सफल फिल्म रही है और 2003 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। समीक्षकों से इसे बेहद समीक्षाएं मिली और इसकी सराहना भी की गई। इसकी कहानी के लिए बीआर चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार मिला, जबकि जोड़ी नंबर वन के लिए अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को पुरस्कार दिया गया। तो इस फिल्म की कहानी हमसे जुड़ी है, आपसे जुड़ी है, जो आज हमने आपको सुनवाई गीतों के जरिए। चलते चलते एक और गीत फिल्म बागबान से।

0: एक ही फिल्म से। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हमारी फिल्म थी बागबान। मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीपती योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य शासन 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीपती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाने के बाद अब विभिन्न जिलों में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप को बरामद करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर जिले में इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें SLR, 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, BGL लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महानिदेशक डाक सेवाएं जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक दूरस्थ क्षेत्रों में डाक, बैंकिंग, बीमा और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुम्ब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बैगा बहुल ग्राम सिंघारी में विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र में 620 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीपती योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इसे आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज जो सगा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवक श्री पंडिराम मंडावी से बलबीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।
3: जसन की अपन मन जानसा सुनसास की हम चो जुन बस्तर मले ने पूरा संभाग ने साथ था जिला से आरो सातो जिला ने बोलू बिकाए की हम चो जुन एता चो जुन आदिवासी भाई बहन मन चो बोले दूसर मंचो बोले कहीं ना कहीं असन कला कृति आगे ले पुरका पट्टी वेराले चलते ऐसे बोले ने एक इतलो हर एक चो गोट है कि असनी आमचो जो नारायणपुर क्षेत्र ने बोले जे कि आमी अबूझमाड़ बलते लोग मन जानो मंतर का है कि आमचो जोन हिताचो लोग मंचो जोन कलाकृति नहीं जानतो कारण ने ये अबूझ बोलत्रोत मंतर ये धीरे धीरे ये सपाय बाहरी निकलते जातो के दाय सब समझोत कि अबूझ मानने असन कोनी बल्ले ने अबूझ माने नहीं आत हुन मन लगे खूबे हुनर आसे बल्ले ने बुद्धि बले आसे जोन पूरा बल्ले ने भारत देश लोग मन अनुकर्ष कर सो सीख सो तो असनी आजकल अपन मन जानसास की बल्ले नारायणपुर क्षेत्र जो जोन गोटो दादा है पंडू राम दादा एमन के बल्ले ने पद्म श्री पुरस्कार मिलली काय काज मिलली तो यही मन चो टोण ले आमी जानू अलना दादा सब ले खूब खूब जुआर ना
4: अले जुआर दादा
3: तो दक तुचो आमी घरे एवन बाती बोसलो से आरो बल्ले ने कई कसन बल्ले ने कला मन दखा दे से बनालो बीती जोन मूर्ति कला मन आसे बरन बरन चो आसे तू सबले पहले तो ये जानेस ना तुचो नाम और तुचो जोन गांव चो
4: मचो नाम पंडिराम मंडावी आए और मचो गांव गढ़बेंगल आए और नारायणपुर जिला आए।
3: अच्छा तो पंडिराम मंडावी दादा सबले पहले तो जाने से बोले तुचो बोले जन्म आए पूरा बाढ़ती इताय होली
4: इताय चो आए गढ़बेंगल चो आए।
3: अच्छा तो पढ़ा लिखा बोले कसन आए
4: चाहती असन पढ़ ले से जानी था गढ़बेंगल स्कूल में।
3: अच्छा मंत्र ये जो तुचो हुनर आए बोलू भी ये आगे ले तुम चो पुरका पटेल चलते रहे कि तुची बराल मोरोली
4: नहीं अमन जगह हम जगह बाबा बोले करते रहे मैं हम उन मुझे बाबा ले सीख ले से।
3: अच्छा
4: ये काम मुझे बाबा बोले करते रहे और विदेश तक जाऊ रहे जापान बोले जाऊ रहे हम जगह बाबा।
3: अच्छा
4: ये काम में
3: बोले ने आगे ले पीढ़ी ले चल
4: ओ बाबा बोले करते रहे।
3: अच्छा
4: उतार ले मैं सीख ले।
3: अच्छा बोले ने ये जो बोले ने काय काय जिनिस मन आगे बनाते रहना तुझे बाबा
4: बाबा बोले आगे तो ये जो कहीं बिक्री बटन हो घरे कहीं उपयोग काजे कहीं कहीं दरवाजा कहीं कपट बलुआत उता कहीं अब लोग बस्तर ही सब जो डिजाइन और बल्लो में कहीं देवगुड़ी में कहीं में अले ना झूला झूली बल्ले बनाओ गांव चो हिसाब में उता करुवाए काय काय करुवाए आसान बूता मन रहे आगे।
3: अच्छा बल्ले ने गांव चो कोनी बल्ले घर चो कहीं जरूरत
4: और उसन विधि काम जगह करुवाए
3: नाम छो बस्तर ने कहा कि देवधामी छो बोल खूबे
4: और आसे गुड़िया है काया है देव झूलना है उसन जगह बना हुआ है।
3: अच्छा, बोले ने तू जो बाबा संग रहते रहते फिर उन्होंने तू ही सीख।
4: हाँ मैं सीख ले।
3: अच्छा तो ये भी बोले ने काय काय चीज चो बोले ने तू चो जसन की बनाई सी असन गांव का तो बनाई सी ची मंतर मांग बोले कसन चीज मंचो है से बाहरी जात।
4: ये तो मैं ये बांसुरी आगे शुरू कर ले। हाथ में घुमा तो बीती बांसुरी बनाव ले और हमन पेन या बलून से लकड़ी चो हुन बनाव ले शुरू बात कर ले मैं। और धीरे धीरे ये लकड़ी चो मूर्ति यही का तो हमारे यहाँ खंबा बल नहीं बलून से और मरलों में कहीं कहीं गढ़ों से उसन भी थी चीना भी थी उसन भी थी बनाओ तो शुरू कर ले। और उसने करते करते उन्हें सरकार बांट ले बोले कौन कौन तो जान ला। ये जो बोले धीरे धीरे प्रचार प्रचार हो ली कि उतासन बनने से बलते बलते कहाँ तो मुहिम बीता कहाँ तो काय काय बीता संग्रहालय भी आसान सब जगह कहाँ एयरपोर्ट भी था मैं लगा एक मनो बल्ला आसान आसान होली होली और खूब परसर परसर होली है जो।
3: अच्छा और पंडू राम दादा ये बोले आजकल तक आधुनिक जमाना है बोले ना अलग अलग जो फिनिशिंग भी थी कला है तो ये के बोले तुझ कहीं दूसर बाट को सीखो बोल जाओ रे कि तुझे ही मन
4: नहीं ये मैं कहा है नहीं सीखे ले से इतना मचो हिसाब में पुराना तरीका ले करें से।
3: अच्छा
4: ओ और ये अच्छा बेटा मन बोले सीख सो जानू उन मन जी जुना वाले कर सो तो और जी आजकल चो नया फिनिशिंग वाले कर सो।
3: अच्छा।
4: दोनों टाइप चो काम उन मन कर सो
3: तो बोले ने ये जो कलाकृति जो बना तो बीती है बोलू बे मतलब कसन चीज चो मांग काय चीज चो मांग ज्यादा सरकारी हिसाब ने कर सो
4: ये बे बल सो। हालांकि पुराना चो बोले मांग आसे लेकिन नया जो बोले कोनी कोनी बाल सो कि फिनिशिंग बीती बनाओ ये जो जी कोई कई लोग आसन जो बीती के बोले पहले ये मतलब पसंद कर सो आसन बोले बाल सो।
3: अच्छा तो पंडू राम दादा ये बोले मैं किनिक जाने से जसन कि अब तक बोले ने कई बड़े बड़े प्रदर्शनी आसन देश ने विदेश ने बोले कौन कौन बाटोली से।
4: अच्छा आप भारत देश में तो दिल्ली में बोले कई खेप गए से मैं दिल्ली आए मुंबई आए केरल आए कर्नाटक आए उड़ीसा झारखंड कलकत्ता राजस्थान अहमदाबाद असन असन जगह में कर ले से।
3: अच्छा।
4: भारत में और विदेश में बोले तीन चार जगह कर ले से इटली में कर ले से रूस में कर ले से ये हॉलैंड में कर ले से।
3: अच्छा।
4: ये प्रदर्शनी कर ले से।
3: तो ये जसन की तू चो ये जो सामान क्या है प्रदर्शनी कर तो काज ने तो काज का सुविधा रहे से
4: ये सरकारी बाटले सफाई आए। अच्छा। सफाई ने तो काजे जातो काजे सल पूरा सरकारी खर्चा है।
3: अच्छा
4: सरकारी बाटले गेले से।
3: अच्छा बोले ने जसन की बिक्री भांजरी करते लेने उन बाहरी मतलब सामान चो कसन मांग रहे से
4: उन बाटे तो इतना रेट में जुता उन बाटे ज्यादा आए जसन की भाई उन बाटे ज्यादा मूर्ति उर्ति तो धरुण नहीं गेलो है ये लकड़ी चो उन पनिया बलून से उन कंगी आए और ये बांसुरी बांस चो एक धरुण गेलो है।
3: अच्छा।
4: लेकिन ये वाले खूबे बिकली उन इटली में वाले ये तो निंदन नबी चो गोटा है उदलो दाए वाले 400 रुपये में गोटो को बिकली।
3: अच्छा।
4: एक टन बांसुरी और 2006 में रूस में जा रहे हैं उतना तो एक टन बांसुरी 15 यूरो आसान 16 यूरो आसान में बिके।
3: अच्छा।
4: बिकली उतना वाले और ये पेनिया वाले उसने 400 इकाई तो उनका ढाल आ रहा है काय बल्लू तो सन सन काय में तो बिक हुआ लेकिन इंडियन पैसा में 400-500 रुपया ओ आए टाइप से।
3: अच्छा।
4: ओ
3: तो देखना दादा दसन की असन कई कम लोग के असन बाहरी जाओ के मौका मेरे से तो कि हुन बाटे जातो के बोले तुझो काम काजे तुझो अनुभव ने तुझो मन ने कहीं असन ये ली के असन बड़ा तो असन कहीं सोच।
4: हाँ उन दक्कुन बाटे उन बाट ले ही ले से होते तब तो जी मके तो असन बिचार होली कि ये में भले जी का बिक्री बटा में भी अच्छा बिक ले अच्छा कर ले जी पैसा मिले से असन सोच उन बात जी काम भले करा है से आजकल भले मचो जगह 10-12 जन लेकर मन काम कर सोत।
3: अच्छा।
4: आजकल जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाट ले को तो કોટુલ બનાવતો કામ ઇંગ્લિશ મગે ઉતાઈ આમચો લેખામન કરસો.
3: અચ્છા, હો તો ખુદ ભલે પ્રશિક્ષણ વગેરે દેસી સોતી
4: આ સંતો બચો બાટલે ની દે, લેકિન કાય કાય સરકારી બાટલે શીખવતો હોય છે ઉતા બલાવલે રાયપુર મે ભલે 3-4 સાલ સ્કૂલ પીલા મન કાજે ભલે શીખવતો કાજે જબ સ્કૂલ છુટ્ટી હોય અપ્રેલ વગેરે ઉતા 15 દિન કાજે ભલા હુઆ ઉતા ગેલે મેં 3-4 સાલ ગેલે ઉતા ભલે ઓર ઉતા ગેલે મેં એ રતનગીરી મહારાજ બોમ્બઈ પહેલે ઉતા ભલે કાલેજ મેં બડે બડે લેખી લેખા મને ભલે 4-5 દિન કાં શીખતા ઉસન જગા ભલે ગેલે સે પોરું કોઈમ્બતુર તમિલનાડુ મેં ભલે કેજી કાલેજ મેં ઉતા ભલે ભલે ઉરલા ઉતા ભલે ગેલો આ પોરું 4-5 દિન જો કાર્યક્રમ રહે, લેકિન એ તો જાતો સંગે 15 દિન માં ટાઈમ મેલી
3: મચો
4: લાગે એ આમચો બાટચો માળિયા માળી ને બલુ એ કાય તો માદરી નાચ તો બી થી કાય કાય એ બી થી બનાવું હા આમચો આદિવાસી આઠ બલુ બે આમચો કઈ આઠ જાતો ટુકના ગોપલી બહુ બી થી કઈ જંગલ બાટે બુલુક જાતો લકડી આનતો લકડી કાય તો શિકાર ખેલુક જાતો જંગલ મેં ઉસને બીતી લકડી મેં ભલે બનાવું હું
3: હું
4: બડે પારા અસન મેં 2-3 ફીટ પારા મેં ભલે બનાવું હું અસન બીતી.
3: અરુ બાંસ તો કાય કાય જીનીસ બને છે?
4: બાંસ તો મજે ઉન કેવલ બાંસુરી બને છે તા ઉન હાથે એકિંદ્રાવલો મેં બજી હોય ઉન બીતી
3: હો
4: બાંસ ચો આઈટમ ઉની આઈ જાદા અર ઉની જાદા ફેમસ હૈ ઉન કોની ભલે જગા નહીં લેકિન બે કોઈ આય ભલે દૂસરા સમજ નહીં બીકે લેકિન ઉન બી કૈસે કોની ભલે વિદેશ મેં હો ચાહે હમ ચો દેશ મેં ભલે હો.
3: અચ્છા, હો તો કઈ પકનાચો ભલે સામાન બને છે?
4: નહીં પકનાચો તો મેં નહીં બનાય, લેકિન ગોટક બનાવેલો છે મચો બેટા બનાય છે ઉન.
3: અચ્છા,
4: ઉન તો ખૈરાગઢ મેં પડું વાતી ઈલો છે શું ઉન પકનાચો ભલે કરે છે માટી ચો કરે છે લકડી ચો કરે છે પેઇન્ટિંગ ભલે કરે છે.
3: અચ્છા,
4: ઉન કામ શીખલો છે.
3: અચ્છા, ભલે ખૈરાગઢ જવાનું બાદ પૂરા કોર્સ કરલો છે?
4: કોર્સ કરું કોર્સ કરું બાદ ઈલો છે કોર્સ કરલો છે.
3: હા, ઓર પંડુ દાદા જસન કી ભલે સબલે નંગત અચ્છા ફિનિશિંગ હિસાબ ને કોન રૂક છો લકડી છો
4: યે સસાઈ ગેન ઓર યે સીવ નામે હોય છે જાનો?
3: અચ્છા,
4: હો
3: તો ભલે ને આ તું છો ભલે આજકાલ તો લકડી ઓગરા રૂક તો પ્રતિબંધ ભલે હોલી છે ભલે તું છો કહાં?
4: હા ભાઈ એસને નાની સુની ધરતો રહે જાલે કાય મિલ મન મેં પતા કરે છે ઉન મિલ ભી તમને આક્ષણ લી ધરશો ઉતા એલે 4-5 ટુકડા ધરતો રહે તલ ઉતા નહીં તો ઉન ભાઈ ભલે આક્ષણ મેં ઘેનો આઈ જે બડે કામ કાજે હો લે.
3: અચ્છા,
4: હો ફાસ્ટ લાક્ષણ હોય છે નહીં ડીપ મન હું તલે ધરે છે.
3: અચ્છા, હો તો એ બે જસન કી તું છો ભલે ને પૂરા દિનચર્યા બોલું બે કસન હોય છે ના કામ ધામ કસન ચાલે છે?
4: એ બે તો મકે કામ મીરલી છે ગોટો ગોટુલ બનાવતો ભલે છે ઉન ભીતી પોરુ એ સમય મેં ચાલુ કર લેશે 1 સાલ હોય દેવે, લેકિન એ ફરવારી મેં ચરે દે હો ઇતા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ બાટલે મકે બનાવ બલસો અબ આગે આમ જો ગામ મેં ગોટુલ બન રહું હોય તો ગોટુલ મને બે કાય તૂટલા પૂટલા નહીં હાય જે આમચો દેહાત મેં ભલે લેખી લેખા પડલા કાય કરલા તાલે નહીં ના ગોટુલ નહીં જાઉં એસા ના એવું સના કરતે કરતે જતનાવ તો નહીં ઓલી તાલે બંધે છે ઓલી ગોટુલ તો કોની ભલે બહાર લે એસો ગોટુલ કહા ના આમ કે ભલે દખતો રાય ભલે તો કોની સાહબ મને હું તો ગોટુલ તો નહીં આય સાહબ અસાને ભલે કોઈ તાલે એ તો બીતી એ લોક કે ભલે દકાવતો રાય ઓર એ તો બીતી પીડી ચો પીલા પીચકા મન કે ભલે દકાવતો કાજે આગે આસાન ગોટુલ રે આવું તો આમચો નાચ ગાના આયા એસા હોવું આય ઉસાન હોવું આય આમ કે આમ કે સીકુક મીરું આય કાય કાય મીરું આય ઉન મન કે સાંગતો કાજે એ ફેર ગોટુલ ગોટુક નવા બનાવ બનાવું છે ઉતા માચો સફાઈ લોક જો કામ કરતો લોક સફાઈ ઉતા કરું છે.
3: તો પંડુ દાદા એબ તક બોલે તું કે બોલું એ સબ જોન કામ કાજે આય બોલું કોન બાટલે કાય કાય ચો જોન સન્માનિત બોલે કઈ કરલા છો?
4: અચ્છા, એ 2019 મેં રાજ્ય સ્ત્રી પુરુષકાર મિરલી કાયદે

0: हस्सी रुपये का वोट बांट ले। और 2013 में केरल में मेर ली मोटकला ललित कला अकेडमी ऑल इंडिया बलूम पे उन बाटले मेर ली केरल सरकार तो कोची में। उनके बाद फिर ऐसे हुई नवंबर में उन्हीं दाऊ मंद्र जी पुरस्कार एक मेर ली यही नवंबर में ऐसे हुई। और आजकल ये 26 जनवरी दिन घोषणा कर लातु देवे पद्मश्री एवार्ड मीरू भाई बलते घोषणा तो होली से लेकिन नाजुन मेरे शायद मार्च में मेरे दे।
1: अच्छा हाँ तो बोले नहीं ये चुका तो चलो कहीं असन कागज वगैरह बोली
0: नाजुन हमरे हो उन दिन पूछ रहा था जानू मची थे एड्रेस वगैरह मंगा वाला था व्हाट्सएप करूं दे तो अमन जगह ले कमन उन तारीख पटा हुई मार्च में मेरे दे हम लेटर भेजेंगे असन बल्ला।
1: अच्छा तो तुझो आगे असन कहीं मन ने असन कहीं सोचुन मन ने कहीं असन एवरो लेना कि मचो इतलो कला ने बल्ले ने मके देश दुनिया चलो जान दे असन कहीं मन
0: उसन तो मचो विचार रे और तो कुछ बोल ले और कुछ लोग जानो तो बल्ले मके उन सुबह प्रोग्राम में बल्ले खूब लोग जानो और आगे मतलब ये 30 साल लागे का आसपास जो शायद सुबह प्रोग्राम में ये वो रहे तो उन बांसुरी बजाते खूब लोग देखो तो जानो थे।
1: अच्छा तो और जैसे कि आजकल बोलू भी कहा है कि कई कसन बोले ने गांव चो जो एक चो जन पीढ़ी है ये जो उन कला के जो बचा तो कहीं पूरे नहीं हो तो असन मन का जो तुझे बाटले कहीं
0: मैं उन्हीं मैं हम जो आज सिल्विकार बोर्ड चो एमडी के बोले आगे इतनारायणपुर है उरे उनके बल्ले में इतना सीखाओ तो आए ऐसा टाइप से बल्ले नहीं साहब उन सीख तो आए गोट तुम्हारे सीखाओ चाह सीत लेकिन ये में इंटरेस्ट नहीं धरत लोग बाग क्योंकि ये जो मार्केट नहीं आए आगे ये जो मार्केट रत्ती जाले लोग सीखता बल्ले अब ये जो अमन सीखवा ये काम के तो ये जो बिक्री नहीं हो कहीं नहीं आई बने बन बोले कहीं करो राजमिस्त्री में जाओ वो तो आप तो 15 दिन में पैसा मिले थे चले 150 हो 300 हो जो भी रेट बनने से उन तुरंत पैसा मिले थे उस अन काम बाटे जासो जब तक जो मार्केट जो सुविधा नहीं हो तब तक ये काम के नहीं सीखो असन टाइप से मैं साहब मन के बल्ले से बोले।
1: अच्छा
0: हो जो बाट ले ऐसा ना है
1: बल्ले ने सुझाव बोलते
0: हमारा वाले से बल्ले से साहब मन के असन कर लो मैं असन हो दे नहीं तो ये धीरे धीरे ये सफाई ये काम तो कलाकृति बोले ताई हजे दे भी लोग सीख तो नीचा हो तो आज तो आई गोट
1: ये तो अच्छा बल्ले ने गोट के सांगलिस ना पंडू दादा की आमचो जोन परंपरा है रीति रिवाज है जोन बलती यार बाहर बाजार मंडे बनाओ से बल्ले ये चो जोन बचा तो काजे बल्ले तू चो खूबे बड़े काम है से तो आगे जो के चो खिनिक तैयार बाहर आ ये भी जोन मनाए सो कहीं तो फर्क लागे ना गांव मन में
0: तो इतरो ही फर्क मके लागे से आगे जो ढोल वोल काय काय तो गाना वाना हो ये उन धीरे धीरे उन हम तो ढोल डोली बोले तो हाजली ये दाई लेका मन बुला कला काय टूटली पुटली उनके बोले धक्का देखी नहीं उनका कहाँ का इतरो धक्को कोई से उनके केवल उन नंगराई दुई टन बाजे से और गोटक मोरी आसे जाले आसे नहीं तो मोरी वाले नहीं आई ये ढोल मन बोले खूब कम देखो कुमीरे से आजकल हमन कोशिश करूं से के बोले मैं इसी का हर गांव में बनाऊं गोंडवाना में बोले मीटिंग करा हर घर में एक टन ढोल मांदरी हो तो आए हम तो सरकारी बाजा बाजी नहीं हो तो राय शादी ब्याह में बोले उन बाजा मन नहीं आनू हम जो मांदरी उंदरी में आगे करूं उसने मांदरी में ऐसा करूं बना बलून उनके बोले मैं सुझाव दे उनका कहीं से जानो
1: तो दादा तक ये भी तुई ची बल्लिस की बल्ले ने ये सब चीज हाचते जाए से मैं खिने ये भी जो नवा पीढ़ी का सुरता करात कर मैं जानू चाहे से कि आगे बल्ले ने कसन कसन तियार पार हुए वो तक काय काय गीत गोविंद काय काय बाजा गाजा होते रहे जालना
0: ये जत्रा में तो देव जत्रा तो जान सी थी देव जत्रा में डोल बजाऊंगा और ये कहीं मतलब चाड़ उड़ होले उन 4 दिन वाले मांदरी बजाऊंगा और नवा खातो दिन भले

0: बजाते बजाते घर घर घर जाऊ जातो लेकी लेका मन तो उन बलि दानी आई उन्हें बिहार में बलि मान रही आई हाँ ये ढोल तो केवल ये जत्रा जत्री में देवी त्यौहार में आए ये मांदरी तो बिहार में बले आए चार कर लो बले आए नवा खदलो में बले आए सन रे आगे लेकिन ये उन बीती तो आज ली नहीं आई मांदरी मांदरा बले
1: अच्छा बी आगे बिया बले ने कसन हिसाब होते रहे ना
0: आगे दुल्ही के दुल्हा बटाम रहा तो एक तो एक तो ये अपलो अपलो परगने जो हिसाब आए हम जो करगल परगने में ये अमराव तो बीती हिसाब जैसन बिहाव करूँ आन लू और बस उन उन घरे रघु आई भी
1: उन तो देखा जाए कि लेकी की आनत बोले
0: हाँ लेकी की आनत का है भरत हाँ ना अमराव देता आनत और ये का है तो दुगल परगन में ऐसा ना है अब बरात गेलू आन लो लेका बाटे लेकी क्या है ना बिहा हुआ होली होली फिर लेकी फिर भाई बाप घर फिर गेली तो हुन बाट ले फिर 15-20 दिन में फिर उन मांड देखो के उन्हें बलुआ तो उनके
1: अच्छा
0: उन लेकी के फिर गांव बरचो लेकी सियान सजन फिर दुल्हा घरे फिर आपस आनंद हुआ
1: अच्छा।
0: फिर उन दिन फिर उनके खाना पीना सब कर उन बातें लेके छंडन क्या हुआ तो उनमान आपस उस दिन रे ये कर ये कहे तो दुगल बाट चो असन रे आनंद
1: भले लेकिन एक अलग अलग परगना
0: परगना सब में जिक थोड़े थोड़े अलग अलग आए
1: तो भले ने एचो ने अच्छा समाज बोले गोटो एका आसन अच्छा रहे
0: अच्छा रहे एका है अच्छा एकता ही गोटा है मान सम्मान सन पक्का हो आए
1: तो ये बेचो जो शादी भी तु दक्षिस होती कसन लागे ना तो
0: अच्छा ये लागे से जानू लेकिन ये बेचा और आगे में कुबे पर रखा है ये आगे का आए गुटुल चुले का लेकी मन के सांग तो आए नहीं बाबू हम फलाना दिन हम जो गाँव में भी हवा है मच्छी जगह भी हवा है जिके पान पानी सब व्यवस्था का रुकला कैसे बल्ले गोटुल चो लेके लेकर मन लकड़ी खोजू नानू आत उन ब्याह कर तो उन जो घर में उन व्यवस्था हुआ है और उन सब बरत जा तो आए जाले फिर सब उन्हीं लेके लेकर मन कावड़ में चाऊ रूबू जो भी सामान आए बरत जा तो आए गाड़ी घोड़ा तो तुलता नहीं रहे कावड़ में बहुत तो रहे मुंडे बहुत तो रहे जा तो रहे बरात और उन मन खाना पीना भले बना हुआ नाच गाना भले कर हुआ सफाई हो लेकिन आज आसान स्थिति होली से गोटुल बंद हो तो के कि आज कौन तो रान तो बीता लोग कान सो उन्हीं बात साग बना उन देश और आन सो उन बफर सिस्टम आसान बना सो नहीं तो आगे सब गोटुल चले कर लेकिन मन सब करो
1: अच्छा।
0: रान तो परोसतो खवा तो पिया तो नाच गाना सारा उन्हीं मन करो
1: अच्छा।
0: सन रे आगे चो और ये बेचो आजकल उन्हीं होटल बिता के मला उस वहाँ बीती गोट होली से उनका आए रलो बीता तो आने दे पैसा नहीं रलो बीता तो होली जानू
1: बोले ये पूरा काम के निपटा का जो होटल चो जोन बोल सदस्य
0: उन मन सफाई करो तो आगे कहीं नहीं लागे उन मन के
1: अच्छा
0: सांग तो आए 15 दिन आगे तो उन सफाई करो
1: अच्छा
0: मरनी काम में हो चाहे भी हाव काम में हो ये गोटुल चो रे ये बहुत हम जो समझ में बहुत अच्छा होए
1: बोले कहीं कोची गले कहीं काम होले खर्चा बोले उतलो नहीं होते रे
0: हो नहीं होते रे उन मन के कहीं दे तो ही न होए हो सब घर में करो काचो घरे वाले होले
1: तो ये अच्छा गोट के सांगलिस ना पंडू दादा ये चो लोग किनिक आए कि घोटुल की कुनिक दूसरा समझे सो
0: दूसरा समझ
1: किनिक ये चो बोल कहानी किनिक सांगुन दास घोटुल काय काज बन ले से
0: तो घोटुल तो ये हम जो समझ चो ही सब काज आए ये एक दूसरा चो मदद कर तो काजे उनमें कोनी घोटुल में तो ये वो तले का लेकिन उनमें शादी ब्याह होते तो घोट तो के सांग ले मरनी जीवनी में मतलब साथ दे सफाई ब्याह में मरनी काम में सफाई काम में और गांव में कोनी एकदम कमजोर लोग भले आस होते नहीं बेड़ा खाड़ा तो कमावला नीन तो काजे पैसा नहीं आए, कहीं नहीं आए दे तो काजे उसान लोग के बल मदद करो बात।
1: अच्छा।
0: और कहा रोजी रोटी हम जो तैयार से 20 रुपया आए कि 10 रुपया आए, उनके आधा में जहाँ 10-20 रुपया आ से जाले उनके 10 रुपये में करूँ देव बात।
1: अच्छा।
0: नींद उन देव बात से लेकर लेके मन जाऊ ये साल दू जन के करुण दिला कमजोर लोग के पोरुका जी फिर दूसरा के असनारी पारी करुण बात असन भले मदद करो तो टुल चुले का लेकी बन।
1: अच्छा।
0: ओ, असन भले हो
1: भले ने पूरा गांव चो जो गरीब दुखी आत सबके सहयोग
0: सहयोग भले करो लेकिन उन भी गोटे भी नहीं आए,
1: नहीं
0: जब गोटुली टूटली तो एकता ही नहीं आए सब पाई सर ली तो कहा ले
1: बिखरून
0: के लिए सब गोट मन
1: आगे कितलो अच्छा परंपरा
0: हाँ रहे और काम मन भले हो सब सांग ले उन गोट मन सब अच्छा होते रहे मजो अंतजमा के चो जुना गोट मन
1: तो बोले ने ये सब चीज भूतो के खत्म होतो के बोले ने एक जसन के आमी बचाओ बोलते असन तुझो मन ने कहीं ये भी सोच विचार ऐसे
0: सोच विचार तो ऐसे लेकिन बोले बोले से मैं उन बाजा गाजा बोले फिर बनाओ घर पे मांदरी डोल हो वो असन बोले से बाहर जो बैंड बाजा का बाजा नहीं आनू ये हम सभी बाजा फिर से हो वो सन टाइप तो मचो बिचारा आते लेकिन अब कहलो में तो
1: मतलब ने जो पीढ़ी के समझो
0: हाँ समझो पड़े थे कि एक गोट सही आए कि गलत आए नहीं।
1: तो आलना पंडू रामंडा भी दादा तू संग इतलो अच्छा बोले ने तू चो पूरा कहने के बोले ने सुनुक लाई मेरे लिए जानुक लाई मेरे लिए एप चो आम चो नवा पीढ़ी मन सुन सो जाले कहीं ना कहीं असन मन है दे विचार है दे
0: हाँ दादा।

0: ये काय पाडवं जायचे ना
1: हे बाळसून याय जानू
0: भले नाही येता बोलला सन पाड म्हणून उलटा खो असे बजात बजात
1: नाही होय जानूस ने आगे राती बेरा काय जातो बेरा ने बजावात म्हणे काही साप सापी काही काही जानवर काही राले कुछ घूचो बलते बजावते बजावते रेंगो आदवाने
0: हला
1: जुवार दादा जुवार जुवार
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता कार्यक्रम आज जो सगा में। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवक श्री पंडिराम मंडावी से भेंट वार्ता। भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
3: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
6: सुनो ना
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि

0: 0001-4242 पर।
1: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इसे आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ट्यून कर सकते हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम गुड़दुम। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन और साथी।

पिताजी जेकर नाम अर्जुन हवे तो उन्हें जिनके इस राजा द्रुपद हाथ जोड़ करके कथे धन्य हो अर्जुन के धन्य हो मोर दल्ला दे जिसके ले आए द्रुपद कथे मैं तोला कहते हूँ अर्जुन ये झनमोर कन्या हवे तो मैं तोला सुपुर्द करता हूँ ते मोला समझी बना ले और ये तीन राजा

आता ही तो बोला राधा राज में ही एक जान दूते थे दया लागे भैया धर्मे के पासे यमाना लागे भाई तू बोला भेज धर्मराज के पास है इसके सिर पड़ के राजा दुष्टिल्ला चिंता हो गए हे भगवान मैं 12 साल वनवास गये 1 साल अज्ञातवास गये हूँ कर्तव्य हम हो निभावा मांगे 5 गांव नहीं पावा 5 गांव नहीं दो कहा थे का उपाय करना चाहिए अर्जुन कथे भैया हमार प्रति कन्या मिल गए पुत्र अभिमन्यु के शादी करने ये संचित थी अर्जुन लिख करके दूत लगे अरे

से भैया मैं सदा तू चरण के दास हो, तुमरो कृपा कुशल बनिया हुआ, तोरे कृपा से मैं कुशल राजा विराज के घर में निवास करे। अब वो अभिमन्यु के शादी करना हवे,

0: मैं भैया बलराम के सही
1: हाँ।
0: मैं अभिमन्यु के शादी के निमंत्रण देता हूँ
1: हाँ।
0: और यदुवंशी जपे खावे करते हैं ताजा
1: हाँ।
0: दूध पत्र लेकर के भगवान के प्रति पहुँचे भगवान पत्र ल पढ़े
1: हाँ।

0: पर भगवान लड़ाई थी सवे
1: है
0: गजब दिन हो गए। अरे पांडव केरी तरस नहीं पावा जब ते बन पांडव चले जावा
1: है।
0: गजब दिन हो गए मैं पांडव के दर्शन नहीं पाए हो गए बनवास चले।

0: और दहेज कदिक दी दाढ़ी तीन दहेज कुबेर लजावा अति दहेज दी पांडो के पांडो मल्ला के कुबेर झलालत
1: है।
0: ये कर बाद में भगवान कृष्ण राजा द्रुपद त्रिखंडी धृष्णु काशी नरेश राजा द्रुप विराज महावीर उत्तरा कुमार शंख पांचो भाई पांडो अभिमन्यु के सहित भगवान कृष्ण मनन करी भैया अरे निज कर्तव्य पांडो निभावा वाधा राजा गुरु नाथ बचावा अरे सुन करके राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कथे प्रभु अरे

0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन और साथी।
1: बड़े बड़े किला जीता मैं तोला शंका नहीं आवत है। अरे अर्जुन अब मैं बाण मारत होते रस्ता।

के सब अधीर हो गए। कैसे अधीर होते हैं? अरे कौरों का डका डोलत है कैसे, तो कदली पात मरुत लग जैसे, जैसे हवा के लगे में केला पत्ता डोलते उतरे कौरों के दल डोलते। अब अर्जुन एक बार मारी अपना थामा विरत होके रथे के पुत्र।

भी अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य परास्त होकर के रस्ते कूद के भाग गए। एक बार से बड़े बड़े वीर बना दुशासन आकर के युद्ध करी, दुशासन घला हार गए। एक बार में महावीर शकुनी अर्जुन लंग बहुत दल ला करके फेर के बांध के वर्षा करी, पर अर्जुन से कोनो विजय नहीं करी। ये करते महावीर शकुनी घला व्याकुल होके भाग गए। राजा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार पहुंच गए। राजा दुर्योधन के पुत्र ला देख करके महावीर

पिता पूछ मत कराओ, एक बार निकाले अर्जुन मारे महावीर लक्ष्मण कुमार मूर्छा हो गए। तू तो सने कुरुपति तब धा वही राजा दुर्योधन पुत्र के शोक के कारण दौड़ के आई। राजा दुर्योधन कहते खावन अर्जुन आप दूसरे के धोखा छोड़ दीजिए। अरे

महावीर निकालीस बाण ब्रह्मशस्त्र चला देते हैं, बाण बाण से निवारण हो गए। भीष्म पितामह बाण को निवारण करते देख करके जो ही तेरा नजर देखते अर्जुन के अस्त्र शस्त्र को काट करके अपनों

0: निरंजन के
1: हाँ।
0: जितने दल है चारों दिशा में सुता के गुंज अर्जुन के पोर घेर लेते
1: हैं।
0: अर्जुन हा निकालित मोहन नाम के बाण, मोहन नाम के बाण से छोड़ दी
1: है।
0: अरे मोहित भय बचे नहीं कोई, अब एक मोहित नहीं हुई

महाराज में ऐसे बेटा पैदा करे हो कौरों के दल्ला जीत करके आवत है जय दल देख काल भय खावा तुम दल्ला देख के काल हदरते दल्ला जीत करके मम सुतया आज भवन निजलावा मोर बेटा है आज घर में लाना थे अरे क्या चली झुंझा के।

0: सालीन
1: है
0: और बहुत जमुना नगर के नजदीक में आते अर्जुन कथे बेटा से जा रहा है दरबार में
1: है
0: समाचार बता दे बहुत रसला में राज मंदिर में जाता
1: है
0: वो उत्तरा कुमार जा करके पहले प्रणाम कंकृति के
1: है
0: कंकृति हर सुन के भगवान कृष्ण के इरादा करके

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में झाड़ूराम देवांगन और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार केंद्रित है, शब्दों के जादूगर हिंदी सिनेमा के गीतकार समीर अंजान पर। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में जब भी मधुर गीतों, गहरी भावनाओं और दिल को छू लेने वाले गीतों की बात होती है, तब समीर अंजान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। समीर का जन्म 24 फरवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध गीतकार अनजान के बेटे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: समीर अंजान को बचपन से ही साहित्य और संगीत का वातावरण मिलने के कारण उनके भीतर लेखन की कला विकसित हुई। हालांकि शुरुआत में उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने कठिन परिश्रम और प्रतिभा के बल पर समीर ने हिंदी फिल्म जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। 1980 और 90 के दशक में समीर ने हिंदी सिनेमा को अनेक सुपरहिट गीत दिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: समीर ने कई प्रसिद्ध गीतकारों के साथ काम किया जिसमें नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित जैसे नाम शामिल हैं। समीर के लिखे कई गीत आज भी सदाबहार गीतों में गिने जाते हैं। समीर को वास्तविक पहचान फिल्म आशिकी और दिल के गीतों से मिली थी।

समीर ने हजारों की संख्या में गीत लिखे हैं, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। उनकी सफलता केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, असली सम्मान उन्हें श्रोताओं के प्रेम और प्रशंसा के रूप में मिली है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित था गीतकार समीर पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता का पहला गीत सुनिए सोनू निगम की आवाज में। शब्द रचना है फैज अनवर के।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा अभिजीत सावंत की आवाज में।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
7: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। अगला गीत पंकज उदास की आवाज में। जमीर काजमी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मीडिया ब्यूरो एफ एम्बियंट पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार आप सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने हर पक्के भवन और प्रधानमंत्री आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने तथा खेतों में डबरी निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें एसएलआर 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, बीजीएल लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 14 मई को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे कार से ओडिशा ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन को रोक लिया और अपहृत युवक को सुरक्षित मुक्त कराया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने उधारी की रकम वसूलने के लिए युवक का जबरन अपहरण किया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील का समर्थन करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने आवास से संकल्प भवन तक 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल मीटिंग को फिर शुरू करने का आह्वान अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यापक राष्ट्रीय हित में है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के पुनर्जीवन और इको रिवरफ्रंट विकास परियोजना के तहत कल यूएवी ड्रोन सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। बिलासपुर में 7 वर्ष पहले 2019 में हुए विराट अपहरण कांड में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 5 आरोपियों की अपील खारिज कर उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक केंद्रित सुधारों की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है संपत राम नाग की। संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: फोनिन लोगरस के सुनतो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो फोनिन लोगरस।
2: नमस्कार दादा, मैं चिमनी कुरासिया काजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में इंद्रवान सिंह बोला था।
1: हाँ, और इंद्रवान दादा आजकल कसन ना काय काय काम पता चले से?
2: यही ड्यूटी पे रहते हूँ दादा, नौकरी में हूँ और छुट्टी के टाइम हो गई से और रात का कार्यक्रम में जुड़े हूँ, फोन करत हूँ।
1: हाँ।
2: बातचीत होते बढ़िया लगा थे, मौसम यहाँ एकदम उमस गर्मी हवे, छाया में खड़ा हूँ, ठंडा ठंडा हवा चलत। तो आज मैं दिशा मुड़त हुए अपन पसंद के गीत ला बतात हूँ और गाना हवे बैरी बैरी ला। और सबसे पहले गीत ये आपला और केंद्र निर्देशक साहब के जगदलपुर में जुड़े सभी श्रोता भाई मल्ला, उद्घोषक भाई मल्ला, श्रोता भाई मल्ला, छत्तीसगढ़ के श्रोता मल्ला, सभी श्रोता मल्ला, भारत राज के सभी श्रोता मल्ला, डीडीएच रत्न कर प्रसारण शुक्रवार के 10 बजे और शनिवार के दोपहर 12 बजे हुए।
1: तो
2: जरूर सुना दी है दादा।
1: ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत सुनाते हुए ना।
2: जी दादा, राम राम
1: राम राम जुआर।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: हाँ जोहार भैया।
0: जुआर ना आगे ना संगास नहीं। कौन बोला सास?
1: हाँ नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नहांदा जिला बालोले कैलाश यादव बोला था दादा।
0: हाँ कैलाश दादा, काय काय काम बता चल ना यो गांव बाटे।
1: हाँ बढ़िया है। गांव में भी धान की लुवाई चलत है। धान
0: हाँ
1: गर्मी धान की लुवाई चलत है। वे घाम घलोक अच्छा चलत है बढ़िया।
0: हाँ दान कसना से ना गर्मी बिरा चो।
1: हाँ धान लुवाई चलत है बढ़िया गाँव डहाने भी। हाँ
0: हाँ। हर संगा आज कौन गीत के सुन तो कैसे फोन लगा ला सास।
1: तो जिसे हम ममता चंद्रा करके सुना दे।
0: हाँ हाँ ठीक है कैलाश दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए ना।

0: हेलो
1: हाँ कौन बोला सर दादा अगिनाथ सांगस नहीं ना
0: ईश्वर लाल निषाद बोले दादा
1: कौन गांव ले दादा
0: ये कोंडा गांव जिला बड़े बेंद्री
1: और निषाद दादा सांगा ना है गांव कसन है ना
0: ये बस में गाड़ी चला है इसका है ना रायपुर बता रहे
1: अच्छा रायपुर बट कितलो गर्मी आ जाए ना
0: खूब गर्मी आए ना गाड़ी भीतर बस ही नहीं हो ये बट गस्त में आई ना कहीं नहीं आए पार्किंग अल्ट्राटेक सीमेंट भर गए बलौदा बाजार लगे कूलर वूलर लग ली से हुए बसलू से खूब दिन हो रही लग गए आज बोल टाइम रही
1: लगा तो रहा है कुबे दिन ले ठीक है ना तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए।

0: हेलो, फोन इन लोग रस।
1: हेलो
0: हाँ
1: हेलो सर।
0: हाँ फोन इन लोग रस।
1: हाँ सर, मैं जयलाल मरकाम बोल रहा हूँ, कोंडा गाँव।
0: हाँ हाँ हाँ मरकाम दादा सांगा ना बिया करी आशा सका ने बे ने
1: है
0: ये बिया करी आशा सका नु बोले से।
1: बिहार करे। हाँ
0: हाँ ये वर्ड बोल तो सुनू को ऐसे।
1: राम तो भूता में दिल सतका है तो निभाओ पड़े से।
0: हाँ, नहीं उन तो निभा तो रहे ना गांव चो काम बूता चलू है नहीं उनकी सफाई करो सफाई
1: हाँ
0: मिलन मिशन कर तो रहे ने।
1: हाँ
0: और जयराम दादा सांगा ना यो गांव कसन आ जाले। हाँ
1: गाँव में अभी तो छेके से काली जी पानी गिर ली का है।
0: हाँ कितलो मार ली ना
1: पानी
0: पानी है।
1: काली जी के गिर ली, ज्यादा नहीं गिरे, आज नहीं गिरो पलू से का है आज ये।
0: आज फिर पार्टी आए बे।
1: रिसेप्शन बीच पार्टी आए
0: हाँ जयराम दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सस ना।
1: कौन ही गला गीत सुनाऊं देहा।
0: हाँ हाँ कल ठीक है मरकाम दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से तेवे ना सुनाते हुए।

0: हेलो।
1: हेलो पोनी लोगराज।
0: हाँ जोहार दादी,
1: जोहार।
0: इन्हें तो कमर दादी।
1: हाँ ना संपत राम नाग पकमन दादा, ये मेरा है दादा, फिर पकार ना।
0: हाँ हाँ जय राम कर चौके में दादा उदय
1: हाँ
0: में नहीं चिल्ले
1: हाँ
0: आंदले वेतले तेल फोन लगा लगा चिंता ने नाई के आगे इन्हें तेले कुछ दिन तेल लगा चिंता ने मानते फोन इन लोग रस्ती कार्यक्रम
1: हाँ
0: की
1: हाँ जयराम दादा, अल्प आर पुलुप तो दादा।
0: आन चंदर गेड़े ते नाई संपत दादा
1: अच्छा सांदर गए थे। हाँ
0: चंदर गेड़े ले आए।
1: और बकर दादा आजकल नाथ नाथ भूतल चाहे अमर जले। हाँ
0: हाँ क्या करना था पूछे दादा ये सूट के लेर मो नई काम सेटिंग काम इसी काम गेर मो हम
1: हाँ
0: एक दूसरा को चिल्ला गा
1: हाँ
0: मेलगो हमको लोग को नीर नीर वाक बना इसी लागी इस दुपा से लुल पाता माँ उसकी पाचे लुल पाता माँ बरसा हुआ देखता
1: हाँ बरसा हुआ देखता है। हाँ
0: हो ये पेपर वहाँ जीवन जमें ताकि वाह इन जेत नाक मामे चीन लिखीं दे
1: हो जितना आता ना इद्दी को समय आए चिला। हाँ
0: हो ये देखे ही पटे दाता देखे इन मुट मुट बली डूर आते
1: हाँ
0: इकोटने दिले
1: हो
0: ताकि वाह आमों कुन जेत नाक माम
1: हाँ हाँ पकन जयराम दादा पकेरी ने आर पाटा पाए वेंदन नुक फोन चार्ज अपना।
0: हाँ आनी कलवती अरसेंगे लोग इना आ रहे हैं सब पाटा वेल किसी दुर्वा पाटा
1: ओ
0: अरे फिर
1: अल्टी अल्टी का दा तो पाटन हम वेन पिकमो वेनर थे बेरे।
0: हो दादा जोहार
1: हाँ
0: तेबे
1: जुआर।

0: हेलो पुनीन लोकराज।
1: हेलो लोकराज।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा आगे ना संगास
1: हाँ
0: नहीं ना।
1: हाँ जय राम जय जोहार।
0: जय राम जय जोहार। आगे ना संगास नहीं दादा तुम चो।
1: हाँ मैं डोमेंद्र नेताम बोला तो ग्राम मुंडा टोला विकासखंड नोल्डी लोहारा जिला बारो छत्तीसगढ़ से दादा।
0: हाँ नेता दादा संगा ना गर्मी कसन आ जाले हो तुम चो बाटे।
1: गर्मी तो बहुत खूब है पूरा।
0: हाँ
1: हाँ हाँ भारी गर्मी है।
0: हाँ
1: कूलर कूलर ऐसी काम नहीं करते। हाँ हाँ गर्मी जोर से पड़ते हैं।
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: हाँ ये बाट बोले गर्मी खूब आए ना। अभी तो
1: खूब आए।
0: सपाए बाट
1: आओ
0: गर्मी आ ऐसी ने है।
1: आओ।
0: हाँ नेताम दादा सांग आजी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सासना।
1: हाँ वो तो विदुषी ममता चंद्राकर के गाय एक गीत रही से भैया
0: हाँ
1: सुना देना
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: दादा।
0: हाँ ठीक हल ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते पे।
1: हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दादा।
0: हाँ धन्यवाद ना।

0: हेलो, कौन इन
1: हेलो।
0: लोगरास
1: जोहार दादा,
0: जोहार ना आगे ना संगास नहीं, कौन बोला सास?
1: अशोक कुमार साहू बोला दादा। कर्मा चौक लोहारी डीहा जिला कमरधा छत्तीसगढ़ है।
0: हाँ, और अशोक दादा सांगा कसन है सास तुम्हें?
1: सब बढ़िया है दादा। दादा
0: गर्मी कसन आए बोले से? हाँ
1: अभी तो अच्छा गर्मी बाहे है,
0: हाँ
1: बहुत ज्यादा गर्मी बाहे है।
0: हाँ
1: गर्मी ला बचे बार अब का है दादा, समय के हिसाब से काम करना पड़ते। सुबह 10 से 11 बजे तक काम हो पाते, उसके बाद 4 बजे ले फिर भी मिलता काम बुता में।
0: हाँ गांव में बोल काम बुता नहीं कर तो रहे ने, बियाने बियाने कर ले उतलो
1: हाँ
0: काम नहीं रहुआ है।
1: हाँ बहुत
0: हाँ
1: ज्यादा गर्मी बाढ़ है दादा।
0: हाँ, अशोक दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला ससना?
1: ने पंच राम मिर्झा संवारी में सिखाए, हर गीत सुना देते भैया, पर इसे कोई भी गीत सुना देना।
0: हल ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
2: मोर

0: कौन लोग रस
1: हाँ पुलिंग दादा
0: जुआर ना आगे ना संगास नहीं कौन बोला सर दादा।
1: अच्छा सोमाराम ने ताम बोले ऐसे दादा
0: कहाँ ले दादा
1: ये मोहपाल ले।
0: और सोमा दादा सांगा ना कसन है गर्मी आसे जाले आजकल
1: आसे दादा हालांकि पानी गिरे से दादा ये जी के जी
0: अच्छा पानी मारे से हो
1: पानी मारे से काली परों दिन ही ज्यादा गिर ली जान
0: हाँ जाले बेड़ा उन की जोप तो लायक वे देखा है कसन ना
1: हाँ होली दादा आधा बाग जोप लूं से
0: जोप ला सास
1: हाँ
0: खूब नहीं आयो सन
1: हो ये जी हो सुबह थोड़े लागे से जान दादा हाँ आज फिर जी घामे आसे तबे का लेकिन पानी गिर लो देखो ठंडा लागे से
0: हाँ। गर्मी बेरा का ये नहीं लगा ला सर दादा तुम्हें
1: हाँ आसे दादा जोंद्रा आसे
0: अच्छा जोंद्रा पाक ली बेन टूटा लाज बेन ना जोन
1: ना जोन ये जी पाके से का है
0: नेताम दादा सांगा आजी कौन गीत के सुनते काज फोन लगा ला सर जल ना
1: ये हाँ दादा ये दे सुखराम सलाम चो गोंडी गीत सुना उन्दे हाँ दादा
0: सुखराम सलाम चो
1: हाँ
0: ठीक है दादा तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते
1: हाँ दादा ले जोहार ना
0: अल जोहार ना।

0: हेलो पोनिन लोगराज, हेलो पोनिन लोगराज।
1: हेलो।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा
1: जुवार दादा
0: जुवार ना, कौन
1: कामेश्वर कोराम बोले से
0: कहाँ ले दादा?
1: अंगवा ले जिला कोंडा गाँव है।
0: और तामेश्वर दादा सांगा ना कसना सा तुम्ही?
1: नंगा ते आसंग दादा
0: हाँ गाम कसना है ने हो?
1: ये आजकल बिया मन खूब होए से बिया घर बैठा सो
0: अच्छा बिया घर बैठा सा,
1: तो,
0: बिया करने वाले जाते रह जान ना।
1: आई कह आज इस साल तो खूब होए से बिया का तो योगेश्वर दादा चो गाँव लोग गीत की सुना हो गया से। हाँ
0: योगेश्वर पुजारी चो कौन गीत दादा?
1: कोनी बीती बोले। हाँ
0: अच्छा कोनी बोले, हल ठीक है तामेश्वर दादा, तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: हाँ जुआर दादा।
0: हाँ जुआर ना।

0: हेलो
1: संगवारी मोर माया भरे राम राम
0: राम राम। और दादा
1: नवागढ़ कटाई जिला बेमेतर छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी।
0: हाँ संगवारी सांगाना कसना सा दादा तुम्ही
1: संगवारी
0: कसना सास बोले से
1: आओ बने बने हम संगवारी देखना बने घाम गर्मी पड़त हवा वो दे बोरे बासी खात हवन संगवारी
0: कसन करू आज तो गाम बेरा तो कहूक पड़ू आए बोरा बासी बोल का तो रहा है बासी पेज बोल का तो रहा है ने तो नहीं तो बढ़िया ठंडा करू आए ना शरीर के
1: हाँ संगवारी वही आप लोग मैं कहा था बोरे बासी खात हम संगवारी अवे दे अवे थोड़कन सांझ हुई तल खेत डहर जावन जी कांटा खोटी दीने भर संगवारी अब का है वही दे अभी तो टाइम है संगवारी तो खेत के काम में घलो लगे हवन कुछ मेड़ पार के देखभाल करत हवन और कुछ अपन जैसे खेत में दिलवा होते संगवारी वोला खन कोर के मेड़ बनावत हवन यही काम चलत हवा संगवारी आप मन के देख मीठ मीठ गोठ लसून के तो हमारा भी एकदम ऐसे लगते कि जैसे एकदम एक बोरे बासी में मन है
0: आयोजन में गांव ने रतवितान फिर वसनी आयोजन ने
1: हाँ संगवारी
0: और नारायण दादा सांगा यूँ गांव कसन आ जाले गर्मी।
1: हाँ संगवारी आप देखो ना हमारा वो आपके माया ऐसे हवा संगवारी तो दोनों को माया भरे बढ़िया से गीत सुनवा देवा।
0: हाँ ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: हाँ संगवारी राम राम
0: राम राम।

दादा दीदी मन कार्यक्रम फोन इन लोगरास जो रिकॉर्डिंग रोज लेकिन बार दिन के 3 बजे ले दरुन 3:30 बजे तक वैसे एता तुम्ही बोले फोन करून तुम चमन कर लो गीत के सुनुक सकास। फोन कर तो काजे आमचो नंबर आए 222-666 और गोटक नंबर आए 222-160। फोन कर तो पहिल जगदलपुर चो STD कोड नंबर आए 077782 लगाऊक नी भूलका। एदाय फोन इन लोगरास ले मके दिया विदा जुआर।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति थी संपत राम नाग की, संयोजक थे चंद्र ऋषि ठाकुर। दिन के 1 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि शामी की बेड़ा खाना चो गुट।
4: काश्तकार दादा दीदी मन, अपन मन तो कई प्रकार चो फर मन चो कमानी कर सास, और ए समय ने कई ठान फर बूटा मन मंडाला साहस बे और मंडा तो तैयारी कर सास बले। तो असने आज आमी अपन मन के संगु से लिंबो बूटा मंडा तो उठ के। तो काश्तकार दादा दीदी मन, ए समय ने तो

0: बोबूटामन नानी नानी तैयार आसत तो अपन मने के सितंबर महीना तक मंडोकलाय सकास। तुम्ही तो जानसास लिंबू रस के पेरुन बले खाऊ से और एचोले संधान बले बनाओ से इतलाय काय एचो दवाई ओखत ने बले काम पड़े से। बूटा मंडा तो काजे 50 सेंटीमीटर लाम और 50 सेंटीमीटर ओसार खोदरा होतो रहा है। धाड़ी ले धाड़ी और बूटा ले बूटा छो दूरी 6 मीटर होतो रहा है। गोटक खोदरा ने 40 किलो गोबर खत, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 ग्राम कार्बोरिल गुंड बूटा मंडा तो 10 दिन पहल माटी ने मिसाउन खोदरा के भरून देतो रहा है। बूटा मंडालो पाछे लिंबू चो गोटक बूटा ने 10 किलो गोबर खत, 100 ग्राम नत्रजन, 50 ग्राम स्फूर और 50 ग्राम पोटास लागे से। बूटा नानी नानी रलो दाएं बखर चलाउन जोताई करतो रहे, पानी के डांडिल ने छिंक देतर नुहाए। कोनी बले फसल ने रोग राय तो होय से ची तो असने लिंबू ने बले काय काय कीड़ी और रोग मन होय से और एचो रोकथाम कसन करतो रहे एके आमी सांगो से। लिंबू चो कीड़िया शलभ, साइट्रस सिला, डांडी काना करतो बीती कीड़ी, पील पीली, लीफ माइनर, ओरमा और पंडरा मच्छी ये कीड़ी मन के मरला तो काजे ओखत बले लागे से। फर चूहक तो कीड़ी काजे 0.02% कार्बोरिल के 3 ले 10 लीटर पानी ने घोरून गोटक बूटा ने छिस्तो रहा। पिलपिली के मरला तो काजे 0.25% क्यूनाल फास्चो घोर बूटा के दखून 3 ले 10 लीटर पानी ने घोरून भाती गोटक बूटा चो हिसाब ने छिस्तो रहा। डांडी काना करतो बीती कीड़ी काजे काना करलो ठान ने रुई के पेट्रोल नहाले माटी तेल ने भिजाउन काना के चुटून देतो रहे। ओरमा के मरला तो काजे 0.5 किलो नीम चो खली नहाले फूल चो गुंड के जड़ लगे देतो रहे। असने बीमारी मन बले हो से तो काय का बीमारी हो से एक बले आमी सांगू से। बीमारी मन आए केकर, गमोसिस और डायबेक रोग जुगे हो से। केकर रोग ले बचातो काजे रोग होलो भाग के कार्टून भाती पकाउन देतो रहे और गमोसिस के मरला तो काजे नगद बीज के रोपतो रहे नहले रोग होलो भाग के धार बीती कडरी ने छाली निकरान भाती हुता बोर्डो मिश्रण के लगातो रहे। डायबेक रोग ले डांडी मन सुखलो ने रोग होलो भाग के कार्टून बोर्डो पेस्ट लगोकलाय सकास। केबे केबे बीमारी ले फरबले घसरे से एके बचातो काजे 2,4-D नाव छो दवाई के 10 मिलीग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिस्तो रहे। एके फेरे खार सांगू दे से फर घसर तो बीमारी ले बचातो काजे 2,4-D नाव छो दवाई के 10 मिलीग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिस्तो रहे। तो काश्तकार दादा दीदी मन असन हिसाब ने लिमो बूटा छो दखा रखा कर लो ने तुम्हें अगर फर पहा से तेबे खातो काजे बल मिरुक सके लिमो और संधान काजे बल मिरुक सके लिमो।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चो गोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: साढ़े 7 बजे ले 8 बजे किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोता सुमन सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपिका जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश आई है नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू जी का। पुणे से इस पत्र को लिख भेजा है प्रियंका आर्या पंकज वाड़ोदे, जरुण वरुण से आप हैं बाबा साहेब वाड़ोदे मीनाक्षी चरपे, जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आप हैं मुजरफ खा तड़वी, जरीना मुबारक परवेज बिटिया तैमूर और भैया तड़वी, उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत शमरीन परवीन मोहम्मद रिहान माहिरा नूर, बेडी से आप हैं हुकुम करमकर सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमकर, कुमार गली कोलगांव से इस पत्र को लिख भेजा है पांडु चंदन उषा चंदन रानी चंदन प्रतीक्षा चंदन अभिषेक चंदन सार्थक चंदन प्रथमेश संतोष पांडुरंग कुम्हार, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिंपल देवांगन, हटरी चौक बिलाईगढ़ से आप हैं खीकराम देवांगन रेनू देवांगन प्रियंका और रजनी देवांगन, ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी निखत परवीन अब्बासी सहनवाज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अरजान और अबान अब्बासी, बागबहरा भदरती से आप हैं पन्नालाल सेन तारा सेन कौशल सेन खुशबू सेन, यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खड़से विनोद खड़से, शीतलानगर दुर्ग से आप हैं शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, करपावन सतोसा से आप हैं गेनूराम बघेल गोमती बघेल तनुजा सुभाष और ईशान बघेल, देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री, डोंडी लोहारा संबलपुर से आप हैं गौतम उर्वशा डामिन उर्वशा लक्की डोमनलाल कोठारी ऐश्वर्या और याशिका, अर्जुंदा बालो से आप हैं दिनेश यादव साधना यादव, तुवेगोंदी मंचुवा से आप हैं रिंकू रावटे अयांश रावटे, मर्दापोटी चारामा कांगिर से आप हैं नरसिंह थापा बीर सिंह थापा, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से आप है विजय महोबिया संजय कविता विशाल विवेक सपना शिवी सलोनी राजू चराटे और पेंटर बाबू, तुलजा भवानी मातावाट खंडवा से आप है अनिल विचुरकर मंगला शोभित विचुरकर, उदयनगर से मोहित रत्न पारखी स्वाति मिष्ठी और मनस्वी रत्न पारखी, जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप है टेलर रामचंद्र इंगोले सिद्धांत इंगोले टिंकू इंगोले रमाबाई सुरेंद्र इंगोले मयूरी सुरभि मंजूषा गौतम इंगोले नामदेव राव शिंदे पाटिल मास्टर विलास शिंदे पाटिल और सुनील झपड़े, अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं दीपाली राजू ठोके पार्वती सखाराम रोहित सोनू और मोनू, जिला जालाना से आप हैं नामदेव भूतेकर अभिषेक गणेश कार्तिक अश्वनी वैष्णवी हरसूल औरंगाबाद वैभव गौरव लोखड़े मेघराज युवराज, लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म इश्क का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार है राहत इंदौरी संगीतबद्ध किया है अनु मल्लिक ने।

0: సామాంతలే దొరుకుతా. డబల్ రోటీ ఆరి ఔర్ ఛేనా పనీర్ అసిత్కే ఇంజే జిఎస్టీ లగే మయ్యో ఇదన సంగేన్ 33 జరూరీ డవైనద్ మోలావెండ్ కమ్ కీసిత్తోడ్ అదేన్ కే ఇలాజ్ తలే ఖర్చవెండ్ కమ్ లగే మాతా. జీవన్ భీమా తగవెండ్ ఇంజే జిఎస్టీ ఛూట్ దొరుకుతా. అదేన్ కే పాలిసీ పోయితనద్ ఇంజే సస్తా అంతా. సుడ్లా కార్ గాడి ఔర్ 350 సిసిత పొట్రు గాడిత పొర్రో 28% జిఎస్టి మత్త అద్ గమ్మాస్ ఇంజే 18% అత్త. ఇదెన మత్లబ్ ఇద్కి ఇంజే గాడి పొట్రు గాడి అసిత్కే సస్త దొర్కిత.
1: ఏక్ మజబూత్ ఘర్ బిల్కుల్ ఉస్ పితా కి తరహ హోతా హై जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ. चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
3: अगला गीत सुनिए फिल्म द डर्टी पिक्चर से. रजत अरोरा के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने. आवाज दी है सुनिधि चौहान ने. इस गीत को सुनना चाहा है तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से मिलव दास जयदास देवेश दास मानिकपुरी ने. साथ ही इस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी है मेहरनगर उमड़खेर विदर्भ से अभिजीत गवाड़कर सिद्धांत सरिता प्रिंस एकांश गवाड़कर. आकार हाइट बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवाड़कर वैशाली श्वेता और ध्वनि गवाड़कर. जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान खान आयशा शबीहा अनस और रेहान. धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे अमूल्य बाठे वैशाली बाठे. हरदेव लाल पारावाड सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सनी कोमल यादव. खमरिया बिलासपुर से आप हैं साबित खान सावित्री देवी धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार. सुभाष वार्ड भाटापारा से आप हैं एमएल यादव अजय कुमार यादव अमित अमीन यादव गिरीश करण यादव युवान ढाबेश यादव. जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं मंतुराम यादव चित्ररेखा साहिल शिवम केशव माधव राकेश रितेश पोषण यादव नेत्राम यादव संतुराम यादव विजय यादव और पूरा यादव परिवार. कंवड़ कॉलोनी बड़वा से आप हैं प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली आदित्य अदिति शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली. मोती गार्डन भाटापारा से आप हैं मोतीलाल झेरिया कल्पना झेरिया बिट्टू कुमार झेरिया चिंटू झेरिया युग कुमार झेरिया. ग्राम लुढ़ेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव इंद्रपाल राघवेंद्र रिया रेणु यादव और रोनिका. अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर वंदना गौहर मयंक तन्वी धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर संगीता हर्षित वैभव मट्टू. सपना संगीता रोड इंदौर से आप हैं लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया. सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया खान अस्मा सालिया शोएब खान पोतरा मुस्ताबा खान राउब भाई शाहिद भाई. गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर वैशाली. हटोत बाजार लाहौर से आप हैं कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल और राजकुमारी पटेल. लोहनीगुड़ा बस्तर से आप हैं चंदन नाग हरीश नाग उदय बाल सिंह और कमल नाग. छिंदावाड़ा दरभा बस्तर से आप हैं रामधर बघेल रामधर कश्यप सोनू बघेल मोटी राम मौर्य दुखू राम मौर्य और भीमा मंडावी. लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत.

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

पटेल और मन पटेल। जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं मानिकराम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत, रत्नेश प्रजापति। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से आप हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और सुषमा सारथी। महाराष्ट्र से आप हैं माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास। श्रीरामपुर भोकर से आप हैं हरिभाव बिड़वे, श्रावण और अनीता। महसूल सीतामणि बिहार से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। शेख टोली समस्तीपुर से आप हैं मोहम्मद सहनवास परवेज, मुजर्रत जहां नाज। सिहावा पर्वतंचल ग्राम बेलरगांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जैतेक वीरक और मीका वीरक। छिंदा महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव, भीष्मदास मानिकपुरी। महाराष्ट्र से आप हैं दिनकर सालवे, गंगा सालवे। औरंगाबाद से आप हैं राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। हथकेरा भाटापारा से आप हैं पंचू यादव, दादू यादव। बावली से इस गीत को सुनना चाहा है कमलेश शाहू, हारेंद्र शाहू और सुशील ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये। सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, शविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी। नयानगर सुपौल से आप हैं श्वेता, रजनीश, आनंद कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी। पाठर कवड़ा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री और धनश्री। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
2: अगला गीत सुनिए फिल्म दाग द फायर से अनुराधा पौड़वाल की आवाज में। गीत रचना समीर के हैं, संगीत दिया है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनना चाहा है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य, नरहन स्टेट से नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता अनुपम, आराध्या विनीता और लल्लन मिश्रा, राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखोरी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से आप हैं मनजीत।

सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। ग्राम पहारा अहिवारा, जिला दुर्ग से आप हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। दतरेंगी से आप हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु। लालपुर से आप हैं लुकेश यदु और समीर यदु। गिदम रोड जगदलपुर से आप हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति, मनीषा, श्रवण राव, नानू राव, आनंद राव, जया राव, सतीश, रोहिणी राव। पेंशनबाड़ा रायपुर से आप हैं रोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी, अदिति, तन्मय। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। लक्षनपुर से आप हैं जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं रोहित, सोनू, मोनू। झुमरी तिलैया से आप हैं देव इंगोले, टेलर आरडी इंगोले। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। ग्राम दरचूरा से आप हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। ग्राम नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। बिलासपुर से आप हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। बिहारी कॉलोनी लोनी से आप हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन, वली डोम और कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वशीम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार। सरगुजा मैनपाट से आप हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग द फायर का ये गीत।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम श्रोता सुमन यहीं संपन्न होता है। अब मुझे यानी दीपिका जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है दोपहर समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल

0: भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
8: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

0: दादा दीदी मन, आजी वाले मैं कला और कलाकार कार्यक्रम के धरन अमर ले से और ये गोटक असन कार्यक्रम हो से जोन भीतरे जोन कला ले जोन जुड़ले लोग मनात और उन मन चलो के काय काय जोन कला मन आसे असन लोग मन छो आमी ता गोट के आमी अमर हुआ और उन मन कसन काय काय कौन कला ने रहो तार काय काय उपलब्धि जोन उन मन के मिरली से ये गोट के आमी ता गोटे हुआ असन तो कला भीतरे कई ठन कला आसे जसन कोनी कोनी नंगत गीत गाय सोत और कोनी कोनी नंगत नाचा डगा करे सोत और कोनी कोनी उनमें और बल जसन कला आसे जसन कोनी बजातने कौन कौन अच्छा नंगरा बजाय सोत कौन कौन अच्छा मोहरी बजाय सोत और कोनी कोनी ढोलक तबला बाँसी आसे उस नीचे कई ठन वाद्य यंत्र मना सोत हर किस्म जो कला के जान तो कलाकार मन आसत तो अमी कला और कलाकार भीतरे यही बीती गोटी मन के अमी गोटे से तो कला कला बोलन असन है कि कई लोग के काय वैसे कि कला जन्म ले रहे से बोलने जसन जन्म लेने कई बोले असन काम के उनमन कर मुरिया सत जन काम के करते करते उन काम के खूबे नंगत अच्छा कर सत उनके बल बोले सत जन्म ले कलाकार तुम्हें बोले गाँव गाँव ने जसन दखला सती कोनी पीला मन असन रह सत कि कितनी दाएँ गीत मन के गाय सत गीत चाहे रेडियो ले सुनत ना ले नाट गीत हो ना ले कहाँ ले बोल सुनत मानतर उन मन चो मुए मुए गीत मन लू रहे से उन मन गोडक जन्म जात कलाकार रह सत मानतर कई लोग असन आत कि सुनन सुनन विचार कर सत ना ही मैं बोले कहीं ना कहीं कला के सीखें दे बोलते तो असन लोग मन बोले किनिक जसन बोल सत प्रैक्टिस बोल सत तो प्रैक्टिस करुन भाती बोले उन मन उन कला के आप लोग ताने आनु सकोत तो असनी कलाकार मन खूब तैयार रह सत और कहीं बोले जसन जसन गीत है नी गीत ने चाहे गाउच बीता नहीं उतार रह सत गीतकार रह से संगीतकार रह से और नाच तो कलाकार मन बोल रह सत और संगे संगे उन कलाकार मन जो फिन तो बीती जन कपड़ा लता जोन बोले नाके खाने फिन तो बीती है ये सब कलाकार मन रह सत तो जितलो बोले कला ने काम कर सत ये सब सब खूबे नंगत कलाकार मन रह सत और आम चो समाज ने कलाकार मन चो रतर खूबे जरूरी है काय का जे कि आम जितलो बजे आम बोले आम चो जसन तीज त्यौहार आत जसन कहीं चे तैयार जसन दियारी आए नवाखानी आए नाल कहीं बोल तैयार हो जसन की दीपावली बल मना तो होली तैयार है हर तैयार चो ऊपरे हर रुसुम चो ऊपरे गीत मना से और ये गीत मन जोन बोले जसन तैयार अमरे दे उदल दाए उन गीत मन बाजलो ने लोग मन के खूबे हरिक लागे दे तो असनी ची लोग मन हरिक ने रहत और उन मन च मनोरंजन हो असन बोलते कलाकार मन खूबे मेहनत करे सत तो कलाकार मन मेहनत तो करे सत तो उन मन के सुन तो लोग के बोले उन मन कहजे आगे बढ़त कहजे नंगत नंगत गोट मन के बलत राय उन मन के तारीफ बोले करत राय बोलने नहीं तू अच्छा करसीस तुझे गीत मन अच्छा लागे से ना ले तुझे बजाल भी खूब अच्छा लागे से असन बोले बोलते रहे काय काज की सुन तो लोग बोले और बजाओ लोग दोनों आप लोग काम के अच्छा कर लो ने कला बोले आगे बढ़े दे तो ये तो बोली कला छे गोट और संगे संगे और बोले गोट मना सत आले ए मन के बोले सुना
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से

0: पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो समान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले समान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाई समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक, तो आपन मन सपाई सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंड राहत दरकना उम्मीद मिंदे। यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
4: हाँ, ये तो नंगत गोट के तुम सुन लास मानतर ज्ञान च गोट संगे संगे गीत के बल सुन लेन खूबे हरिक लागे थे तुमके, तो उन्हीं हिसाब ने गोटक मैं गीत के धरू नीले से और ये गीत के आले मैं बल सुनेंदे और तुम बोले सुना।

हाँ तो दादा दीदी मन, ये भी तो तुम्हें कायर से गीत के सुन लास। और ये गीत के गाँव रह लखेसर खुदराम अरुण मंच संगवरी मन। और जैसे लखेसर खुदराम जो गीत के तुम्हें सुन लास, और ये लखेसर खुदराम बोले हम जो बस्तर जिला से खूब बड़े लोक गायक आत। और ये मंच बोले गीत के खूबे लोग गांव गांव ने सुने सत, और ये मंच गीत के खूबे मन कर सत। और लखेसर खुदराम मंच गीत के सुनुन भाती कई जो नवा नौजवान मनात, यही मंच असन मैं बल गायन दे बलते ये मन के गुरु माने सत। और ये मंच असन गाव तो उनमें कोशिश करे सत। तो उसने ची और बोले कलाकार मन आसत आम चो देश ने, जो आप लोग अलग अलग विषय ने अपलान अपलान कला मन के दखाए सत। तो उसने ची जसन वैसे कि नृत्य शैली बोल सत, नाच तो बीती जन वैसे हुन बीतीन बोले कई किस्म चो नाचा वैसे। जसन आम चो जन भारत देश आए, भारत देश ने अलग अलग प्रदेश मन आसत, कई प्रदेश आसत। जैसे नाम से छत्तीसगढ़ है, उसने उड़ीसा है, उसने तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का एक खूबे प्रदेश में नाच। और देख लो ने हर प्रदेश ने नाच तो जो तरीका है शैली है अलग अलग रहे से। जैसे तुम जान सा कि पंजाब ने भांगड़ा बोले सत, उत्तर प्रदेश ने बोले कथक, और बोले उड़ीसा ने उड़ीसी, असनी चीज तमिलनाडु में भरतनाट्यम बोल सत। ये अलग अलग जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य बोल सत, तो ये मंच अलग अलग शैली है। आर तुम जाना कि ये शास्त्रीय नृत्य काय हो से, जसन गांव गांव में असनी ये बाटे हम बस्तर ने नाचे सत परब नाचा, और असनी नाट मन ने बोले नाचे सत, मुंचो अलग नाचा हो से। तो उसनी ये मन के लोक नाचा बोले सत, मानतर के नृत्य जो शास्त्रीय नाचा असन हो से कि एक एक चीज के खूब बारीक ले बना लो रासे, खोज कर लो रासे, और उनमें काय का भाव हिसाब ने जैसे रीस बेरा चो रीस, हरिक बेरा चो हरिक, असन हिसाब ने उन गीत मन के तैयार कर लो रासे, नाचा के तैयार कर लो रासे, उनके बोल सत शास्त्रीय नृत्य। और ये शास्त्रीय नृत्य हम चो देश चो पहचान है, जहन दूसरा दूसरा दुनिया ने खूबे देश मनासत, और आम चो देश चो अलग अलग जो शास्त्रीय नृत्य चो कलाकार मनात, जाऊँ जाऊँ आप लोग कला के सब बाटे दखाए सत। तो उस नीचे आज ही कला और कलाकार भितरे जो नाम चले गए गोटक शास्त्रीय भरतनाट्यम गोटक कलाकार आत, और ये मंच नाम है अलारमेल वल्ली। अलारमेल वल्ली बलने ये तमिलनाडु जो प्रदेश आसे उता चो ये चेन्नई चो ये मन रतवित्यात, और ये मन भरतनाट्यम कला के आम चो देश ची नहीं पूरा दुनिया ने खूबे अलग अलग देश मन ने अलग अलग जो देखा तो रंगमंच थिएटर रहे से होता होता देखा ला से, और आम चो भारत चुनाव के कला चो क्षेत्र ने आगे बढ़ाते होने खूबे काम कर ला से। और ये अलारमन जो वेली है ये मन चो जन्म 14 सितंबर 1957 के तमिलनाडु राज्य चो चेन्नई ने हो रही, और ये मन शास्त्रीय नृत्य तो करते चिरो और संगे संगे गीत जो नाचा सीखो बीती मन बोले एमन रला उनके कोरियोग्राफर बोले सत। जसन कहीं बोले गीत रहे से उदा तो नाच तो लोग मन जसन सीखाऊ बीता जसन सांगे दे उन्हीं हिसाब ने उनमें नाचे हाथ एक बोल सत कोरियोग्राफर। तो अनार्मल वेली खुद तो अच्छा भरतनाट्यम नृत्य करते रहो संगे संगे एक नंगत कोरियोग्राफर बोले रला। तो उन्हीं का जे ये मन के ये मन चो कला के दखुन बाती, और ये मन चो इतलो आप लोग कला चो भीतर काम कर सत बलते कई पुरस्कार मन बोले ये मन की मिरली। ये मन के सन 2004 ने पद्म भूषण पुरस्कार ये गोटो कला चो खूब बड़े पुरस्कार वैसे जन सरकार बाटले मिरे से, तो ये पुरस्कार बोले ये मन की मिरली। और संगे संगे पद्मश्री उपाधि 1991 ये मन की मिरली से। दादा दीदी मन जन कोनीज बोले जैसन कला है उनके करते रहने लोग मन के मनोरंजन हमेशा जैसन लगातार करते रहवा, तो सब बाटले उनके तारीफ बल मिरे से, उनके इनाम बल मिरे से, और संगे संग पुरस्कार और संगे संगे खूब बड़े बड़े पुरस्कार बल मिरे से। उनका जो आप लोग लगे जोन बोले कला से उनके लुकातर न हुए, तो जैसन ये अलार्मल विली रला ये आप लोग कला के पिला दाएले असन दखुन दखुन मन मुर करला। मानतर
आप लोग कला के आगे बढ़ात खजे और नंगत नंगत जानकार मन ले सीखला और गोटकी ची कला के आगे बढ़ाला। खूबे लोग असन है सब जसन नाश्ते बाटी बिड़े सब और संगे संगे और बोले ये काम मन नहीं है बोलते फिर दूसर बार जाए सब। हाँ मैं बजात बाट भिड़ेंदे बोलते उन चलो उन बोल मन नहीं है नहीं मैं नाचकार बाट भिड़ेंदे। तो असन असन कहीं बोल कला उन चलगे पूरा नहीं रहे उनका जे हमके आगे बढ़ तो कहे कहीं बोले गोटकिच कला ने मन लगन कर लने आगे बढ़ू है ये कहीं ये भी थी कहीं कला थी नहीं और कहीं बोल जसन दूसर क्षेत्र है हम चो जीवन आने सप्ताने भी थी लागू है से बोलने हमके जोन बोल हम गोटो काम करूँ से तो उन्हीं काम ने हमके आगे जुगे जानकार बनक पड़ू है। और ये भी तो असन समय आए कि जानकार लोग के लोग मन खूब डगरा है सर जसन कई लोग जसन बेरोजगार आसत तो कोनी बड़ी काम करे से कोनी मिस्त्री काम करे से और कोनी और बल दूसर दूसर काम मन करे सत तो जोन काम करे सत और करूँ से उन्हीं काम के आमके आगे बढ़ाते रहे जसन आजकल का बिजली मिस्त्री मन ढगरा नहीं मिलत तो बिजली मिस्त्री असन बनते रहे कि हर काम जान रहता असन का जे सरकार बाटले ट्रेनिंग प्रशिक्षण मन वाले से तो उन गोटकिच काम के आमके आगे बढ़ाते रहे। और जसन कोनी ठेकेदारी काम बल कर सत ठेकेदारी काम करें फिर दूसरा काम करें फिर तीसरा काम असन असन कर लेने का कोनी काम ने आमी जानकार बनुक नहीं सकूँ उन्हीं का जे कोनी बल गोटक काम के छाँटते रहे और उन काम ने जानकार बनते रहे। जसन ये अलार्म विल्ली मन रला ये मन भरतनाट्यम ने ची आप लोग कला के आगे बढ़ाला तो ये जो कारण ने देश विदेश ने ये मन के कभी पुरस्कार मिल ली और लोग मन मंचो नाम के बोले धरे सत और आप लोग काम के एमन को भी अच्छा कर सो। ये तो अलार्मल वेली जोन ये कलाकार रला एमन जो जानकारी रली मात्र संगे संग का वैसे दीदी मन हम जो जोन बस्तर जो जिला है ये ताने बल कई टन कला मन जन आसत और सब ले जोन कला है कई लोग मन जसन चैत परब गीत गाय सत और चैत परब गीत सुन ले बल कितलो नंगत हरिक लागे थे चैत पर असन आई कि जसन गोटक पाट मेहरार मन रहे सत और गोटक पाट मनुख मन रहे सत और हारा जीता जसन चैत परब के गाँव लने सुन तो लोग केवल खूबे रस लागे से और कितो दें रात कटे दे उन पता नहीं चले से उन्हीं का जे ये चैत परब गीत के बोले हम के नंगत संत रहे और संग संग का वैसे गाँव गाँव ने जसन नाट बोले वैसे गाँव गाँव ने नाट वैसे तो नाट असन है कि जोन गुरु रहे से जोन बोले जसन रामायण चो कहानी आए नाले जसन महाभारत चो कहानी आए ये सब कहानी मन के धरुन बाती नाट के तिहार करे से और उन नाट के पूरा रात भर दखाए सो उन बल गोटो खूबे कला है तो उन्हीं का जे जोन कलाकार मनात उन मन के खूबे सम्मान देते रहे तेबे उन कलाकार मन बोले हरी कौन भाती तुम च मनोरंजन कजे आप लोग आगे काम कर दे। तो ये तो कला और कलाकार गोठोली मात्र संगे संग गोटो और गोटो गीत अच्छा होती बोलते रहे मैं तो आले हम चलो गोटो गीत आसे आले ए गीत के बोले सुना

0: हाँ तो दादा दीदी मन, ये भी तुम काय रसिया गीत के तुम सुनते रहलास। और ये गीत के गौरत रामू बिसाई, तो रामू बिसाई तो खुबे नंगत गीत के तुम पूरे अमराम रला मान। तर संगे संगे मैं देखे से कि धीरे धीरे मचो जातो समय बोले अमरते जाए से काय काज की जैसे ना हम इलू से तो कार्यक्रम के आखिर में जाऊ बोल पड़े छे ते तो फिर पाछे भेट घाट हो खोए दे तो उस नीचे आजी बल मको विदा दिया से तो जातो पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन मन के मैं चैतु करें से जोहार।
1: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा जगार गीत, कलाकार होंगे मुरहीबाई और साथी। कार्यक्रम बस्तर के स्वर प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। जोनी उजर में सुनिएगा भत्री लोकगीत रात 8 बजे। रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पीलामन काजे गोट, प्रस्तुति होगी रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की। आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर। आदिवासी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़ सुनिएगा रात 10 बजे। अब सुनिए हमारी कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल रात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल सुबह 7:10 पर हमारा विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी और शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर प्रकाश किरण, वाचन स्वर उमा गर्ग और पुष्पा अग्निहोत्री का। श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर, स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट। हुलुली में सुनिएगा भीमसन देव पाड़ सुबह 6:40 पर। सुबह 7:30 पर प्रसारित किया जाएगा हल्बी समाचार बुलेटिन। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप सुबह 7:45 पर। विभिन्न बोलियों में लोकगीत का कार्यक्रम लोकमंजरी सुबह 8:30 पर। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, कल की फिल्म होगी सिर्फ तुम। गुलशन में सुनिएगा नए तराने सुबह 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत सुबह 10:30 पर, प्रस्तुति होगी जसवीर कौर भुल्लर की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। सुबह 11:30 पर गुड़दुम में सुनिएगा हल्बी लोकगीत, कलाकार होंगे दैमती नाग और साथी। लोक गाथा के कार्यक्रम रुस रुसा में सुनिएगा चंद्रकांत राजा का भाग एक दोपहर 12 बजे, गायिका होंगी चंद्र शांति और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा गोंडी समाचार बुलेटिन। बस्तर के स्वर कार्यक्रम शाम 7 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव शाम 7:21 पर। रात 8 बजे बालीफुल में सुनिएगा हल्बी लोकगीत, कलाकार होंगे भद्रू कश्यप और साथी। पीलामन काजे गोट, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। दौना में प्रसारित किया जाएगा हल्बी लोकगीत रात 10 बजे, कलाकार होंगे शिवराम नाग और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, प्रस्तुत है
देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी में। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी साथी कंपेयर ऋषिका वर्मा
1: और मैं हूं रेखा नायक। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार।
1: तो ऋषिका,
0: हाँ?
1: आज मैं रास्ते से आ रही थी ना, तब दो लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे।
0: अच्छा, क्या बोल रहे थे?
1: वो लड़की शायद किसी कंपनी में काम करती थी, फॉर्मल कपड़े पहने हुए थी, लैपटॉप उसके बैग में था। तो उनमें से एक आंटी बोल रही थी, आजकल लड़कियां घर से ज्यादा बाहर रहती हैं।
0: मतलब काम करना भी अब प्रॉब्लम हो गया है ना?
1: वही तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग हर चीज को जज क्यों करते हैं।
0: क्योंकि सोसाइटी ने एक इमेज बना रखी है कि लड़की कैसी होनी चाहिए।
1: ज्यादा मत बोलो, ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, लेट मत आओ, एंडलेस लिस्ट है।
0: सच में, और अगर कोई लड़की इन रूल्स को फॉलो ना करे तो तुरंत बोलेंगे बहुत मॉडर्न हो गई है। हाँ, और तुम्हें पता है, अगर वही चीज लड़का करे तो उसे कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बोलते हैं।
1: हाँ, और तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हें सिर्फ लड़की होने की वजह से कम कैपेबल समझते हैं?
0: कई बार। एक बार तो कॉलेज प्रोजेक्ट में टेक्निकल काम था, टीम में सब ऑटोमेटिकली लड़कों को देखने लगे।
1: सीरियसली?
0: हाँ हाँ, जैसे कोडिंग या टेक्निकल चीजें सिर्फ लड़के कर सकते हैं।
1: फिर तुमने क्या किया?
0: मैंने खुद वो पार्ट लिया। शुरू में तो सब सरप्राइज हो गए थे, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा हिस्सा वही निकला।
1: गुड। कई बार लोगों की सोच बदलने के लिए प्रूफ करना पड़ता है ना?
0: हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को खुद को प्रूफ करना ज्यादा पड़ता है।
1: बिल्कुल। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि कई स्टीरियोटाइप इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि लोग नोटिस भी नहीं करते हैं?
0: जैसे?
1: जैसे घर में कोई अगर मेहमान आए और चाय बनाने को कहा जाए तो ज्यादातर बार लड़की को ही बुलाया जाता है ना?
0: ट्रू। और लड़कों से कहा जाता है बाहर का सामान ले आओ।
1: मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बटी हुई है ना?
0: हाँ, और बचपन से ही ये चीजें इतनी कैजुअल होती हैं कि बाद में वही नॉर्मल लगने लग जाती हैं।
1: बिल्कुल। मुझे याद है कि जब छोटी थी मुझे रिमोट कंट्रोल कार बहुत पसंद था।
0: फिर
1: एक बार वही मांगा लेकिन रिश्तेदारों ने मुझे डॉल सेट गिफ्ट कर दिया। बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद था पर वो नहीं खेल पाते थे।
0: तो दोस्तों, याद रखिए, जेंडर न्यूट्रल भूमिकाएं समाज में समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं।
1: किसी भी काम को लड़का या लड़की से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
0: हर व्यक्ति को अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है।
1: पुरानी सोच बदलने से रिश्ते और समाज दोनों बेहतर बन सकते हैं।
0: सच्ची समानता तब होगी जब लोगों को उनके जेंडर नहीं बल्कि उनकी योग्यता या काबिलियत से पहचाना जाए। तो दोस्तों, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी चीजों को जेंडर के तौर पर नहीं लेकिन कैपेबिलिटी या फिर योग्यता के तौर पर नापेंगे। दोस्तों, आज है शनिवार, इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, आज है कार्यक्रम हेलो युववाणी, जिसमें हम करते हैं कॉलर से बातचीत और उनको सुनवाते हैं उनका पसंदीदा गीत। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं हमारे पहले कॉलर से।
2: हेलो युववाणी।
3: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं देने तरह से बोल रहा हूँ। सूरज कुमार सारथी।
2: सूरज कुमार सारथी बेमेतरा से?
3: जी मैम।
2: जी जी, कैसे हैं सूरज जी, बताइए।
3: बहुत बढ़िया है मैम।
2: अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आप कैसे लेते हैं गर्मी की छुट्टियों का आनंद?
3: अब गर्मी के छुट्टियों में तो बच्चे लोग गए अपने मामा गांव।
2: अच्छा अच्छा, आप नहीं गए?
3: जी नहीं, मैं तो घर ही हूँ मैम। और क्या है कि दरअसल मैं सारथी हूँ तो मेरा काम भी सारथी का है मैम। मैं ड्राइवर हूँ, वाहन चलाता हूँ।
2: अच्छा,
3: तो मेरी इधर उधर की बुकिंग रोजाना रहती है मैम, इसलिए मैं घर पर हूँ। घर घर की देख रेख के लिए मुझे छोड़ दिए गए हैं।
2: ओहो, बढ़िया है। तो वहाँ पे गर्मी कैसी है अभी?
3: इधर गर्मी तो मैम बहुत भीषण गर्मी है।
2: अच्छा, बहुत ज्यादा?
3: बहुत ज्यादा, 40-45 डिग्री है मैम तापमान। और उधर आपके तरफ तो नहीं होगा मैम, क्योंकि जगदलपुर एरिया तो पूरा पेड़ पौधा और पहाड़ों के से है, गिरा हुआ है।
2: हाँ तो है, पर गर्मी लगभग यहाँ भी है बहुत ज्यादा ही।
3: जी जी मैम, गर्मी तो कहा जाए तो पूरा भारत वर्ष में है, पूरा है मैम।
2: जी जी जी, तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे सूरज जी?
3: मैं श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा मैम कि अभी गर्मी में अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, खान पान में भी थोड़ा से जैसे कि मिर्ची है, नमक मिर्ची तेल वाला जो खाना कम खाएं और अधिक से अधिक पानी पिए जितना हो सके, और फल फ्रूट अवश्य खाते रहे मैम ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे।
2: जी जी जी बहुत अच्छा संदेश।
3: और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं
2: जी,
3: जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाने से उसमें क्या होगा मैम, प्रदूषण रहित रहेगा, शुद्ध हवा मिलेगा और छाया भी हमें गर्मी में प्राप्त होगा मैम।
2: जी जी जी। तो सूरज जी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: गाना मैम आप वो जमीर फिल्म का है मैम, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में है।
2: अच्छा।
3: चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी,

0: हेलो युवाणी।
1: हेलो जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, सिरवा बांधा बेने तरह से।
0: अच्छा योगेश जी, बेमे तरह से बताइए योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। अब हमारा खेती बाड़ी का काम है और रेडियो बचपन से सुन रहे हैं।
0: अच्छा जी, बताइए योगेश जी, हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: अब संदेश तो यही कह सकते हैं, अभी गर्मी का विकट, अभी काफी तेज गर्मी है
0: जी जी
1: तो इसमें स्वयं का ख्याल रखना, घर के सदस्यों का ख्याल रखना,
0: जी
1: जितना जरूरत हो उतना ही घर से बाहर निकलना, ये सब चीजों का विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल। तो योगेश जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म नायक मूवी का सुनवा देंगे, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: अच्छा ठीक है योगेश जी, सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का एक गीत।

0: नमस्कार, हेलो युवाणी।
1: हेलो,
0: नमस्कार, हेलो युवाणी।
1: हाँ मैडम, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नवागढ़ कटेई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी कैसे हैं नारायण जी आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं मैडम जी, और आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: हाँ हाँ मैडम जी, क्या है अभी देखिए ना, गर्मी बहुत बढ़ा हुआ है
0: जी।
1: हमारे इधर तो, अभी धूप बहुत तेज है
0: जी जी
1: और क्या है, कभी कभी बीच बीच में मौसम भी बिगड़ जाता है, कभी बारिश तो कभी आंधी कभी तूफान, इस प्रकार से अभी का मौसम चल रहा है मैडम जी।
0: जी
1: और इस मौसम में अपने खेती किसानी में भी लगे हुए हैं
0: जी
1: जी जी सुबह से अपना खेती किसानी का काम 2-4 घंटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने घर चले आते हैं।
0: और किन किन चीजों में रुचि है आपकी?
1: हाँ हमारा तो अब देखिए खेती किसानी है तो इसी में रुचि है, और मनोरंजन के साधन में देखिए तो रेडियो जो है हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि का एक प्रकार से औषधि है कहिए
0: जी
1: इससे हम हर प्रकार की जानकारी लेते रहते हैं आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है उसका,
0: जी जी
1: और अपने जीवन में बिल्कुल इसकी जो सच्चाई है और इसके जो बताए हुए मार्ग है रास्ते हैं उस पे चलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं मैडम जी।
0: जी और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं को अच्छी और सही जानकारी दे पाएं।
1: हाँ हाँ मैडम जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो हमारे सेवा में लगे ही रहते हैं, और जैसे हमसे आपसे बात होता है और अन्य भी कार्यक्रमों में हमारे लिए अच्छे अच्छे जानकारी देते रहते हैं और मनोरंजन करते रहते हैं मैडम जी।
0: जी
1: जी जी
0: तो नारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: एक फिल्म है मैडम जी साजन, गाना है साजन साजन पुकारू गलियों में फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में, ये वाला हो सके तो सुना दीजिए मैडम जी।
0: तो चलिए नारायण जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो
3: हेलो युवाणी जी।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर की सिरोन, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
3: जी बताइए, कैसे हैं आप मोहम्मद जी?
2: हम बहुत अच्छे हैं, और आप मिजाज कैसे हैं?
3: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: फिल्म का नाम है सैनिक।
3: सैनिक
2: जी, उसमें से कोई सा भी चला देना आप।
3: तो
2: धन्यवाद
3: जी, मोहम्मद जी सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का गीत।
2: जी धन्यवाद।
3: हेलो युववाणी।
4: नमस्कार मैडम।
3: नमस्ते, कौन बोल रहे?
4: डी आर नारवानी हूँ, जगह बड़कन से। बस मौसम थोड़ा कभी बदल जाता है, रात को भी यहाँ बहुत पानी पड़ गया था अचानक, बिल्डिंग दो घंटा तूफान हवा चलने लगी शाम को।
3: हाँ हाँ।
4: लेकिन आज मौसम बदल गया है।
3: अच्छा,
4: तो बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान हर कोई रखे। जब भी बाहर निकले गमछा बांध के निकले, पानी पी के निकले।
3: जी जी,
4: मौसम में तरबूज खरबूज गन्ने का दस।
3: अच्छा,
4: दस गोला आइसक्रीम खाते रहे। सबसे बड़ी बात, आकाश को कभी नहीं छोड़े, कार्यक्रम सुनते रहे।
3: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे नालवानी जी आप?
4: गीत सुनाएंगे मुझे आज आप निकाह फिल्म का।
3: जी जी, निकाह फिल्म।
4: खजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा ये समा। खजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा ये समा। सलमा आगा की आवाज है।
3: जी जी जी,
4: निकाह फिल्म का गीत।
3: ठीक है नालवानी जी, आइए सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का एक गीत।
4: जी धन्यवाद जी।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: संतोष कुमार साहू बोल रहा हूँ मैम, कर्मा चौक लोहारी जिला कमरघा छत्तीसगढ़ से।
2: संतोष कुमार साहू
1: जी,
2: संतोष जी बताइए कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं मैम
2: जी।
1: गर्मी बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा अभी तो।
2: जी जी जी जी, और बताइए हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देंगे आप?
1: गर्मी के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि गर्मी से बचने के लिए सिर्फ यही उपाय है, देखिए परिवार के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, दो पैसे तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार चलाने के लिए खर्चा जरूरी है। तो इसलिए धूप में ना काम करते हुए सुबह हम 6 बजे के पहले अगर काम में लग जाएं, इन दिनों क्या है जल्दी सुबह हो जाता है, तो 10 से 10:30 बजे तक हम काम कर सकते हैं सुबह। उसके बाद 4 बजे से हम अगर काम में लगते हैं तो 6 बजे तक काम कर सकते हैं।
2: जी जी जी,
1: हमें कुल मिला के 8 घंटा ड्यूटी करना है।
2: तो
1: 8 घंटा ड्यूटी के हिसाब से हम इधर उधर अगर करके कर ले, और दोपहर की जो समय है ना वो ज्यादा कड़ाके की धूप है, उस समय हम अगर घर में आराम करते हैं तो हमारे सेहत के लिए अच्छे है, क्योंकि धूप से बचना यही एक उपाय है, नहीं तो बाद में फिर लू लगता है तो फिर एक प्रकार के जो है बीमारियां जो है वो खाना नहीं खवाना, करता आना और कमजोरी महसूस होना अपने आप में, ये सब प्रकार की उसमें महसूस होता है।
2: जी जी जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे संतोष जी आप?
1: गीत आज सुना था फिल्म पार्टनर का था।
2: पार्टनर का कौन सा गीत?
1: जी कलिए दे मुखड़े पे दिले लाल चाय वाले।
2: ठीक है संतोष जी, आइए सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: नमस्कार, हेलो युवाणी।
3: उनका खैर तो चले गए, दीवार जिंदगी को बढ़ाते चले गए। हम सोए थे, हमने मांगे, उनके राह में हमने बिछाए थे फूल, वो थे कि हमारे राह में कांटे बिछाते चले गए। ये शायरी है।
2: बहुत अच्छी शायरी बोली है आपने।
3: हाँ, तो मेरे को फिल्म क्रिमिनल का गीत सुनना है।
2: जी जी।
3: हाँ, वो गीत के बोल है, तुम मिले दिल खेले और जीने को क्या चाहिए। गीत के गायक है कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: तो दोस्तों आज के हेलो युवाणी में बस इतना ही। अगर आप भी हमसे बातें करना चाहते हैं और अपने पसंद की गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।
1: दोस्तों हमारा नंबर है 222666 यानी 222666। हमारा दूसरा नंबर है 222160 यानी 222160। दोस्तों इन नंबरों के आगे जगदलपुर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो कि है 07782 यानी 07782।
0: तो दोस्तों हेलो युवाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक गुरुवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल शाम होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। मैं रेखा नायक
1: और मैं ऋषिका वर्मा,
0: नमस्कार।

युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफेक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम छत्तीसगढ़ी में समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही। और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। अब समाचार विस्तार ले। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। एकर अनुसार सबो विभाग संभागीय आयुक्त कलेक्टर और विभागाध्यक्ष मनला सरकारी संसाधन के बने उपयोग और गैर जरूरी खर्चा ऊपर नियंत्रण राखे बर कहे गए है। वित्त विभाग के सचिव डॉ रोहित यादव डहार ले जारी ये निर्देश ला तत्काल प्रभाव ले लागू कर दे गए है। ये निर्देश अवैया 30 सितंबर तक प्रभावी रही। निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्री परिषद निगम मंडल और आयोग के पदाधिकारी मन हा अपन काफिला मा सिर्फ जरूरी गाड़ी मन के ही उपयोग कर सकी। एकर अलावा सबो सरकारी गाड़ी मन ला इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के निर्देश दे गए है। पेट्रोल और डीजल में होवैया खर्चा ला कमती करे बर और एक एक दिशा में जाने वाला अधिकारी मन बर वाहन पुलिंग व्यवस्था लागू करे बर कहे गए है। उन्हें जरूरी काम के अलावा राज्य सरकार के खर्चा में शासकीय सेवक मन के विदेश यात्रा ऊपर पूरा रोक लगे रही। जरूरी होए मा मुख्यमंत्री के मंजूरी लेबर पड़ी वर्चुअल और ऑनलाइन बैठका ला ज्यादा बढ़ावा दे जाही। उन्हें शासकीय भवन में ऊर्जा की बर्बादी ला रोके बर जरूरी उपाय करे जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली ले 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरा में आवत हैं। यह दौरान उमनहा 19 मई के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही। बैठका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संघरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होही। बैठका के तैयारी के बारे में मुख्यमंत्री श्री सायहा काली मंत्रालय में उच्च स्तरीय और समीक्षा बैठक करें और अधिकारी मन ले जरूरी निर्देश दें। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरा के बारे में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा हां पत्रकार मन ला बतायें कि डायल 112 आपातकालीन सेवा के विस्तार करे जावत है। एकर तहत केंद्रीय गृह मंत्री श्री साहा 18 मई के रायपुर में 400 नवा गाड़ी के शुरुआत करी। ये दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजिला एक नवा फॉरेंसिक लैब और जांच बर 33 सर्व सुविधा युक्त वाहन के सौगात घलो देही। श्री शर्मा बतायें कि बस्तर के नेतानार सुरक्षा केंद्र हा पहली ऐसा जगह है जिला जन सुविधा केंद्र के रूप में बदले जावत थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपन बस्तर प्रवास के दौरान ये केंद्र के उद्घाटन करही। ये केंद्र में अस्पताल स्कूल बैंक और आंगनबाड़ी जैसन जरूरी सुविधा दे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हां आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल में जाके तैयारी के जायजा लीन और अधिकारी मंडला जरूरी निर्देश दीन। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिला के कोसला गांव पहुंची नौ चौपाल लगाईन। ये दौरान उमनहा लोगन ले सीधे चर्चा करीन और सरकार के आने आने योजना में हुए काम के जानकारी लीन। उमनहा ग्रामीण मन के समस्या सुनी नौ अधिकारी मनला उखर निपटारा करे के निर्देश दीन। ये मौका में मुख्यमंत्री हा कहिन कि सुशासन तिहार के उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजना मन के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आज कोरबा जिला के लेमरू गांव घलो पहुंची नौ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उनके नवा बने आवास के उद्घाटन करीन। ये दौरान उमनहा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राही मनला अंशदान के राशि के चेक घलो दिन। राज्य सरकार हा ग्रामीण महिला मंडला ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाए बर बच्चर 2026 ले 2031 तक के अवधि बर द्वीपती योजना ला मंजूरी दे दे हैं। ये योजना के तहत गांव मन में सोलर दीदी तैयार करे जाही जौन मंडला सौर ऊर्जा के प्रणाली के स्थापना संचालन और रख रखाव के प्रशिक्षण दे जाही। ये माइलोगिन मनहा सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसन ऊर्जा सुविधा के संचालन करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश के जनजातीय गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाए जाही। ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान मां प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मन ला शामिल करेगी है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सभी जिला में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुंचाए जाही। अधिकारी मन हां गांव गांव जाके जन सुनवाई करही और आदि सेवा केंद्र में मामला के निपटारा होही। ये दौरान सिकल सेल और टीबी जांच बर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। IPS अधिकारी अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक बनाए गए है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका सिंह ये संबंध में आदेश जारी कर दिन है। राज्य सरकार है करीब 1.5 साल पहले ओमनला प्रभारी DGP के जिम्मेदारी दे रही। IPS अरुण देव गौतमला संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनीय सेवा बर भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा बर राष्ट्रपति पुलिस पदक ले सम्मानित करे जा चुके हैं। ओमनहा छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हावे। राज्य शासन दहारले स्पष्ट करेगे है कि प्रदेश में ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हवे और पेट्रोल डीजल के वितरण में सरकार दहारले सरलग निगरानी राखे जावत है। यही बीच रायपुर कलेक्टर हा पेट्रोल के ब्लैक मार्केटिंग ला रोके बर एक ठन हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। उन्हें शक्ति जिला में कलेक्टर हा पेट्रोल डीजल के बिक्री के बारे में सख्त आदेश जारी करे हैं। अब पेट्रोल और डीजल के बिक्री सिर्फ संबंधित वाहन में ही करे जाही। कलेक्टर के आदेश ला नहीं माने मा पेट्रोल पंप संचालक मन ऊपर कार्रवाई करे के चेतावनी देगी हवे। रायपुर में सफाई व्यवस्था देखैया कंपनी के कर्मचारी मन के आंदोलन आज तीसरा दिन घलो जारी रहिस। हड़ताली कर्मचारी मन हा आज दलदल सिवनी में उग्र प्रदर्शन करें। ये दौरान पुलिस के जवान और हड़ताली कर्मचारी मन के बीच झूमा झटकी घलो होइस। कंपनी के आरोप है कि नगर निगम डहारले करीब 78 करोड़ रूपया के भुगतान नहीं करेगे है। ये हड़ताल में कचरा गाड़ी चलैया चालक मन घलो शामिल है जौन मन हा वेतन बढ़ाए के और सही बेरा में भुगतान करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करत है। ये कर्मचारी मन के हड़ताल में जायले शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के व्यवस्था में घलो बाधा पड़े है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहारले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाहे। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक मा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में तेज गर्मी के संगे संग आंधी और हल्का वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया कुछ एक दिन तक प्रदेश में धूप और छांव के स्थिति रही है। अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधर चले के और आकाशीय बिजली गिरे के आसार है। यही बीच मानसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। एकर 26 मई तक केरल पहुंचे के उम्मीद है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत है। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही और प्रदेश के जनजातीय गांव मन मा अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिमबंग सर्वकारेण 11,000+ प्रदीयमानानां जाति प्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुम् आज्ञापितम्। सीबीएसई इत्यनेन 12 कक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः, यत् सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नीदरलैंड्स देशस्य हेग नगरे स्वस्य पंच देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं कोविड 19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
2: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति, तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिक स्थिति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विक प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणे केन्द्रितौ स्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेटेन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सः अद्य मध्याह्ने हेग नगरे राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा इत्येताभ्यां सह मिलनं कृतवान्। एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः

0: प्रदेश केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी तथा करैक्कल चेत्येत्येषु क्षेत्रेषु अपि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यति। विभागेन उक्तं यत् बिहारे राज्ये आन्ध्रप्रदेशे छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी राजस्थाने झारखण्डे लक्षद्वीपे मध्यमहाराष्ट्रे मराठवाड़ायां जम्मूकश्मीर प्रदेशे लद्दाखे तथा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु च अद्य गर्जनेन तीव्रवातैश्च सह झंझावातस्य संभावना विद्यते। विभागेन झारखण्डे मध्यप्रदेशे तथा राजस्थानस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अपि घोषणा कृता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य गोह सेफेई तथा नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
5: 870-001-4242। सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं

0: विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 होने को हैं। प्रस्तुत है जगार गीत, कलाकार हैं मुरही बाई और साथी।

अभी आप सुन रहे थे जगार गीत, कलाकार थे मुरही बाई और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए, सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध, मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं, जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग ने शासकीय खर्चों में मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभाग अध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के

0: विवेकपूर्ण उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये निर्देश आगामी 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारी के काफिले में केवल जरूरी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य को एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे।
1: 112 की सुविधा थी वो अब तक 16 जिलों में लागू थी और इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा था। वो पूरे प्रदेश में 18 की सुबह प्रारंभ हो जाएगा। 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगी। हमारे ही पुलिस लाइन से इसको माननीय अमित शाह जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
0: श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
1: हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, चिकित्सालय हो सकते हैं।
0: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के बस्तर प्रवास को लेकर आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ईंधन की वितरण व्यवस्था पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सक्ती जिले में कलेक्टर ने डिब्बा और बोतलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोसला गांव के महतारी सदन और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
2: सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को एक महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री आज कोरबा जिले के लेमरू गांव भी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के नव निर्मित आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को अंशदान की राशि का चेक भी प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीप्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रायपुर में सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने आज दलदल सीवनी में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों और हड़ताली कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 78 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं किया गया है। इस हड़ताल में कचरा गाड़ी चलाने वाले चालक भी शामिल हैं, जो वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था बाधित हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की विशेष अदालत ने वाड्रफ नगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 10,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाया गया है। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो की अंबिकापुर शाखा ने 12,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच मॉनसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। इसके 26 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने करीब 1.5 साल पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रमेश कुमार डटसेना और सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत के लिए रितेश जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और राजनांदगांव जिले के माड़ीतराई गांव में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर करीब 2,300 बोरी खाद जब्त किया है। अधिकारियों ने खाद गोदाम को सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: बस्तर किशोर कार्यक्रम सुन तो सप्पा गांवकारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोहर या संगवारी मन के मैं चैत करेन से राम राम। और रेडियो कटा कटा बसला नानी नानी पिला मन के हुन मन के बोले मैं कसन भूल कमाए ने तो हुन मन के बोले मचो बाटले खूबे खूबे मया तो सफाए लोग की तो मैं जुआर मया कर ले मानतर आजी बोले मैं कार्यक्रम बस्तर के स्वर के धरुन अमर ले से और आजी जो कार्यक्रम ने नंगत नंगत गोठ मन तो आसे संगे संगे गीत गोविंद बोले आसे मानतर आजी जो कार्यक्रम ने जो मैं पाछे अमराए दे हु नाय गोटो के खूबे नंगत लोक गायिका मन संगे भेंट वार्ता मानतर एक कौन आए उनके डंडी के लिए मैं सांगे दे मानतर आगे गोटो गोठ ले मैं मूर करें से बोलन जसन मैं बोल कि लोक गायिका बोलन है लोकगीत लोकगीत बोलन का है वैसे कि जसन आमचो पुराना परंपरा विराले आगे जुगले जोन गीत मन के आमी सियान मन ले आया ले दादा ना ले आई मन ले सुनते उनसे उनके लोकगीत बोले सब और ये गीत मन ने आमी जन पिला विराल मैं बोल सुनते रहे गोटक बाघ रे गोटक कोलिया रे और गोटक राजा रे गोटक रानी रे असन जोन गीत मन के ये नाल कहानी मन के सांगते रहो ये सब के असन कहानी मन के गाउन गाउन जसन सांगते रहो उनके बल सर लोकगीत। और ये लोकगीत मन ने आम चो हर रुसुम चो ये गोठ रहे से जसन का वैसे कि आम चो जन परंपरा संस्कृति ने जसन बिया हो से बिया चो जसन लगीन गीत आए मांडव गीत आए नाले जहन चूल माटी गीत आए हर बिया चो रुसुम चो गोटो ना गोटो गीत रहसे ची तो ये बोल का गोटो लोकगीत हो से और उसनी ची जसन का ही बोल जन खेल गीत मन रहे से जहन तुम्हें जाने साज की दियारी से दियारी जन बतर ने छेर छेरा गीत गाँव से और लेकी मंचो अलग रहे से लेखा मंचो अलग रहे झीर लिटी लेखा मंच रहे से और उसने गुड़दम दम गुड़दम दम बाजा बाजीला ये विति लेखी मंच रहे से बोलन कि आम चो जोन बोले तीज त्योहार आए नाले आम चो जो जीवन ने काय काय जोन आगे जमाना जोन घटना मन होली से जसन की कोनी कोनी रामायण चो कहानी मन के सुना बात और कोनी कोनी जसन महाभारत चो कहानी मन के सुनाए सर गाउन गाउन सुनाए सर ये सब लोकगीत रहे से और संगे संगे आजकल काय हो से कि खूबे नवा नवा लोग बल गीत मन के बनाए सर और आजकल तो रेडियो तो गीत मन ऐसे ची और संगे संगे यूट्यूब ने बोले तुम्हें खूबे गीत मन के सुन सकास मानतर ये गीत मन के बोल सत रचना गीत रचना लोकगीत बोलन कोनी बल जसन गीत कुरिया कहीं बल गीत के लिखे से उनके बोल सत रचना गीत मानतर असन गीत मन जोन हम चो परंपरा ले चलते ऐसे हम चो आई दादा बेरा लामी सुनन से उनके बोल सत लोकगीत मन तो ये लोकगीत मन हम चो जो इतिहास और जो संस्कृति आए उन सबके सांगे सत होनी का जे लोकगीत ने खूबे रस रहे से और संगे संगे पिलामन केवल तो खूब हरिक लागे थी आगे काय होते रही कि जसन पिलामन गाकते रहो तो आई नाले दादा बदल दाए कहीं बोल कहनी के गीत गाउन गाउन सांगते रहो तो पिलामन रस सुनाए सुनन धीरे धीरे सहते रहो तो असनी कहनी मन के सुनन सुनन उन कहनी मन और आगे बढ़ते गेली और यही लोकगीत मन ए भी बोले नाम के सुनुक निरे से तो होनी का जे लोकगीत बोले आमचो परंपरा और संस्कृति के आमचो पूरे आने से तो लोकगीत के बोले आम की किंडिक जानून रहता रहे तो ये तो मच बाटले गोठ होली दादा दीदी मन मानतर संगे संगे और बल नंगत अच्छा गोठ मन आसत ये बन केवल आले तुम्ही सुनून दखा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सित्तोड़। ಇದ್ ಬೂತಾತೆ ಇವ್ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡನೋರ್ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನ್ ತಚ್ ಇಯನೋಡ ತಿಪ್ಪಾಲ್ ಕಮ್ಮಾತ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನ್ ತತ್ತ ಓಯನ ಬೂತ ಸರಲ್ ಆಯ್ನ ಉಮ್ಮಿದ್ ಮಿಂದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿನ ಪೊರ್ರೋ ಮುನ್ನಿಟ ಲೆಕೆನ್ ಏಯ್ ಪ್ರತಿಶತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೆಲತ ಮಾಟ ಇದ್ ಮಿಂದೆಕಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿನಗ ಬಾತಾಯ್ ಬದ್ಲಾವಯ್ಯೋ ಕೊಂಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಡ್ ಚಕ್ಕನ ಗಾಡಿ ಏಯಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಶತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೋಲತೇನೆ ದೊರಕಿತ ಅದೇನ್ಕೆ ಅವು ಸೊಬ್ಬೆಡ್ ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತ ಗಾಡಿ ಬನೆ ಮಾಸ್ ಮಂತ
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव निहोली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: हाँ तो देखा दादा दीदी मन, आजकल तो जन समय आसन है कि असन तो खुबे घाम छेके से मानतर जसन बेरा कलटली तो बादरी गरजुक मरिया से बादरी ढापे से बिजली चमकली जाल पर पानी वाले मारुक मरिया से असन ओलन समझते रहे कि धीरे धीरे खेती किसानी च समय वाले अमरते जाए से एवे तो जसन जेड बेरा तो चले सी मानतर यही पानी ने कोनी कोनी धार बेड़ा मन ने कोनी कोनी किसान भाई मन बुने सत बोलती और बाकी जोन लोग मनात आदो लोग मन आप लोग जन मरानात मरान चो रेटे रेटे चो जोन बोले कहीं बोले जसन होता कचरा आसे नाले फिर लाटा बूटा आसे ये सब के साफ सफाई कर तो ये समय होली से सफाई कर सत बोले और उस नीचे आप लोग बेड़ान बोले ये भी तो पानी मुझे गता गता मारते जाए से और नांगर जोब तो बतर बोले होली से और खूबे गाँव ने किसान भाई मन नांगर के जोपे सत और संगे संगे जोन बोले आप लोग घर चो जोन धान पान है बुन तो बीती है जोन बोले बीचा है कि जोंदरा है कि जैसे कोसरा है गटका कोदा है अरवा है सबके किनिक दगुक पड़े थे काय कह कि जसन आजकल का है से कि संगान संगान खूबी दिन ल संगालो बीती ने कनी सूर्य धरुक सके नाले किनिक बुर्जा धरलो असन उग सके तो असन वालन का है कि उदुपना भुंत पर अमर लो ने तो कहाँ ले जोगाड़ी कर कह दे उन्हें कहे एवे तुम्हें मन के किनिक दखुन दखा कि अच्छा आसे कि न्याय जाल बोलते और निया जाल फिर हाट बाजार में ने बोलते असन भुंत कज मिर्ची है मानतर का है कि जसन बेड़ा हो नाले कहाँ जो निंजा नहीं हो नाले फिर पला लगा बीती हो कहीं काम नहीं हो वो तो खूबे लोग जसन भूती बल जाए सत तो सबके मनोरंजन कजे लोकगीत के बोले गाउन गाउन सियानिन मन सुनाए सत तो असन लोकगीत मन के सुनन भाती गेदल दाएं बेरा कटे से पता ही नहीं चले से। तो उन्हीं का जे काय सुंदर रहे सत लोकगीत मन। और एक गाँव लोग बोले उन असने नहीं सीखला से उन गाँव तक आज बोल खूब मेहनत मशागत करूँ पड़ू आए और मेहनत मशागत लागे सी संगे संगे उसन उतलो बड़े बड़े कई नहीं के सुरता करूँ संगातर बोल तो सरल काम न होने मानतर असन लोग बोला सत ये सब कही नहीं के जान सत जसन की आज गाँव गाँव ने कौन कौन बेरा वैसे जगार मन गुरु माय मन इतरो कहीं नहीं के रटून रह सत कि रात भर बल गाऊ सकत और उस नीचे नाट गुरु मनात हन मन रात भर गाय सत। तो ये सब मेहनत करला से ये लोकगीत जो पाठ कोती तो हनी काजे एमन लगे ये जोन गीत गावते बीती जोन आसे गुण एमन लगे आसे। तो उस नीचे आज गोटे भेंट वार्ता आमच लगे आसे और ये भितरे आसत लोक गायिका सनिता मरकाम और ये मन संगे भेंट करला सत बलबीर सिंह कच्छ और ये मन संग काय काय गोट बात होली से आले तुम्हें सुन दखा उन चल पाचे ऐसे बारे में और गोटिया वहाँ
6: सफर कुदर बाली सफर कुदर बाली सफर

0: तो सुनीता द कितलो अच्छा काय सुंदर तुझो रोजन राग आहे स्वर आहे खूप अच्छा सुंदर लागली बोलले दख तुझो ते बी सुरुवात आहे मोर आहे बोलले आगे गेले और अच्छा शिकसे अरुदन तुझो स्वर आहे कंठ आहे और अच्छा सुंदर होय दे ये आमचे बोले शुभकामना आहे मांतर दख बोलले ने तू के खैरागढ़ जसन किया एबे एमए लिटरेचर हिंदी निकलिस साहित्य हिंदी निकलिस फेर खैरागढ़ जाऊन पडतोर बोलले कसन मानिली कसन ने गेली सुता
1: हाँ, कसन में बल्लो ने अब मके संगीत सीख तो जो बिकट ललक रहे बचपन ले और मके लेते स्कूल वगैरह में गुरुजी मन पूछवात पूछत नहीं कि तू तो काय बनुक चाह से बोलन तब तो फिर मैं गायिका बनुक चाह से बोलवाए। तब उन भी दिन रहे जब 12वीं पास होले तब उतरोले संगीत के बुलक लो या सन बनो रहे मतलब गाओ तो गाते रहे लेकिन अब मक उतरो विश्वास नहीं रहे कि मक्के पे संगीत क्षेत्र में फिर जो कोई दे बोलन बातें लेकिन उतरो ले जगदलपुर ही ले क्राइस्ट कॉलेज में तब इतना अच्छा गाना गाओ तो चु मौका दिला गुरुजी मन मंच मेर ली। तब प्रार्थना सभा में बोले भिकट भजन वगैरह गोकलाए मेर ली उन्हीं सब उतार सुनुन बातें नाम जो गुरु जी मन मैडम मन सब लोग आम मतलब बल्ला की तो अगर संगीत में समय दिले जाले और अच्छा करुक सकुआस बोलून बातें। तब इधर आले मक फिर अजिक संगीत जो साइड सोच तो जो मौका मिल ली और मैं खैरागढ़ जातो जो बारे में सोच
0: अच्छा
1: ले।
0: हाँ हाँ

0: जिसन की खैरागढ़ बल्ले उता संगीत बल्ले शिक्षा देवाद बल्ते मार्गदर्शन हिसाब ने कौन सांगला कौन दखाला
1: कौन ही नहीं सांगत
0: अच्छा
1: मके पता नहीं मैं कसन में कहाँ सुनू रहे हुई लेकिन अचानक मैं मको नहीं सांगला खैरागढ़ में संगीत सीखा सता सनाय सनाय बोलून बातिन लेकिन के भाई पढ़ून पढ़ना बोल रहे हुई अचानक टाइप जो उतर जातो जो बारे में मचो घर चो मतलब मजबूइन जो पूरे बोलने की मैं उतर जोन बातें पढ़ूँ बोलून बातें क्योंकि मजबूइन बोलते रहें दा डीएलएड कर ली सिद्ध बीएड कर बोलून बातें लेकिन मैं नहीं मैं संगीत से कुक लाए खरा कर जो मैं बोलतो फिर अब
0: अच्छा
1: उन मना बल नहीं कर ली जो आज जल जाऊँ जाऊँ तक जानू बल ली
0: अच्छा
1: हाँ
0: बल्ले ने तू यू ता एकला गेली इसमें
1: हाँ एक लागे ले
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो बल्ले नुता जाऊँ कहाँ मिलीस का संग भेंट गाँट होलीस काय पूछ लीस
1: हाँ सब ले लेते तो मैं खैरागढ़ के दखुन बल नहीं रहे और जाता छो लेते मकर असन लगते रहे कि मैं उतर जाऊन बातिन कहाँ एक जन भटकू आए बे क्यों खोजू आए बे असन टाइप चो लगते रहे लेकिन मैं जब खैरागढ़ गेला तो जस्ट बस ले उतर तो एक खैरागढ़ भी दिन बोर्ड ठांग लो धक्का दिली तब उतर मैं डायरेक्ट गेले 2 बजे चो आसपास अमर ले और 2:30 बजे चो आसपास मैं चो इंटरव्यू होली यानी कि वोकल टेस्ट दर्शत उता
0: अच्छा
1: सब ले लेते उतरो ले फिर लिस्ट में नाम निकरा सत काचो काचो चयन होली बोलून बातें तब उसने सेलेक्ट हो तो कि फिर मैं जौन बातें एडमिशन होले
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा तो ये भी होता जैसन कि लेकी मन का जे पढ़तो का जे रतो का जे खातो का जे काय सुविधा आसे
1: लेकिन मन चोर तो काजे हॉस्टल सुविधा से
0: अच्छा
1: और खाना वाना सब होता है
0: हाँ
1: मेस फीस पे करूँ बातें
0: अच्छा
1: हो
0: मतलब रोक
1: हाँ
0: सकूँ
1: रोक सकूँ से
0: अच्छा
1: और कोने बाहर रह तो लोग मन किराया रूम में बल रह सत
0: आसन
1: हाँ
0: अच्छा हाँ तो दक सुनीता थी इतलो अच्छा बोले तुझो मेहनत तुझो संघर्ष तुझो मन ने बोले नुता तक अमरलिसिस फिर आमी गोड बात तो आगे करवा तो आमचो बस्तर चो फिर कहीं असन हल्बी गीत के तुझो जान लो भी थी के हल्खनी कसन गावन बात सुना देस
1: बस्तर चो
0: हाँ।

हाँ, ये कायर ऐसे गीत के तुम पूरे अमर रोत बलवीर सिंह कच्छ। तो बलवीर सिंह कच्छ बोले हम जो अच्छा ये लोक कलाकार मनात और ये मन जो गीत मन के बोले सुन लेने को भी अच्छा लागे से। तो ना दीदी मान जैसा नामी कार्यक्रम ने इलुस तो जाते बेरा बोले हो आए तो उस नीची अगर हम जाते बेरा अमरली तो वाले मैं तुमके विदा मांगे इनसे। तो जातो पूरे बस्तर स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी मन के मैं चैतु करें से राम राम।

बस्तर की स्वर कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी।

0: हाँ तो आज सुनू, पहले फोन कौन करे से?
1: हेलो, फोन इन किसान वाणी।
2: हाँ, फोन इन किसान सर। हेलो सर। जी मैं ब्रांजी से बोल रहा हूँ, ग्राम ब्रांजी से, डोंडीगुड़ा ब्लॉक।
1: डोंडीगुड़ा ब्लॉक ले कौन बोल सी भाई?
2: मैं सीताराम भारद्वाज।
1: सीताराम भारद्वाज।
2: हाँ दादा, क्या जो विषय चल रहा था खेती विषय सर?
1: आज तक टीकाराम भाई जो आज तक आज शाम जो विषय है बोलूँ बे कृषि अभियांत्रिकी जो विषय है, तो देख ये जो जवाब देते हम जो साहब रहते ये तक श्री महेंद्र मरकाम, तो देख तुझ आज का सवाल है ना?
2: ये मिनी ट्रैक्टर कसन योजना में हम लाभ मिल रहा है, प्राप्त कर रुपया बना पाया हुआ बने
1: का मिनी ट्रैक्टर बोल ली।
2: हाँ
1: अच्छा, तुझे का बाड़ी है कि कहीं लगा ली ना?
2: नहीं, इसमें बाड़ी वाला है और उसमें बेड़ा वाला है।
1: अच्छा, काय काय फसल धरुआस ना तू?
2: ये बेतुड़ लगा लूस ना। रोपाई समय दिक्कत हुआ तो मिनी ट्रैक्टर हाथ अच्छा सुविधा होती बोल।
1: अच्छा, तो मिनी ट्रैक्टर जो कई सुविधा का मेरे बोलते चाहिए ने
2: हाथ इधर चला थी, हाँ, थी।
1: उन्चो हाथ ने चला थी जो बारे में जानकारी धरुक जासी सुन जो का हिसाब किताब है का उनचो
2: आवेदन कर लो ना
1: ने गोट के चालू
2: योजना चला दी।
1: नमस्कार सर। हाँ सर, हमारे जो श्रोता हैं जो वो चाह रहे हैं सर जो मिनी ट्रैक्टर आता है उसके विषय में वो विस्तृत जानकारी लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं कृषक, और उसका क्या सब्सिडी है योजना का, किनको लाभ मिल सकता है और कैसा उसका प्रक्रिया है, सारी चीजें जानना चाह रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा
3: उसको मिनी ट्रैक्टर को आप पावर वीडर कहते हैं है ना?
1: जी
2: जी सर। नमस्कार।
3: जो आपको आपके ग्राम सेवक के माध्यम से उसका आवेदन कर सकते हैं
2: जी,
3: और उसमें 40% का अनुदान रहता है।
2: जी सर।
3: ठीक है
2: जी सर। ठीक है
3: जी। हाँ, और उसको छोटे छोटे जैसे खेत में आपका उपयोग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग किया जाता है ना?
2: जी सर। हाँ,
3: काम में आता है, जैसे साग भाजी लगा सकते हैं
2: जी,
3: मताई वताई कर सकते हैं छोटे छोटे खेतों में।
2: जी सर।
3: आता है पावर वीडर
2: इसके लिए कहाँ आवेदन करना पड़ेगा सर?
3: हाँ, वो आप ग्राम सेवक के माध्यम से उसका आवेदन कर सकते हैं, वो बीज निगम के माध्यम से आपको मिलेगा वो।
2: जी
3: हाँ, बीज निगम कार्यालय के माध्यम से आपको मिल जाएगा
2: जी,
3: एकल यंत्र
2: जी सर। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा सर? मतलब
3: जी,
2: मतलब कागजात,
3: कागजात आपका आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, और आपका क्या बोलते हैं पट्टा वट्टा लगेगा, सब चीज लगेगा
2: जी, जी सर
3: जी। जीवन नक्शा कचरा ये सब चीज लगता है उसमें
2: जी सर।
3: उसको आप आवेदन करने के लिए ग्राम सेवक के पास जाएंगे तो वो आवेदन भर देंगे
2: जी सर। हाँ, अच्छी जानकारी दिया सर, धन्यवाद।
3: अधिकारी आपके क्षेत्र के जो भी होंगे उनसे आप संपर्क कर सकते हैं
2: जी सर। अच्छा।

0: कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है।
1: ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है, लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है।
2: ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में एक किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में एक किलो स्प्रे होती है।
0: अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं।
3: इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे।
0: साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों, किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया

0: SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है।
1: हेलो, फोन इन किसान वाणी।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार दादा, कौन बलसाल दादा?
2: मैं कुरलू बाहर ले बोले से दयनु राम नेता।
1: दयनु राम नेता बलसीस?
2: हाँ।
1: ये कुरलू बाहर ले?
2: हाँ।
1: अच्छा, तो दयनु भाई।
2: हाँ।
1: अले सबले पहले जुआर ना तो के?
2: हाँ जुआर।
1: हाँ तो दयनु भाई, अले तू देख आज देख हम जो आकाशवाणी फोन कर ली ने तो देख जो हम जो शाहबाद ये श्री महेंद्र मरकाम और ये जो कृषि विभाग ले जो सुविधा मिले से कई कई योजना मन कृषि विभाग अभियांत्रिकी विभाग बांट ले तो ये वो योजना मन कहीं जो बल तुम मन ने सवाल आसे ये योजना मन गोट पे साउ सको तो आले तुझे आज का सवाल है ना?
2: अभी तो धान से सीजन आसे का दाने चो बारे में पूछ तो रहे उन बीती हम तो बोले आन ले कसन कसन टाइप चो उपयोग कर तो आए चो बारे में मैं जाने।
1: अच्छा, ये जैसा धान रोपाई मशीन के बारे में तू पूरा जानू चाहती घेन तो प्रक्रिया ले धरून भाती कसन हिसाब के रख रखाव है कसन उनके उपयोग करता है सफाई गोड़ के तू जानुक चाहिस ने? हाँ बिल्कुल, हम साहब हम संग आसोत तो ये मन चले चो सवाल चो जवाब के धरो ने आले तखा साहब ये हम जो दयनु भाई सवाल कर ला सिंधी सवाल चो जवाब के ठीक सांगुन दिया।
3: जी हेलो जी, धान रोपाई का मशीन जैसे उसमें धान रोपाई के लिए आपको अभी जैसे मशीन से रोपाई करना है जो कतार विधि से लगता है ना?
2: जी
3: हाँ, तो उसका कृषि विभाग से वो भी कृषि विभाग से ही आपको प्रदाय किया जाएगा तो उसमें भी 40% का अनुदान मिलता है तो उसका जो लागत होगा उसमें 40% का छूट मिलेगा।
2: जी
3: ठीक है
2: धन्यवाद।
3: लगाने के लिए आपको पहले पौधों को तैयार करना पड़ता है मशीन से जैसे आपको लगाना है ना, और उसमें जैसे मशीन से लगाएंगे तो ट्रे से उसके लिए ट्रे आता है और पेपर चिली पेपर में भी आप उसको तैयार कर सकते हैं पौधा को। उसके बाद पौधा तैयार होने के 15-20 दिन के बाद उसको आप मशीन से लगा सकते हैं खेत में।
2: हाँ ठीक है।
3: हाँ, जैसे ऐसी रोपा हाथ से लगाते हैं तो हम खेत में पहले तैयार करते हैं पौधा को, वैसे उसको भी तैयार करना होता है लेकिन उसका विधि अलग है। हाँ, उसके लिए आपको एक ट्रे भी आता है और ऐसे भी तैयार करते हैं वैसी माध्यम से तैयार करके उसको लगाना होता है।
2: ठीक है
3: जी, उसमें आपको अधिक लाभ होगा। ठीक है,
2: एक एकड़ के लिए कितने ये करना पड़ेगा?
3: क्या चीज?
2: एक एकड़ के लिए?
3: एक एकड़ के लिए 7-8 किलो के लगभग लगेगा बीज आपको।
2: जैसे कि देसी दाम से थोड़ा सा कम लगेगा? नहीं
3: जी
2: जी, ठीक है सर।
3: ठीक है,
2: जोहार दादा।
1: हाँ जुआर दादा, आल फोन कर ली ना।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 से 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222266। फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: हेलो, फोन इन किसान वाणी।
5: हाँ हेलो किसान वाणी।
1: हाँ जोहार दादा।
5: जोहार
1: जोहार, कौन बोलता दादा?
5: मैं खिलेश कुमार साहू बोला तो रानी गाँव नगरी में।
1: अच्छा खिलेश कुमार साहू।
5: हाँ
1: हाँ दादा, देख खिलेश भाई।
5: हाँ हाँ,
1: तो देखा आज जो हम जो फोन इन किसान वाणी जो आज जो विषय है ये है कृषि अभियांत्रिकी।
5: कृषि अभियांत्रिकी,
1: कृषि अभियांत्रिकी जो जोन बल गोट जानुक चाह बारे में तुम सवाल करू सका और आज देखा हम जो बीच आसोत हम जो शाहबाद कृषि महकमा बाट चो ये आज श्री महेंद्र मरकाम तो अले तुम चाजी का सवाल है ना?
5: ये जैसे हम कृषि करते छोटे किसान जैसे पावर वीडर वगैरह आत रहते छोटे घर तो उमे कुछ लोन वगैरह या कहीं लेके अनुदान पूछे रहते का
1: पावर टिलर जो अनुदान
5: पावर टिलर या पावर वीडर छोटे छोटे पावर वीडर आते जो अपन बाड़ी वगैरह में फांस सन
1: पीछे जो हाथ जो माध्यम ले चलवा था उनके
5: हाथ में चल
1: अच्छा अच्छा बिल्कुल जो जानवा ये जो काय जानू से खिलेश भाई
5: ये जैसे कि विभाग से कुछ एक अनुदान के रहते का प्रावधान
1: अच्छा विभाग वाले का अनुदान मिले से कि नहीं ये जानू चाहा सा आपने
5: हाँ
1: और कहीं सवाल ना तुम छो मन में आसे
5: हाँ तो सब बढ़िया है
1: और ठीक है जो एक सवाल जवाब करवा हाँ तो महेंद्र सर प्रकाश सर ये पावर ट्रिलर के बारे में जानना चाहते हैं इसका क्या सब्सिडी है क्या योजना का कैसा लाभ ले सकते हैं इसके बारे में प्रश्न
3: पावर टिलर ये भी आपको कृषि विभाग के माध्यम से ही प्रदाय किया जाएगा और इसमें भी 40% का अनुदान ही रहेगा ये ग्राम सेवक के पास आप आवेदन कर सकते हैं तो उसमें भी वही समस्त दस्तावेज लगेंगे आपको आधार कार्ड B1 जाति निवास
0: मधु क्रांति एक नए युग का आगाज मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं
6: अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है उनकी आय भी बढ़ा रही है
0: मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई उद्देश्य स्पष्ट था मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद बी वैक्स रॉयल जेली और पोलिन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं।
7: मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया दो बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है आज हमारा जो उत्पादन है वो 1,00,000 kg लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं
0: यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं
6: सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था।
8: मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर

0: पर्सनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ।
1: ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए।
2: हेलो फोन इन किसानवाणी।
3: हेलो फोन इन किसानवाणी, दादा जुवार ना।
2: जुवार ना जुवार, कौन बलशीस भाई तुई?
3: मैं बुद्रू बोले दादा।
2: बुद्रू बलशीस?
3: हाँ ना।
2: ये कहाँ बलशीस बुद्रू भाई?
3: मैं लोहंडी गुड़ाल बोले ना।
2: अच्छा लोहंडी गुड़ाल बलशीस।
3: हाँ
2: अच्छा,
3: तो दादा आजकल खेती बाड़ी समय अमर लेना तो कसम कसम साधन मन मेरे से काय काय कसम
2: तख बुद्रू भाई हम जो
3: कहीं छूट मन
2: बुद्रू भाई।
3: हाँ
2: दगा जाम छो ऑफिस ने आकाशवाणी ने श्री महेंद्र मरकाम साहब आत तो अपन किसी जो उपकरण बांट ले कई बजे सवाल से तुम जो रहे तुम जो जवाब दे दे तो आल तू जो आज का सवाल है ना।
3: मैं जो नहीं दादा की अभी खेती बाड़ी तो समय तो अमर ली है।
2: हाँ।
3: तो जैसे मशीन मन आए नांगर का मशीन मन तो उन कसम कसम मेरे से और कसम कसम होता कहीं छूट छूटी बोल रहे थे जाले।
2: अच्छा नांगर पार उपकरण मन के बारे में काय मेरे से काय नहीं मेरे तू जानकारी धरू चाह आशीष ने। तो वाले साहब हम जो बुद्रू भाई जो सवाल तो सुन ला होती तो ये जो
4: उपकरण तो वही सब अभी जैसे अन्य उपकरण जैसे मिलता है कृषि विभाग से तो वैसे वो भी मिलेगा एक यंत्र मिलेगा है ना।
3: अच्छा।
2: नहीं तो सर ये क्या नए कॉलर है तो इनको नहीं मालूम पिछला हम क्या बात किए तो उसके बारे में आओ
4: उसके जैसे आपको यंत्र लेना होगा तो वो कृषि विभाग में ग्राम सेवक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं।
3: अच्छा
4: हाँ उसमें आपको जो भी यंत्र लेना रहेगा उसमें 40% का अनुदान रहेगा।
3: अच्छा साहब जैसे हम बीडर वगैरह लेना चाहेंगे पावर टिलर वगैरह तो
4: पावर टिलर वगैरह लेना चाहेंगे तो वो भी वैसे है आवेदन करना होगा आपको पहले।
3: अच्छा
4: अनुरूप आप हाँ तो मिलेगा वो आपको।
3: अच्छा
4: जी
3: अच्छा उसमें कितना परसेंट सब्सिडी रहेगा साहब?
4: जी
3: सब्सिडी कितना परसेंट रहेगा छूट छूट?
4: 40% सब्सिडी रहेगा उसमें।
3: अच्छा
4: जी
3: उसके लिए क्या क्या देना होगा अपन को?
4: उसमें आपको फोटो लगेगा आधार कार्ड लगेगा और B1 नक्शा कचरा ये लगेगा।
3: अच्छा
4: जी
3: ठीक है साहब उतना जानकारी चाहिए था
4: जी ठीक
2: ठीक है बुद्रू भाई तुमके तुम सवाल से जवाब मिली होती ने।
3: हाँ ठीक है दादा।
2: अरे जुवार भाई
3: जुवार।
5: पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुँचे इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं वहां पटवारी थलथी रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को दो आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड पर किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के दो स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है, इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सी कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज।
2: हाँ तो दादा दीदी मन, तुम बोले आप लोग खेती कमाली जो कहीं बोले उवाट के जानतो काजे, आप लोग सवाल जो जवाब के जानतो काजे, तुम बोले फोन करो सकास रोजे मंगलवार दिन 3:30 बजे ले धरुन भाती 4 बजे तक फोन करतो काजे। नंबर है 2222 और 666। फोन करतो पहिल जगदलपुर चो एसटीडी कोड 07782 लगाओ नहीं भूल का। अले दाय मके दिया विदा, जुहार।
6: फसल कमानी काजे खोजकारी उपाय सांगे कीड़ी रोगे राई होली चिपचो उपाय काजे।

0: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है जूनियोजर में भत्री लोकगीत। कलाकार हैं नीलू राम और साथी।
3: आज वो देगा।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

जो न्यूजर में अभी आप सुन रहे थे भद्री लोकगीत, कलाकार थे नीलूराम और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीलामन काजी गोट। प्रस्तुति है रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की।

0: तुमतो पाठके दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पिला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पिला मन
1: पिलामन का जे गोट सुनतो नानी बड़े सपाय पिलामन के मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और लाड। हाँ तो पिलामन आमी एक कार्यक्रम भित्रे रोजे दिना तुमचो पूरे धरुण भाती अमरु से आमचो देशचो माटी ने जन्म धरलो वीर पुरुष वीर योद्धा और महान समाज सुधारक मंचो गोट के जोन की आम के आमचो समाज के आमचो देश के आप लोग कर्म ले और आप लोग ज्ञान ले नगद बाट के दखाला और आम के आमचो देश चो प्रति देशभक्ति के जगाला। आमी सपाय लोग के गोटोक सुतूर ने चलतो काजे सीख दिला बाट दखाला। असन तो आमचो देश ने कैक जन महान हस्ती मन जन्म धरला। मानतर आजी आमी जानवा आमी गोठियावा आमचो देश चो असनी वीर पुरुष और वीर योद्धा जोन आपलो देश और आपलो मातृभूमि चो रक्षा काजे आपलो जीवना के खपाला। मानतर फेर बले देश चो दुश्मन मन चो पूरे हार नहीं मानला और आपलो वीरता और शौर्य चो लागुन आपलो नाव के अमर करला। असनी ये वीर और महान योद्धा आत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चो जन्म 9 मई सन 1540 के राजस्थान जो कुंभलगढ़ नाव चो जगह ने राज परिवार ने होली। ये मन चो बाप रला महाराजा उदय सिंह और माए रानी जीवंत कंवर रला। महाराणा प्रताप पीला बेरा लेची खूब बेसाहसी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय रला। ये मंचो पीला बेरा चुनाव की कारली। महाराणा प्रताप के पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलातो चो शिक्षा मिरली और महाराणा प्रताप बले पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलातो ने महारत हासिल करला। एक दखुन ये मंचो बाप महाराजा उदय सिंह खूब बेहरी होते रला। धीरे धीरे समया होते गेली और महाराणा जुआन होला। सन 1572 ने महाराणा प्रताप चो राज्य अभिषेक होली और ये समय ने ये मंचो राज ने खूबे संकट और विपत्ति मन के बले सामना करो पड़ ली। मांतर महाराणा प्रताप आप लो सूझबूझ धैर्य साहस और पराक्रम ले सपाय विपत्ति चो सामना करला। महाराणा प्रताप आप लो बाप राजा उदय सिंह चो आखिरी इच्छा चो मान करुन भाती आप लो सौतेला भाई जगमाल के राजा बनातो चो विचार करला। मांतर हुन समय मेवाड़ राजचो विश्वासपात्र चुड़ावत राजपूत मन जगमाल चो राजा बनतोर मेवाड़ राज का जे खूबे नुकसान होय दे बोलून भाती जगमाल के राजा बनतोले मना करला। मांतर जगमाल सिंहासन छाड़ूक नीच आते रहे यही काजे पाछे रीस होन भाती बदला धरतो काजे अजमेर जाऊन राजा अकबर चो सेना ने मिसलो। यही समय ने राजकुमार प्रताप के मेवाड़ चो राजा बनाला और संगे संगे महाराणा चो खिताब बले मिरली। ये समय ने दिल्ली ने राजा अकबर चो राज चलते रहे और अकबर चो मुगल सेना मेवाड़ राज के आपलो राज ने मिसातो काजे चित्तौड़ चो चारों बाटले घेरला। मांतर महाराणा प्रताप चो वीरता और साहस ले युद्ध के लड़ला और कठिन परिस्थिति ने बले हार नहीं मानला और आपलो मातृभूमि के गुलाम हो नहीं दिला। मुगल सम्राट अकबर यमनचो राज के जीतून भाती आपलो राज ने मिसाऊ चाहते रलो। मांतर राणा प्रताप यमन के असन नी होग दिला और जीवना भर यमन संगे संघर्ष करते रला। महाराणा प्रताप 7.5 फुट डेंग और यमनचो वजन 110 किलो रली। यमनचो सुरक्षा कवच 72 किलो चो और भाला चो वजन 80 किलो रहे। महाराणा प्रताप जेबे युद्ध करुक लाए जाते रहोत हुन समयाने यमनचो तलवार ढाल कवच और भाला ए सपाय के मिसौन भाती 208 किलो ले बले आगर वजन के उठाउन भाती युद्ध करते रला। आजी बले महाराणा प्रताप चो कवच भाला तलवार ए सफाय अस्त्र शस्त्र मन उदयपुर राजघराना चो संग्रहालय ने सुरक्षित आसे। महाराणा प्रताप लगे गोटोक घोड़ा रलो हुंचो नाव चेतक रली। ये घोड़ा बले खूबे समझदार और वीर रलो और महाराणा प्रताप के बले चेतक घोड़ा के खूबे लाड़मया करते रला। गोटोक समयाने युद्ध बेरा ये घोड़ा 26 फीट चो घाटी के डगौन भाती महाराणा प्रताप चो जीवना के बले बचालो। असन तो महाराणा प्रताप आपलो जीवना ने कैक ठन युद्ध के लड़ला। मांतर एमन चो जीवना चो प्रमुख लड़ाई आए 18 जून 1576 के लड़लो हल्दी घाटी चो युद्ध। ये युद्ध ने मुगल सेना लगे 80,000 ले आगर सैनिक रला और महाराणा प्रताप लगे 20,000 ची सैनिक रला। फिर बले

आखिरकार जंगल ने शिकार खेलते समय की पावलो घावचो कारण ने 19 जनवरी 1597 के चावंड नावचो जगह ने यमन आखिरी सांस धरला। ये खबर के सुनून भाती अकबर बले खूबे दुखी होलो। हाँ तो पिलामन ए रहे सुरवीर महाराणा प्रताप चो जीवनाचो गोट। आले एदाय सुनू ए गोटो गीत के।

हाँ तो पिला मन ए गीत तो होली और ना जातो समयावल होली तो जातो पूरे पिला मन का जे गोट सुन तो सपाय नानी बड़े पिला मन के मचो बाटले फेर हारक खूबे खूबे लाड़ और माया।

0: तुम तो पाठ के दखा उठा कह उठा हो भारत माए तो वीर पीला मन उठा कह उठा हो भारत माए तो वीर पीला मन।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीलामन काजी गोट, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आमचो रान आमचो जीवना आज चो ये कार्यक्रम ने मैं असन ग्राम पंचायत चो गुठ बात कर तो काजे आमचो आकाशवाणी स्टूडियो ने इला से कि ये मन चो गांव ने बलुबे सामुदायिक वन संसाधन चो व्यवस्था करन बाती पूरे गांव के बल्ले ने अच्छा रूख रही बल्ले रोपन बाती और बल्ले जोन बल्ले रीति नीति आए उन मन के बचा तो काजे काम कर सोत मन संग गोड बात करें से श्री रूपचंद नाग। तो रूपचंद सबले पहले मैं ये जानुक चाहें से कि जसन की तुम्ही बल्ले ने कौन बेरा ये जोन ग्राम पंचायत ने वन संसाधन जो जोन अधिकार मृत्यु बीती काम करलास कसन करलास।
1: ये लगभग आमी 2019 ले काम करलू।
0: अच्छा
1: 19 ले काम करून ये जो वन अधिकार कानून एक आमी खुद समझ लू मचो बड़े भैया अनिल दादा सांगलो वन अधिकार कानून एक अधिकार पट्टा मिरु है गाँव चो बोलते। तो आमी गाँव चो लोग के कुछ सियान लोग के बोसालू और ये चो बारे में सांगलू कानून चो बारे में। तो ये चो का जो काय काय प्रक्रिया लागू है बोलतो कि प्रक्रिया के आमी गाँव लोग संग सियान लोग मन संग मिलून सांगलू तो एक ग्राम सभा बसते रहे बोलू।
0: अच्छा
1: ग्राम सभा बोसलू और सब लोग संग मिलून बात ले ये कानून बारे में सांगलू। तो गाँव लोग राजी होला ये अच्छा काजे आए तो एक बनाऊ वाला। तो ये बनात काजे आमी पूरा प्रक्रिया कर लू और गाँव छो जैसन माटिया या जो भोरिया माता उता जल सेवा अर्जी कर लू आमी आम चो सफल हो बोलते।
0: अच्छा
1: और उनके बाद ले धीरे धीरे जो प्रक्रिया चालू कर जे कानून जैसन की कानून चो दायरे ने जो सूचना देते भी थी सूचना दे तो सबले पहले SDM ऑफिस ने सूचना दिलू गोटो और गांव जो सरपंच सचिव मन के।
0: अच्छा
1: तो उन्हीं संगे संगे आजू बाजू गांव बल टेकली से एमन के बल सांगू ये सूचना देवा बोलते। ये प्रक्रिया करते करते धीरे धीरे जसन का शुरू जो प्रक्रिया कर लू गोटो कुन पत्र रुआ उन पत्र के चारों गाय बांट लू और सांगलू आज जिला में सामुदायिक वन अधिकार सामुदायिक अधिकार सामुदायिक संसाधन छो काम करूंगा से बोलते। उन मन बोले उन मन के उन बाजू गांव उतलो समझ बल नहीं रही तो उन मन बीच ने काय बीती चाहे हम नहीं जानू ये बीती हम पावती बल नहीं दे बोलते रहो। तो धीरे धीरे फिर स्टेप ले स्टेप जाते बीती है तो उन गोटोक फिर गोटोक दूसरा पर पत्र धरून जेलू फिर उता साइन करा तो रान तो रामी साइन कराते आनती फिर गोटोक पर पत्र धरून जेलू फिर जेलू साइन कराते कराते जोन दिन आम जो GPS करात बीती रही तो GPS करात का जे GPS करा पर गांव चो लोग के फिर सांगलू आज आम चो गांव चो संत संत के किंदर तराए बोलते।
0: अच्छा
1: संत के किंदर तो काजे आमी फिर देवदामी का बसालू सिरामन सांगला नहीं तुम चे बाटलू बाटले सीमा है उन्हीं बाटले जा बोलते। फिर आजू बाजू गांव के फिर सूचना दिलू जो SDM ऑफिस ने सूचना दिलू तो मन बलिया बोलते फॉरेस्ट विभाग सूचना दिलू उन बल फॉरेस्ट विभाग बोले रहे तो जेलू कुछ आगे जाऊन कुछ आमचो जो सीमा घूमते भी रही संत घूमते भी थी उन विवाद ने चल ली।
0: अच्छा
1: तुम्ही असन कसन कर साथ देव संगे संत किंदर साथ बोलते रहो।
0: अच्छा
1: सीमावर्ती गांव तो आमी आमचो जो सीमा है उन्हीं बाटले किंदरों से अगर तुम के कई काय तो लागे जल तुम्ही उन बार सीमा दका जाम उन्हीं बाटले किंदरो नहीं आम ये फिर बोस माता असन उसन करवा बोलते उन्हें नुता आमचो सीमा भी थी रोक लगा फिर ले आमी गांव चो लोग के सियान मन के बोसलू ये कसन आया नहीं बाटले फिर उन गांव चो लोग के फिर हाक दिलू फिर समझालू ये आमचो आजी चो सीमा फिर किंदर तराए बोलते।
0: अच्छा
1: फिर सूचना दिलू ये ता और गांव फिर सूचना दिलू फिर उन दिन ले फिर धीरे धीरे सीमा किंदर लू और आमचो जो GPS भी थी काम
0: पूरा होली
1: उन पूरा हो तक जान फिर और गोटक गांव चो बारे में फिर लिखुक मरियालू जड़ी बूटी जीव जंतु ये सब की लिखुक मरियालू।
0: अच्छा
1: उन चो उनके बल लिख तराय बोलून फिर उनके लिखुन गांव चो लोग के साथ फिर लिखुन बात ले पढ़ालू फिर काय काय जड़ी बूटिया से
0: पूरा पंचायत ने पूरा गांव ने बोलो
1: गांव ने और जो पेट जड़ा काय काय दवाई दिवा उन गुनिया मन तान बल जेलू उन मन बल आप लोग दवाई मन के सांगला उन मन बल लिख लू जोन हर एक चीज चो दवाई सांगला फिर ये सब चीज करू नाम चो जोन लास्ट ग्राम सभा रही तो एक पढ़ून सुना बीती रही उन पढ़ून सुनालू ये अच्छा है बोलू नामी उन अधिकार के धरून बातली उनका है तो के पूरा फाइल के दरुन आमी एसडीएम ऑफिस ने जमा करून दिलु।
0: अच्छा,
1: उन लगभग आमी 19 ले करलु और आम के 23 ने मिरली।
0: अच्छा,
1: 13 दिसंबर 2023 के जो नाम जो पट्टा मिरली।
0: अच्छा, हाँ
1: हाँ, उन पट्टा मिर तो के फिर आमी एबे दे पट्टा मिरली एबे आमी काय करू आ बोललु। अब उन चो संगे जसा नाम चो बीच में गोटोक एट्री संस्था आम उन मार्गदर्शन दिली अभी प्रबंधन करते रहे बोलते।
0: अच्छा,
1: प्रबंधन कर तो काजे आमी तुन के नहीं जानते रहलु। फिर आमी एक गांव जेलु महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 5 गांव।
0: अच्छा,
1: उता दखुक जेलु और उता आमी सीखो नीलु। उन जो महाराष्ट्र 5 गांव ने उता बांस चो प्रबंधन कर सो।
0: अच्छा,
1: उन गांव चो ताने असन नियम बनाला की आपुन मन चो ग्राम सभा बसतोर केवे ग्राम सभा बसुआ एक एक मत बसुआ। तो आमी बोले आम चो गांव मन में चालू करूं करवा की इनको बोलूं ताल सिकुन बात ले इलू और गांव गांव में जैसे नाम चो गांव ने ये चीज के आमी सांगलू। सांग तो के पेर गोटोक वीडियो रेली वीडियो माध्यम में दकालू असन असन जंगल के बचात रहे असन असन करत रहे। फिर आम चो गांव ने तो जंगल तो सरली से आमी काय के प्रबंधन करवा ये भी आ से जोन जोन लगभग 40 से 50 साल होली वन विभाग आम के अक्सिया काजू और आंवला चो पौधा देव रहे।
0: अच्छा,
1: उन्हें भी उन्हीं जंगल आ से फिर ये जंगल का आमी कितना दिन प्रबंधन राका जागा करवा आमी बोला आम चो गांव ने जो आगे गांव मन ने आसे उन मन के जो पूर्वज जंगल आसे आमी फिर उताले गांव लोग बोसलू समिति गठन करलू ये चो बारे ने पूरा गांव के हाक दिलू समिति चो 11 जन 12 जन चो चुनला अध्यक्ष सचिव कोषा अध्यक्ष बनाला।
0: अच्छा,
1: उनके फिर गांव चो लोग उता अनुमोदन करालू। फिर उन अनुमोदन करान बात ले कलेक्टर ऑफिस डीओपी ऑफिस एसडीएम ऑफिस जमा करून दिलु समिति आमी आजिले प्रबंधन करू बोलते।
0: अच्छा,
1: फिर आमी जंगल तो नहीं आए बोलू जसन फिर गांव लोग संग सोरोलू फिर पूर्वज जंगल हम फिर बनावा बोलते। 5 तारीख विश्व
0: पर्यावरण दिवस
1: उन दिन आमी 700 पौधा लगा लू।
0: अच्छा,
1: आम चो गांव चो लोग एक सहमत होलू खोदरा खोड़ तो काजे को की काय तो नहीं करू आम चो गांव चो लोग जाऊन खोदरा खोड़ लू और पौधा मंडालू।
0: अच्छा,
1: अरे भी उन पौधा अच्छा से जागे और जसन ग्राम सभा बल नियम बना लू जसन 13 जन चो टीम बन ली।
0: अच्छा,
1: 13 जन चो टीम बन तो के एक दिन ने 6 घर रखा जावा।
0: अच्छा,
1: उन 6 घर लोग रखा जावा और दूसरा दिन दूसरा 6 घर लोग रखा जावा। फिर रजिस्टर मन बना लू से ये तो बेराबल जाऊन साइन करून जाओ जाते बेराबल साइन करून जाओ।
0: अच्छा,
1: उन बना लू सर हर दिन उन्हीं चलू और ग्राम सभा जो नियम बना लू सर ग्राम सभा वे कामदेव कुरुसपाल जो जो नहीं ग्राम सभा नहीं है उन चुका आज बल दंड धरुआ जो ग्राम सभा ने नशाखोरी बल करू उन चुका आज बोले
0: कहीं दंड आसे
1: उन बल 300 रुपया धरुआ।
0: अच्छा,
1: और जोन बिना पूछे दूसरा गांव चो लोग लकड़ी काटे उन चुका जो 500 रुपया दंड धरुआ।
0: अच्छा,
1: ये दंड मन बना लो रासे और यही आम चो ग्राम सभा चो उन्हें बे चालू कर।
0: अच्छा, जैसन कि तुम ये 500 कितलो पौधा 700 मंडाला से बोल से
1: 700
0: बोले ये चो जो दखा पानी कांजी वगैरह ते देवक लाए नहीं लागे होती
1: ये बे पानी कांजी चो तो ठीक आसे बे पौधा वाला अच्छा बाढ़ तो कदार ने आसे।
0: अच्छा,
1: तो अगले गर्मी दाए पानी तो लागे दो
0: था। हाँ, तो कहीं असन रोजगार चो कहीं अवसर बोले कहीं
1: ये आमी रोजगार का जे डगराओं से उता आम चो गांव चो लोग बाहरी काम करुक नहीं जाओ आम चो गांव ने रोजगार मिरो जसन के जंगल ने आज खूबे लाटा सुन लाटा ले आमी कैंपा मदले कुछ आमी गांव चो लोग का रोजगार मांगवा बोलते।
0: अच्छा, हाँ, तो बल्ले ने ए बे पूरा जो गांव चो लोग है पूरा सलाह सुतुर
1: आमी गांव चो लोग पूरा सलाह सुतर ने आसू।
0: अच्छा, हाँ, बल्ले ने काई असन झगड़ा लड़ाई कसन हुआ तो जमीन जायदाद वगैरह काई चिनो आवे ने
1: जसन झगड़ा लड़ाई जसन हुआ लेकिन आमी उन गांव ने छे बसुन गांव ने बे समझावा।
0: अच्छा,
1: आगे बात नहीं जाओ बोलते गांव चे लोग मिसुन उताए समझाओ।
0: अच्छा, हां, तो बल्ले ने आगे जसन के 700 पौधा मंडालास बल्ले ने कहीं असन फलदार बीतिया है कि आगे कहीं लाभ है तो बीती असन मोटा
1: आगे फलदार बोले अभी आम जो लगे हम मऊआ पौधा मंगा लू 500 मऊआ दिला जो कलेक्टर साहब के देवरलू उन चो माध्यम से आम के पांच से मुआ पौधा दिला और जो वन विभाग ले कुछ अलग मिश्रित पौधा दिला जो पूर्वज रही उन्हीं
0: पौधा मन तो दक रूपचंद तो इतलो अच्छा बोले तुम जो ग्राम पंचायत ने सामुदायिक वनधन बचातो काजे जो काम करलास बोले ने मच ख्याल ने बस्तर ने पहल गांव है असन लागे से ना मोर कि आगे बोले और कौन
1: आगे उन्हीं पहला ही गांव है जैसन कि हम ये पौधा लगा लो सामचो गांव ने
0: अच्छा।
1: बाकी गांव ने जो पिछले दादा सांगते रहे उनमें अभी उन खुद ले अजीवा कर सो लेकिन आमचो गांव जो अजीवा नहीं आए तो हम अभी साधन पौधा लगा पौधा के प्रबंधन करवा उतायल आम के बाल ले जा लो अजीवा उतायल मीरे दे
0: अच्छा तो ये भी मतलब पूरा गांव चो लोग जैसन की रोजगार चो अवसर तो खूब चाहिए महिला हो नहीं तो पुरुष हो जो आसो तो ये मंच काज कहीं भविष्य ने कहीं आगे सोच ला सास
1: ये भविष्य ने सोच लो रासे कि लोग बाहर ही काम करुक नहीं जाओ तेता जो नामी काम आनवा जो अभी कार्य योजना बनाओ से
0: अच्छा।
1: काम धर दे एताय काम करू नेता आप लोग अजुगा कर दे।

0: आम चौरान आम जो जीवना कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में,
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है, कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

खबर है। सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक

0: 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज़।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी।

0: सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैफाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे परवाना आजादी से उनकी मौत चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल भाई तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है,
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मैं खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़। इसमें आज आप सुनेंगे लोहंडी गुड़िन पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार हैं कालिदास और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

लोकवादी धुन के कार्यक्रम पाड़ का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हम हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti.